शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा

0: और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: गर्मी जो सिर्फ मौसम नहीं, एक पूरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की इस कहानी में हम सिर्फ गर्मी की बात नहीं करेंगे, आज के एपिसोड में हम उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इंडियन समर ही दे सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, दोपहर के 2 बजे हैं, सड़क ऑलमोस्ट खाली, धूप इतनी तेज कि लगता है हवा भी गर्म हो गई है, और इस गर्मी के बीच अचानक एक आवाज, टन टन टन। कुल्फी वाले की घंटी समर का एक एंथम होता है, बस ये आवाज ही होती है जो बचपन में दिल की धड़कने बढ़ा देती है। जैसे ही घंटी बजती है, घर के अंदर से रॉकेट स्पीड से बच्चे बाहर निकलते हैं। माँ कुल्फी चाहिए, कुल्फी वाला आ गया, और मम्मी अपनी इटर्नल डायलॉग के साथ रेडी। रोज रोज नहीं मिलती कुल्फी, और हम, पर मम्मी आज स्पेशल है, कल से नहीं मांगूंगी पक्का, और ये डायलॉग हम रोज बोलते हैं। फिर बार्गेनिंग शुरू होती है, एक ही ले लो भैया, छोटी वाली देना, और फाइनली हाथ में एक ठंडी जमी हुई कुल्फी, उसका पहला बाइट और वो इंस्टेंट ठंडक दिल के भी नीचे उतरती है। लगता है जैसे पूरी गर्मी उसी कुल्फी में डिसॉल्व हो गई हो। सच बताओ, आप कौन सी कैटेगरी के थे, ऑरेंज वाली स्टिक आइसक्रीम, मलाई कुल्फी, या वो रॉकेट वाली जो गिरते गिरते बचती थी? समर का सुपरस्टार। अब बात करते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स आम की। गर्मी का मतलब ही होता था घर में आम की पेटी आना, और मम्मी का स्ट्रिक्ट रूल, गेस्ट्स के लिए हैं, पर हम ऑलरेडी 2 आम वॉशरूम में छुपके खा चुके थे, और वो आम का रस स्टील के बड़े भगोने में पूरी फैमिली के साथ, कोई रोटी के साथ खा रहा है, कोई पूरी के साथ खा रहा है, और कोई डायरेक्ट सिप्स ले रहा है, और लास्ट में हाथ पे चिपका रस और उसे चुप चुप के लिक करना। उफ, क्या दिन थे। और जब हीट लेवल्स एक्सट्रीम हो जाते थे, तब एंट्री होती थी आम पन्ना की, कच्चे आम का आम पन्ना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, एक सिप लो तो लगता है पूरी बॉडी रिबूट हो गई हो, मम्मी प्राउडली बोलती, ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, और हम, ये तो लाइफ स्ट्रोक से बचाता है मम्मी। कूलर वर्सेस गर्मी की अल्टीमेट बैटल। पहले एसी नहीं था घर में, पर कूलर, कूलर हीरो था। कूलर के सामने बैठ जाओ और लगता था नेचर ने पर्सनली हवा भेजी है, और उसकी आवाज, कूलर के फैन में मुंह डाल के खड़े होना और अपनी ही आवाज को घर से सुनना, याद आया? वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा बजता है कानों में, जो बिना प्लेलिस्ट के चल रहा होता है पूरे समर्स में, और जब पानी खत्म हो जाता है तो सडनली हवा का तंदूर मोड ऑन, फिर घर में एक ही आवाज, पानी डालो कूलर में, लाइट चली गई। और समर का सबसे आइकॉनिक ट्विस्ट, बिजली का जाना, फैन बंद, कूलर बंद, सब बंद, और मम्मी का सोल्यूशन, हाथ से पंखा जुलाओ, और हम, ये कौन सा जिम है भाई, टेरेस वाली चांदनी रात, और फिर रात को टेरेस पे सोने के प्लान्स, छत पे बिस्तर, ऊपर तारों भरा आसमान, एक सफेद चादर, और दूर कहीं से रेडियो की आवाज, हल्की हल्की ठंडी हवा, और मम्मी

मम्मी कहती, मच्छर का कॉइल जला दो। हम स्टार्स काउंट करते रहते थे, कॉन्स्टिलेशंस बनाते रहते थे, और कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता। कभी बीच रात उठ के आसमान देखना, ऐसा लगता था मानो दुनिया रुक सी गई। कहाँ गए वो दिन? दिल सच में ढूंढता है फुर्सत की वो रात दिन। अब आते हैं गोले वाले के कलर थेरेपी पे। जी हाँ, गोले वाले भैया, बर्फ का गोला ऊपर से कलरफुल सिरप्स। और वो पूछता, कौन सा फ्लेवर दीदी? हम झट से बोलते, भैया फुल मिक्स बना दो या फिर काला खट्टा। रिजल्ट होता एक रेनबो गोला, और टंग भी उसके साथ साथ रेनबो हो जाती। समर का एक फनी ट्रूथ होता है दोस्तों, गर्मी में तीन चीजें पक्की होती हैं, आइसक्रीम का गिरना, बिजली जाना और मम्मी का गुस्सा। और जब कोई गेस्ट आ जाता था तो मम्मी की पहली लाइन, आम उन्हें दो। और हम अंदर से कुड़कुड़ाते रहते थे। दोस्तों, गर्मी सिर्फ टेम्परेचर नहीं होती, एक इमोशन होती है। वो कुल्फी की घंटी, वो आम की मिठास, वो कूलर की ठंडी हवा, वो टेरेस की रात, सब कुछ सिंपल था पर दिल को इतना खुश कर देता था जैसे चांद छू लिया हो। आज की गर्मी वर्सेस कल की गर्मी, आज एसी ऑन है, फूड डिलीवरी है, पर वो टन टन की एक्साइटमेंट, वो बिना वजह वाली हंसी शायद थोड़ी कम हो गई है। तो इस समय थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा फील करें, एक कुल्फी जरूर खाएं, आम का रस हाथ से खाएं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फोन साइलेंट पे हो या ना हो, दिमाग कभी कभी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। कोई कुछ बोल रहा होता है और अंदर से आवाज आती है, प्रोसेसिंग।
2: What?

नव ग्रहों की एक सभा 2.0, जब ग्रहों ने इंसानों की कंप्लेंट मीटिंग बुलाई। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक कॉस्मिक ड्रामा है जहां नौ ग्रह मिलके इंसानों की आदतें डिस्कस कर रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, सोचिए, अंधेरा नहीं, रोशनी भी नहीं, एक अजीब सा शिमरिंग स्पेस जहां हवा नहीं पर एनर्जीज चल रही हैं। यही है नवग्रहों की सभा। आज वहां इमरजेंसी मीटिंग है और एजेंडा। अर्थ के लोग हमें हर चीज के लिए ब्लेम क्यों करते हैं? एंट्री नंबर 1, सूर्यदेव, सीईओ ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले इन्हीं की एंट्री होती है, हमारे प्यारे सूर्यदेव की ब्राइट एंट्री, इतनी ब्राइटनेस कि बाकी सबको सनग्लासेस चाहिए। मीटिंग टाइम पे स्टार्ट होगी, सब अंडर ब्रेथ, सर थोड़ा डिम मोड पे आ जाओ ना, बट सूर्यदेव तो सूर्यदेव हैं। एंट्री नंबर 2, चंद्रदेव, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। चंद्रदेव आते हैं सॉफ्ट से ग्लो के साथ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? सूर्यदेव कहते हैं, ये थेरेपी सेशन नहीं है चंद्र। एंट्री नंबर 3, मंगलदेव, एंग्री यंग ग्रह, हमारे सिपाही। मंगलदेव की एंट्री आती है और फुल एनर्जी मोड ऑन हो जाता है। किसने कंप्लेन किया बताओ, बताओ किसने कंप्लेन किया? बुधदेव कहते हैं बीच में, भाई पहले सुन तो ले। एंट्री नंबर 4 इन्हीं की है, हमारे बुद्ध देव यानी मर्क्यूरी, डेटा एनालिस्ट ऑफ द कॉस्मोस। बुद्ध देव टैबलेट लेकर आते हैं और कहते हैं, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग और बाकी सब इंग्लिश बंद करो बुद्ध देव, ये हिंदी कॉन्फ्रेंस है। एंट्री नंबर 5, सबके फेवरेट, सबसे प्यारे, सबसे बड़े गुरुजी, गुरुदेव मोड ऑन, बृहस्पति। बृहस्पति देव कामली आते हैं और कहते हैं, हर प्रॉब्लम की एक सीख होती है। मंगलदेव इंटरप्ट करते हैं, आप हर जगह ज्ञान क्यों देते हो? एंट्री नंबर 6, शुक्र, स्टाइल और रोमांस के किंग। शुक्रदेव की एंट्री परफ्यूम की खुशबू के साथ। लाइफ में थोड़ा ग्लैमर भी जरूरी है, शनि साइड आई देता है। एंट्री नंबर 7, शनि देव, न्याय के देवता। सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, शनि देव आते हैं स्लो और इंटेंस, सब सीधा होके बैठ जाते हैं। कौन ब्लेम कर रहा था मुझे जरा बताना, बाकी सब हम नहीं, हमने तो बिल्कुल नहीं। एंट्री नंबर 8, राहु, मास्टर ऑफ इल्यूजन। राहु की एंट्री थोड़ी मिस्टीरियस म्यूजिक के साथ होती है, मैं तो बस इल्यूजन्स क्रिएट करता हूं। इस पे बुधदेव कहते हैं, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एंट्री नंबर 9, केतु, डिटैच्ड बाबा। केतु देव आते हैं थोड़ी से लॉस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, और बाकी सब फिर आए क्यों भाई। सीन नंबर 2, अर्थ की कंप्लेंट्स की एक प्रेजेंटेशन शुरू होती है। बुध स्क्रीन ऑन करता है और स्लाइड नंबर 1, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, फोन टूट गया, बाकी सब व्हाट। स्लाइड नंबर 2, शनि इक्वल्स टू जॉब नहीं मिली। शनि बोलते हैं, रेज्यूम देखा है अपना। स्लाइड नंबर 3, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इक्वल्स टू राहु। राहु कहते हैं, रेड फ्लैग, इग्नोर किसने नहीं किया। सीन नंबर 3, सारा क्योस शुरू हो जाता है। मंगल कहते हैं, मैं तो सिर्फ एनर्जी देता हूँ। चंद्र कहते हैं, मैं सिर्फ इमोशंस बढ़ाता हूँ, और शुक्र कहते हैं, मैं तो प्यार ही प्यार देता हूँ। शनि फिर कहते हैं, मैं सिर्फ टेस्ट लेता हूँ, और सब एक साथ
गलती हमारी कहाँ है? सीन नंबर 4, ट्रूथ बाहर आता है। तब बृहस्पति कामली बोलते हैं, हम रास्ता दिखाते हैं पर चलना इंसान को होता है। चंद्र कहते हैं, मैं मूड बनाता हूँ, डिसीजंस उनके होते हैं। और बुध कहते हैं, मैं कम्युनिकेशन देता हूँ, बोल क्या रहे हैं वो तो उनकी चॉइसेस हैं। अब होता है एक लाइव डेमो। सूर्य बोलते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान रात को 3 बजे तक फोन यूज करता है, सुबह लेट उठता है, ऑफिस लेट पहुंचता है, बॉस से डांट खाता है और फिर बोलता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तब ग्रह एक दूसरे को देखते हैं और मंगल बोल पड़ता है, फोन किसने यूज किया था? चंद्र कहता है, लेट कौन सोया था? शनि कहते हैं, लेट कौन पहुंचा था? और सब एक साथ कहते हैं, इंसान। अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की, और इसमें शनिदेव कैसे पीछे रह जाए? वो एकदम से खड़े होते हैं और बोलते हैं, डिसीजन सुनाया जाता है, हम इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल नहीं। ब्लेम बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सूर्यदेव बोलते हैं, हम आसमान में हैं पर जिंदगी उन्हीं के हाथ में है। सब ग्रह धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं और एक आवाज गूंजती है, अपनी कहानी खुद लिखो। दोस्तों, प्लैनेट्स आपको सिर्फ गाइड करते हैं पर आपको डिफाइन नहीं करते। आपकी मेहनत, आपकी चॉइसेस, आपका एटीट्यूड, वही आपकी डेस्टिनी बनाता है। सच सच बताओ, आपने लास्ट बार कब किसी ग्रह को ब्लेम किया था? मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी ग्रहों की कहानी। स्टार्स को देखिए, इंस्पिरेशन लीजिए, पर स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: चार्जिंग पे जिंदगी। फोन चार्ज पे लगाओ तो लगता है कंट्रोल में हो। खुद की लाइफ चार्ज पे लगाने का ऑप्शन होता तो सब लाइन में खड़े होते। What?

स्नैक्सीडेंट एपिसोड, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें इंश्योरेंस भी काम नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आज का वर्ड ऑफ द डे है स्नैक्सीडेंट। नाम सुनते ही लगता है ना ये कोई नया क्राइम है या कोई फूड स्कैंडल, पर नहीं, स्नैक्सीडेंट एक ऐसी लाइफ सिचुएशन है जिसमें आप बिल्कुल इनोसेंट होते हो, ट्रस्ट मी। पर एविडेंस सब आपके खिलाफ होता है। डेफिनेशन थोड़ी फिल्मी है। स्नैक्सीडेंट का मतलब होता है जब आप कहते हो बस थोड़ा सा खाऊंगा और 10 मिनट बाद पैकेट खुद आपको देख के कहता है भाई मैं तो खत्म हो गया, और आप शॉक में चले जाते हो, ये किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ, और घर में सिर्फ आप होते हो। बस एक बाइट से शुरू होती है ये स्नैक्सीडेंट की कहानी। हर स्नैक्सीडेंट एक इनोसेंट शुरुआत होता है। शाम का टाइम, आप थोड़े से बोर्ड, टीवी या फोन चल रहा है और आपका दिमाग बोलता है थोड़ा स्नैक हो जाए। आप फ्रिज खोलते हो, स्नैक निकालते हो और खुद से प्रॉमिस करते हो सिर्फ 2 बाइट्स। ये वही प्रॉमिस है जो कभी पूरा नहीं होता फ्रेंड्स। स्नैक की कैरेक्टर एंट्री अब जरा इमेजिन करो। स्नैक्स भी अगर इंसान होते, चिप्स का पैकेट बोलता आओ आओ मैं क्रंची हूं, चॉकलेट बोलती मैं तो मेल्ट हो जाऊंगी जल्दी खा लो, और बिस्किट्स बोलते हम तो चाय के बिना इनकम्प्लीट है, और आप इमोशनली मैनिपुलेटेड हो जाते। द ब्लैक होल इफेक्ट। स्नैक्सीडेंट एक ब्लैक होल जैसा होता है, जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। चिप्स, पॉपकॉर्न, नमकीन सब गायब, और आप सोच रहे होते हो मैं तो बस थोड़ा सा खा के रहने वाला था। चॉकलेट वाली ट्रेजेडी। चॉकलेट के साथ स्नैक्सीडेंट अलग ही लेवल का होता है दोस्तों। आप एक पीस तोड़ते हो, फिर सोचते हो ये तो अनइवन हो गया, थोड़ी सी और खा लेता हूँ। फिर आप बैलेंस करते हो और बैलेंस करने के लिए एक और पीस, और फिर एक और, और फिर एक और एंड में पूरी चॉकलेट गायब सिर्फ रैपर हाथ में। और आपका लॉजिक ये रहता है शायद सिमेट्री के लिए जरूरी था ना। मिडनाइट स्नैक्सीडेंट हॉरर स्टोरी, इससे ज्यादा डरावनी कोई स्टोरी नहीं है, ट्रस्ट मी। रात के 1 बजे सब सो रहे हैं और आपको आवाज आती है किचन से। आप जाते हो, लाइट्स ऑन करते हो और फ्रिज के अंदर स्नैक्स आपको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। आप बोलते हो बस पानी पीने के लिए आया हूं, और 15 मिनट बाद सारी प्लेट साफ। डाइट प्लान का मर्डर, ब्रूटल मर्डर। सुबह उठते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, बस अब डाइट स्टार्ट ही करने वाला हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट, सैलेड, डिटॉक्स वाटर, और रात को स्नैक्सीडेंट का फिर से अटैक होता है। डाइट प्लान का RIP, प्रॉपर रेस्ट इन पीस। एक इल्यूजन है दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ स्नैक करना एक मिथ है, सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और रियलिटी एक बंदा सब खा जाता है और बाकी लोग हम तो सिर्फ देखते ही रह गए। पिज्जा स्नैक्सीडेंट, डेंजरस लेवल है ये। पिज्जा ऑर्डर करो, प्लान करते हैं 2 स्लाइसेस ही खाएंगे, और फिर ये लास्ट स्लाइस ही तो है, और फिर अब एक ही तो बचा है, वेस्ट नहीं कर सकते, आखिर हम इंडिया में रहते हैं, और एंड में पूरा पिज्जा फिनिश। पैकेट का बिगेस्ट स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम क्या है जानते हैं? फैमिली पैक। ये फैमिली के लिए नहीं होता, एक इंसान के लिए चैलेंज पैक होता है, और जब खत्म होता है आप कहते हो ये इतना छोटा कब हो गया। स्नैक्सीडेंट का डीप मीनिंग दोस्तों, स्नैक्सीडेंट सिर्फ फूड नहीं है,
ये लाइफ का एक पैटर्न है। हम कहते हैं बस 5 मिनट स्क्रॉल और 2 घंटे निकल जाते हैं इंस्टाग्राम पे, पता भी नहीं पड़ता। बस एक एपिसोड और रातों रात पूरी सीरीज खत्म। बस थोड़ा सा और कंट्रोल चला जाता है सिस्टम के हाथ में। जिंदगी भी थोड़ी सी स्नैक्सीडेंट जैसी है दोस्तों, अगर कंट्रोल ना रखो तो छोटी चीजें भी ओवर हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्नैक्स छोड़ दो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। बस एंजॉय करो पर कॉन्शियस होके। सच बताओ, आपने अपना लास्ट एक्सीडेंट कब किया था और किसके साथ किया था? चिप्स के साथ, आइसक्रीम के साथ या फ्रिज का फुल ऑन रेड? दोस्तों आज का वर्ड याद रखिएगा, खैर याद तो रहेगा, रोज होता जो है। स्नैक्सीडेंट जब स्नैक खुद नहीं खाता आपसे खुलवा लेता है, और अगली बार जब आप बोलो बस एक बाइट तो याद रखना ये कहानी पहले भी शुरू हो चुकी है। मैं हूँ आपकी दोस्त, खुश रहिए, हंसते रहिए और स्नैक्स एंजॉय करते रहिए, पर थोड़ा कंट्रोल और कॉन्शियसनेस के साथ, वरना स्नैक्सीडेंट FIR लिखवा देगा। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मीटिंग में सिर्फ हाँ बोलने वाला। मीटिंग में एक बंदा होता है जो सिर्फ सर हिलाता है, हाँ हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और बाद में पूछता है, मीटिंग किस बारे में थी।

दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा विसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में यह 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों,

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लेना, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और, किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए

पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 1000 रुपए जानकर तो वो हैरानी रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी ये किसी रामबाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया, जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह हैं वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती,

बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो चार लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं,

संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है, कोई 3 साल का, 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी यह है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त

0: हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजिला के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी। सुनते रहिए रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: अब यहाँ से आगे हमें पैदल चल के जाना होगा हुजूर, घोड़ों पर यहाँ से जाना मुमकिन नहीं।
1: अगर आपके गुरुजी इतने महान फनकार हैं, तो वो ऐसे वीरान जंगल में क्यों रहते हैं?
0: उन्हें दुनियादारी से दूर एकांत और शांति में रहना ज्यादा पसंद है। जहाँ पना तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना होगा। वो रोज इसी समय अपनी झोपड़ी से बाहर आकर रियाज शुरू करते हैं।
1: ठीक है, लेकिन हम उनकी झोपड़ी में उनका गाना क्यों नहीं सुन सकते?
0: हुजूर, वो किसी और के लिए नहीं गाते, वो तब ही गाते हैं जब उनका मन करता है, इसलिए हमें यहीं इंतजार करना होगा।

0: नमस्कार गुरुजी। ओ धन्य भाग हमारे, आइए पधारिए।
1: जब बीरबल और तानसेन जी ने हमसे कहा कि आप सबसे बेहतर फनकार हैं, तब हमें यकीन नहीं हुआ, पर अब ये साबित हो गया है कि आप सबसे महान फनकार हैं।
0: ये तो संगीत के प्रति आपका प्रेम है, वरना मैं आपके तारीफ के लायक कहाँ, स्वयं संगीत ही महान है।
1: मुझे अच्छे फनकार की पहचान है गुरुजी, कृपया मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए।
0: माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं इनाम के लिए गाना नहीं गाता, और वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। ये इनाम आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए।
1: अगर आप इनाम नहीं लेना चाहते तो ना सही, लेकिन मेरे साथ महल चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से रहेंगे और जब मन चाहे हम आपका गाना भी सुन सकेंगे।
0: माफी चाहता हूँ हुजूर, परंतु मैं इस जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया में बहुत खुश हूँ। ये शांति मुझे आपके महल में नहीं मिल सकती, और वैसे भी मैं सिर्फ ईश्वर के लिए गाता हूँ, आपको ये बात शायद बुरी लगे।
1: हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे जरूर कहिएगा।
2: अब आगे दीजिए।
1: ये बताइए कि वो इतना अच्छा और आपसे भी बेहतर कैसे गाते हैं तानसेन जी?
2: दरअसल हुजूर, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। गुरुजी सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं, जबकि तानसेन जी आपके लिए और हमारे लिए गाते हैं, और गुरुजी पूरी भक्ति के साथ गाते हैं, जो सिर्फ इस दुनिया और उसके ऐशो आराम को त्याग करने से ही प्राप्त होती है।
1: हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन उस दूसरी चुनौती का क्या हुआ? कहाँ है हमारी अंगूठी?
2: हुजूर हम उस कुएं के पास से गुजरेंगे और वो अंगूठी आपको मिल जाएगी।
1: ये तो हमें देखना होगा।

0: ये लीजिए हुजूर।
1: शाबाश बीरबल, अब ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे?
0: हुजूर, जब आपने उस रोज अपनी अंगूठी कुएं में फेंकी, तब मैंने पास में पड़े गोबर को उठाया और उसे कुएं में अंगूठी के ऊपर फेंक दिया।

0: दिनों बाद जब वो गोबर सूख गया तभी अंगूठी उसमें जम गई। जब कुछ ही दिन बाद बारिश हुई तब ये कुआं पानी से भर गया और सूखा हुआ गोबर ऊपर तैरने लगा। और ये रही आपकी अंगूठी हुजूर, ना ही मैं कुएं में उतरा और ना किसी चीज का सहारा लिया, प्रकृति ने ही मेरा काम कर दिया।
1: शाबाश बीरबल, तुम लाजवाब हो, शाबाश
0: शाबाश शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
2: आगरा शहर में दो महाजन हुआ करते थे। उनमें से एक का नाम नेकीराम था। वह एक सीधा साधा शरीफ आदमी था जो कभी अपने ग्राहकों से बेईमानी नहीं करता था, न उनसे ज्यादा ब्याज लेता था और कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। दूसरे का नाम बदीराम था। वो एक लालची आदमी था जो हर समय अपने ग्राहकों से बेईमानी करने की ही सोचता था, साथ ही ब्याज भी बहुत ज्यादा मांगता था। बदीराम के ज्यादातर ग्राहक अपनी सारी जिंदगी उसका छोटा सा उधार चुकाने में बिता देते थे। एक दिन,
3: नमस्ते मित्र।
2: कमल, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, आओ बैठो।
3: मित्र, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। मुझे अपने व्यापार में लगाने के लिए 500 सोने की अशर्फियां उधार में चाहिए। ये पैसे मैं तुम्हें 6 महीने में लौटा दूंगा।
2: मैं काश तुम्हारी मदद कर सकता। क्या तुम शाम तक रुक सकते हो? आज कुछ लोग मेरे पैसे वापस लौटाने वाले हैं।
3: ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, इन पैसों की मुझे आज ही जरूरत है।
2: मित्र, क्या 300 सोने की अशर्फियों से तुम्हारा काम बन जाएगा? मैं सिर्फ इतने का ही इंतजाम कर पाया, बाकी की रकम मैं तुम्हें अगले हफ्ते तक दे दूंगा।
3: नेकीराम, मुझे आज रात ही जयपुर के लिए रवाना होना है और अगर पैसे ना मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है।
2: ठीक है, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। हाँ, बदीराम बगल में ही है, मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ। वो भी एक महाजन है, मैं तुम्हारे लिए उससे पैसे उधार लेता हूँ। मेरा मित्र कमल जयपुर से आया है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे 200 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। ये रकम मैं 6 महीने में वापस लौटा दूंगा।
4: ठीक है नेकीराम, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ मैं तुम्हें ये उधार दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, इस रकम पे 50 सोने की अशर्फिया का ब्याज होगा, और दूसरी ये कि अगर तुम 6 महीने में मेरी ये पूरी रकम नहीं लौटा सके तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा।
2: मेरे जिस्म का 1 सेर मांस? ओ, ठीक है, मेरे मित्र को इस रकम की सख्त जरूरत है, तो मैं तुम्हारी ये शर्त मंजूर करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं देगा और मेरे पैसे जरूर लौटाएगा और मैं तुम्हारी इस शर्त से बच पाऊंगा।
4: ठीक है, ये लो तुम्हारी 200 सोने की अशर्फिया, लेकिन याद रखना, अगर तुमने 6 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा।
2: कमल, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है मित्र, कैसे भी करके ये रकम 6 महीने में लौटा देना।
3: हे भगवान, बड़ा जालिम आदमी है। घबराओ नहीं नेकीराम, मैं पूरी रकम लेके लौटूंगा और उस जालिम आदमी का कर्ज उतार दूंगा। तुम एक सच्चे मित्र हो, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूं मित्र।
4: नेकीराम, तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए हैं, कहाँ हैं मेरे पैसे?
2: बदीराम, मित्र, मैं खुद कमल का इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक लौटा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा और शाम से पहले जरूर लौटेगा। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें सूरज ढलने से पहले लौटा दूंगा।
4: खैर, तुम्हारे पास शाम तक का समय है, अगर तब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा।
2: बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मेरा मित्र मुझे निराश नहीं करेगा।

0: नेकी राम, कहाँ हो तुम?
1: बदी राम, मैं अभी तुम्हें ही मिलने आ रहा था। कमल अब तक लौटा नहीं, जरूर कुछ समस्या हो गई होगी। वो एक दो दिन में जरूर लौटेगा, नहीं तो खुद मैं जयपुर जाकर उसका पता लगाऊंगा। मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत और दे दो।
0: बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ, या फिर शर्त के मुताबिक अपने जिस्म का एक सेर मांस मुझे दो।
1: बदीराम, मुझ पे रहम करो। अगर तुम मेरे जिस्म का एक सेर मांस काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ी सी मोहलत और दे दो।
0: अब कोई फायदा नहीं, या तो पैसे दो या फिर अपने जिस्म का एक सेर मांस।
2: ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या समस्या है?
0: मुझे इजाजत दीजिए हुजूर, इस आदमी ने मुझसे उधार लिया है और अब ना तो ये उधार लौटा रहा है और ना ही शर्त के मुताबिक पैसे ना लौटाने पर अपने जिस्म का एक सेर मांस मुझे दे रहा है।
2: क्या ये सच बोल रहा है?
1: जी हुजूर, ये सच है। मैंने उधार लिया था, लेकिन मेरा मित्र जयपुर से अब तक लौटा नहीं, पर मुझे यकीन है वो जरूर आएगा और जल्द ही। मुझे बस थोड़ी मोहलत और चाहिए।
2: तुम इसे थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं देते? इसे भी अपने ब्याज में जोड़ देना।
0: नहीं हुजूर, मैं और नहीं रुक सकता। या तो वो मुझे मेरे पैसे लौटाए या फिर मुझे अपने जिस्म का एक सेर मांस दे।
3: नहीं नहीं, ये आदमी तो जालिम है। नेकी राम एक भला आदमी है और उसे थोड़ा समय तो और मिलना चाहिए।
2: खामोश, तुम दोनों मेरे साथ इसी वक्त दरबार चलो। कल सुबह शहंशाह अकबर खुद इसका फैसला करेंगे।

0: इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हुजूर।
1: बीरबल, अब तुम ही ये मामला सुलझाओ।
2: हुजूर, मेरा नाम कमल है, नेकीराम का मित्र, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। मुझे शहर से लौटते हुए जरा देर हो गई, लेकिन मैं बदीराम के पूरे पैसे लाया हूँ।
1: बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए तो मेरे ख्याल से ये मसला अभी सुलझ गया है।
2: नहीं हुजूर, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, और शर्त के मुताबिक वक्त पे पैसे ना लौटाने पर मुझे अब उसके जिस्म के मांस का एक शेर हिस्सा चाहिए।
1: तुम इतने ढीठ क्यों बन रहे हो? पैसे लौटाने में सिर्फ एक दिन की ही तो देरी हुई है।
2: हुजूर, ये बात है वादा करके उसे निभाने की, लेकिन क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए अगर ये अपना व्यापार बंद करके ये शहर छोड़ दे तो मैं उसका एक शेर मांस नहीं लूंगा।
3: हुजूर, ये शहर मेरा घर है, मैं ये शहर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? ये मुझसे कैसे होगा?
2: मित्र, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम मेरे साथ जयपुर चलो और मेरे घर में रहना।
1: ठहरो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने ढीठ क्यों हो। अपने पैसे लो और ये मसला अभी और इसी वक्त खत्म करो।
2: हुजूर, आप शहंशाह है, आपका हुक्म तो मानना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि व्यापार में दिए किसी भी वादे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप यही चाहते हैं तो
4: हुजूर, तुम नेकीराम के जिस्म का एक सेब मांस काट सकते हो, अगर यही तुम्हारी जिद है तो। सिपाही, इन्हें अपनी तलवार दो, जाइए शौक से अपने वादे के मुताबिक अपने हक का एक सेब मांस काट लीजिए। रुको, याद रखना, वादे के मुताबिक तुमने सिर्फ एक सेर मांस की ही मांग की है, लेकिन अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे तो तुम्हें उसके बदले में हमें अपना खून देना होगा।
2: खून? पर लेकिन ये कैसे हो सकता है?
4: ये कैसे करना है ये तुम्हारी समस्या है। वादे के मुताबिक तुम्हें एक सेर मांस ही काटना है, लेकिन खून नहीं बहा सकते। अगर आपसे बन सके तो फिर आगे बढ़ो।
2: मैं नहीं होगा।
4: हुजूर, यह आदमी अपने वादे के मुताबिक अपने हक को छोड़ रहा है।
1: तुम एक जालिम इंसान हो और तुम्हारे इरादे भी साफ नजर आते हैं। तुम बस नेकी राम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि वो तुम्हारे ही व्यापार में है।
2: मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे माफ कीजिए।
1: तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। मुझे ये भी पता चला है कि तुम काफी लोगों के साथ बेईमानी कर चुके हो। तुम्हें एक साल की कैद की सजा सुनाई जाती है, और नेकी राम को जो रकम तुमने उधार दी है वो हम नेकी राम को उसकी परेशानी के एवज देते हैं। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो।
3: शुक्रिया जहांपनाह, शुक्रिया बीरबल जी।
1: बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई से इंसाफ को जीत दिलाई। शाबाश शाबाश बीरबल, शाबाश।
4: शुक्रिया हुजूर।
5: राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद।
6: दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी।
1: हम सचमुच खुशकिस्मत हैं जो इतने होशियार और बुद्धिमान लोग हमारे दरबार में हैं। दरअसल हम सिर्फ होशियार और अक्लमंद लोगों से मिलकर ऊब गए हैं। हमें लगता है कि अब हमें कुछ मूर्ख लोगों से भी मिलना चाहिए। एक बादशाह की हैसियत से हमारे आसपास सिर्फ होशियार और समझदार लोग ही होते हैं। हमें लगता है कि हमारा कुछ बेवकूफों से मिलना भी काफी दिलचस्प साबित होगा। बीरबल, हमने आपको जो भी चुनौतियां दी हैं, आपने हमेशा उसे कामयाबी से सुलझाया है। अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें।
2: क्या आपकी यही इच्छा है जहांपनाह?
1: हाँ, हम यही चाहते हैं। कितना दिलचस्प होगा अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागलों से मिलना। आपके पास 1 महीने का वक्त है उन्हें ढूंढने के लिए।
2: वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे इतने वक्त की जरूरत होगी जहांपनाह।
1: बहुत खूब, तो आप उन्हें जल्द ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी करें। बीरबल, हम उनसे मिलने को बेताब हैं।
2: जैसी आपकी मर्जी हुजूर।
1: अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें।
2: इन पागलों को कहां ढूंढें?

0: सुनना जरा।
1: जी जी क्या बात है? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको जानूं। तुम कौन हो और कहां जा रहे हो?
2: जी मैं रामू हूँ और मैं एक धोबी हूँ। मैं अपने गधे के लिए कुछ चारा लेकर लौट रहा हूँ।
1: तो तुम ये बोझ अपने सिर पर क्यों लादे हो बजाय गधे पर रखने के?
2: जी मैंने सोचा कि इतने लंबे सफर से गधा थक गया होगा और मुझे इसका बोझ कुछ हल्का करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बोझ अपने सिर पर रख लिया।
1: ओ, मुझे मेरा पहला पागल मिल गया।
2: जी हाँ, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, इसीलिए मैं इसका बोझ कम कर रहा हूँ।
1: तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हारे इस महान काम के लिए तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा।
2: इनाम? वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, चलिए जल्दी चलिए।

0: खबरदार, मैं कहता हूँ मेरा शेर तेरे गाय पे छोड़ दूंगा मैं।
1: अरे लेकिन ये तो गलत बात हुई ना।
0: क्या गलत बात हुई?
1: तुझे इससे क्या मिलेगा?
0: अरे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा शेर तेरे गाय पे।
1: तेरे शेर के हाथ पैर तोड़ दूंगा।
2: रुको, ये लड़ाई अभी बंद करो। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन हो और बात क्या है?
1: हुजूर, मैं हरी हूँ और ये गंगू है, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों लकड़हारे हैं।
2: तो समस्या क्या है, तुम क्यों लड़ रहे हो?
1: हुजूर, ये मेरी गाय के ऊपर अपना शेर छोड़ने की धमकी दे रहा है।
2: शेर? गाय?
0: हाँ, मैं अपने शेर को कहूंगा कि तुम्हारे गाय को खा जाए।
2: जरा रुको, शेर कहाँ है और तुम्हारी गाय किधर है?
1: जैसे ही भगवान हमें वरदान देंगे मैं उनसे गाय मांगूंगा, और ये कह रहा है कि ये शेर मांगेगा,
0: और मैं अपना शेर इसकी गाय पर छोड़ दूंगा।
1: देखा देखा आपने, इसकी ये मजाल, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा।
2: मुझे शहंशाह के लिए दो पागल और मिल गए। लड़ाई बंद करो, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा भगवान पर इतना विश्वास करने के लिए।
1: इनाम?
0: इनाम?
1: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।
0: मैं कहता हूँ मेरा शेर तेरे गाय पे छोड़ दूंगा मैं।
1: अरे लेकिन ये तो गलत बात हुई ना।
0: क्या गलत बात हुई?
1: तुझे इसे
2: घर पर ही रहना, आज तो देर हो गई है, हम शहंशाह से कल मिलेंगे। मैं अभी थोड़ी सैर करके आता हूँ। चलो, मुझे तीन पागल तो मिल गए। माफ कीजिए, क्या मैं आपकी मदद करूँ?
3: ओ, क्या करोगे? मेरी अंगूठी खो गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ।
2: मैं जरूर मदद करूँगा। तुमने उसे कहाँ गिराया था?
3: मैंने उसे वहाँ उस पेड़ के नीचे गिराया था, पर वहाँ बहुत अंधेरा है इसलिए मैं उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ।
2: क्या पागल है, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मैं यूसुफ हूँ। ये नाम वाम छोड़ो, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं?
2: सुनो, मैं तुम्हें बादशाह से इनाम में दूसरी अंगूठी दिलवा दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कल शहंशाह से मिलवाऊंगा।
3: सच? क्या मुझे शहंशाह दूसरी अंगूठी देंगे?
2: हाँ हाँ, फिक्र न करो और इस अंगूठी को भूल जाओ। मैं शहंशाह से कहूंगा कि तुम्हें इनाम में अंगूठी चाहिए। अब मेरे साथ चलो।
4: बीरबल, तो क्या तुमने पागलों को ढूंढ निकाला?
2: जी हाँ जहांपनाह।
4: क्या तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगी? क्या हमारे शहर में इतने सारे पागल हैं?
2: नहीं जहांपनाह, मेरी खुशकिस्मती से मुझे सारे पागल एक ही दिन में मिल गए।
4: बताओ हमें, वे कौन हैं? और तुम ये क्यों समझते हो कि वो ही सबसे बड़े पागल हैं?
2: अपना पहला पागल रामू है और मैं उन्हें यहाँ अपने साथ लाया हूँ जहांपनाह।
4: बहुत दिलचस्प, पर ये तो सिर्फ चार ही पागल हैं, बाकी दो कहाँ हैं? क्या तुम्हें वे अभी तक नहीं मिले?
2: जहांपनाह, मैं दो इनसे भी बड़े पागलों को जानता हूँ।
4: ओह, हम उनसे मिलना चाहते हैं, वे कहाँ हैं?
2: जहांपनाह, इन सबसे बड़ा पागल हूँ मैं।
4: तुम? ये तुम क्या कह रहे हो?
2: जी हाँ जहांपनाह, मैं इन सबसे बड़ा पागल हूँ, क्योंकि मैं ही पागलों को ढूंढने का पागलपन करने चला था।
4: हमें तुमसे दूसरे बड़े पागल का नाम पूछते हुए डर लग रहा है बीरबल, पर फिर भी तुम बता सकते हो।
2: गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर हम सबसे बड़े पागल हैं आप, क्योंकि आपको ही पागलों से मिलने की चाह थी।
4: बीरबल, बीरबल, हमने ये पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं। शाबाश।

0: अपना।
1: बीरबल, आपको आज रात एक खास मामला सुलझाना है। आपको महारानी का हार तलाश करना होगा।
0: जहांपना? महारानी का हार?
1: हाँ, हुआ यूं कि
0: अच्छा, तो ये मामला है।
1: बीरबल, मेरे मित्र, आपको इसे आज रात ही सुलझाना है।
0: जहांपना, एक बात तो तय है कि हार चोरी ही हुआ है, वरना इतनी बार कमरे में ढूंढने पर जरूर मिल जाता। और चोर रात में कमरे के पास मौजूद सिपाही या फिर दासियों में से कोई होगा। जहांपना, कल रात वहां तैनात सिपाहियों और दासियों को महारानी के कमरे में बुलवाइए। मैं कुछ देर में हाजिर होता हूँ। मैं अपने एक मित्र को लाने जा रहा हूँ जो चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा।
1: महारानी के कमरे में क्यों? और कौन सा मित्र? तुम क्यों जाना चाहते हो? हम किसी के हाथों तुम्हारे मित्र को पैगाम भेज देते हैं।
0: जहांपना, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा मेरे मित्र को लाने, क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां हैं जो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी।
1: अब तो हम भी आपके मित्र से मिलने को बेताब हैं बीरबल।
0: मैं अभी हाजिर हुआ जहांपना।
2: अरे लाइन में क्या बात, क्या बात, परेशान कर दिया। अरे अरे भी शुदा मेरे, पता नहीं क्या हो गया।
3: मैं क्यों लाइन में, क्या
2: लाइन में, क्या बात, क्या बात।

0: बीरबल, ये क्या तमाशा है? हमने सोचा था कि आप अपने दोस्त को लाएंगे, फिर आप इस गधे को क्यों लाए यहाँ?
1: जहाँ पना, यही मेरा मित्र है और ये जादुई ताकतों का मालिक है। ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। मुझे कुछ समय दीजिए।
0: ठीक है, पर जरा जल्दी करें।
1: जैसी आपकी मर्जी हुजूर। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मित्र जादुई शक्तियों के जरिए चोर का पता लगाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग बारी बारी अंदर जाए और मेरे मित्र की पूंछ पकड़कर कहे कि मैंने हार नहीं चुराया, अब वापस आ जाए। जैसे ही सभी ऐसा कर लेंगे, मैं अंदर जाकर अपने मित्र से पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि चोर कौन है।
0: बीरबल, हम ये जानने को बेचैन हैं, पर हमें ताज्जुब है कि आप अपने मित्र से कैसे बात करेंगे। अगर आपका दोस्त सचमुच चोर का पता बता सकता है तो समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी कीजिए।
1: जाइए, पर याद रहे, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें गधे की पूंछ पकड़कर कहना है, मैंने हार नहीं चुराया।

0: मुझे इन सब के हाथ जांचने होंगे।
1: जरूर, जल्दी करें।
0: जा बना, ये रहा आपका चोर।
1: क्या वो यही है बीरबल? यह आप कैसे कह सकते हैं? इस पर तो कोई निशान भी नहीं है।
2: जहाँ पना, मैंने आपकी बरसों सेवा की है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती। और फिर बीरबल गधे की जबान कैसे समझ सकते हैं?
1: हाँ बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं?
0: जहाँ पना, मैंने गधे की पूंछ में खास इत्र लगा दिया था। इसी वजह से मैंने सभी से गधे की पूंछ पकड़ कर बोलने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ को हाथ नहीं लगाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सभी के हाथों की जांच की। सभी के हाथों से वही खुशबू आ रही है, सिर्फ इसे छोड़कर, क्योंकि राज खुले जाने के डर से इसने गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। झापना, गधा मेरे धोबी का है और उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है।
1: तुम एहसान फरामोश हो। महल में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे भरोसे को तुमने खाक में मिला दिया है।
2: मुझे माफ कर दे जहाँपना, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझ पर रहम करे, मैं चोरी की सारी चीजें वापस कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे जहाँपना।
1: अब तुम भरोसे के काबिल नहीं, तुम्हें हरगिज माफी नहीं मिलेगी। सिपाहियों, इससे चोरी की सारी चीजें बरामद कर इसे काल कोठरी में डाल दो। आप सबको जो परेशानी हुई उसका हमें अफसोस है। जाइए, अपना अपना काम कीजिए। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी होशियारी ने चोर को पकड़ने में मदद की और महारानी का बेशकीमती हार हमें वापस मिल गया, यकीनन तुम्हारे जादुई दोस्त की मदद से। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया।
0: शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया।
3: दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी।
1: शहंशाह अकबर और राजा बीरबल अक्सर भेष बदलकर अपने सल्तनत का मुआयना करते थे। एक दिन जब वो शहर के बाजार से गुजर रहे थे,
2: बीरबल कितना खूबसूरत कालीन है वो।
3: जी काफी खूबसूरत है हुजूर।
2: चलो जाकर पूछते हैं कि वो कितने में बेच रहा है। सलाम जनाब, वो नीला कालीन कितने का है?
4: ओ माशाल्लाह, कोमरी अश्कन शहर काबुल।
2: बीरबल, ये आदमी क्या कह रहा है? कौन सी जबान में बात कर रहा है ये?
3: मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हुजूर। जनाब, हम जानना चाहते हैं कि वो नीले रंग का कालीन आप कितने में बेच रहे हो, कितने का है?

0: बड़ी अजीब बात है ये, हम इस सल्तनत पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की भाषा ही ना आए।
1: हुजूर, मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम एक ऐसे आदमी को हमारे दरबार में रखें जो कई जुबान बोलता हो और उसे हमारे राज्य की शाही दुभाषा भी बना ले।
0: ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है बीरबल।

0: इसीलिए हमने एक ऐसे आदमी को जो कई भाषाओं का जानकार हो अपने दरबार में नियुक्त करने का फैसला किया है। सुखदेव सिंह जी, ऐसे आदमी को ढूंढने का काम हम आपको सौंपते हैं।
1: हुजूर, आप इत्मीनान रखें, मैं राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लूंगा। जहां अपना, मैंने राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लिया है। वो कई भाषाएं सफाई और आराम से बोल सकता है।
2: आदाब जहांपना, मेरा नाम बाहरी है और मैं 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूँ। आपके इस काम के लिए मुझसे बेहतर आदमी नहीं मिलेगा हुजूर।
0: तो फिर ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, और ये भी बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है।
2: जहांपना, आपके दरबार में काफी ज्ञानी लोग मौजूद हैं, और क्योंकि आदमी की जुबान उसकी असली पहचान है, क्या इस दरबार में कोई आपके सवाल का जवाब दे सकता है?
0: ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने को कहेंगे। सुखदेव सिंह जी, पहले आप बताइए।
3: तुम्हाला खूप भाषा येत असतील, पण माझ्यासारखी मराठी तर बोलून दाखवा।
2: साहेब, तुम्ही मराठवाड्याचे आहे म्हणजे फक्त तुम्हालाच्या मराठी येत असेल असं नाही ना?
3: मीरू तेलुगु वाडा?
2: मीरु चप्पंडी, नेनु एक्कडि नुंचि वच्चानु? मीरु गुंटूरु नुंचि वच्चारु कदा? आम्ही कोलकाता माणूस, आम्ही जाणते चाहिजे तुम्ही बांगलार कोठात थेके एसेचो। আমার বাংলা মিষ্টি আর কবিতা খুব ভালো লাগে, আমি যে কোনো দিন বাঙালি হতে চাইব।

0: जहांपनाह, हमने इसे कई भाषाओं में सवाल किए हैं और हर भाषा पर इसकी जानकारी बिना किसी शक के बेहतरीन है। हम अब भी इसकी मातृभाषा नहीं जान पाए हैं।
1: तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल? तुमने कुछ नहीं कहा अब तक। क्या तुम बाहरी की मातृभाषा पता लगाने की कोशिश नहीं करोगे?
2: हुजूर, मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं तब तक आपके सवाल का जवाब पता लगा लूंगा। हुजूर,
1: ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास कल तक का समय है, हम जवाब जानने को बेचैन रहेंगे।
2: शुक्रिया जहांपनाह।

0: बीरबल, क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का जवाब है? क्या तुम ये पता लगा पाए कि बाहरी की असली मातृभाषा क्या है?
1: जी हुजूर, पता लगा लिया है।
0: तो बताओ बीरबल, बाहरी की मातृभाषा क्या है?
1: जहां पना, बाहरी की मातृभाषा बांग्ला है। अरे?
0: बोलो बाहरी, क्या बीरबल सही है?
2: बिल्कुल सही जहांपना।
0: शाबाश बीरबल, अब हमें ये बताओ कि तुमने बाहरी की मातृभाषा की जानकारी कैसे पाई?
1: जी हुजूर, कल रात मैंने अपने नौकर को बाहरी के कमरे के

0: पास जाकर जोर जोर से आवाज करने को कहा। जब वो सो रहे थे मैं बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ कोशिशों के बाद बाहरी चिल्लाते हुए बाहर आए।
1: आवाज कैसे
0: दर्द आश्चर्य और गुस्से के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है। इसलिए जब मैंने उसे बांग्ला में चिल्लाते हुए सुना तब मैंने ये गुत्थी सुलझा ली। मैं बाहरी से कल रात उसकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ।
2: कोई बात नहीं राजा बीरबल, आप सचमुच इस राज्य के सबसे चतुर और ज्ञानी आदमी हैं।
3: शाबाश बीरबल, शाबाश।
0: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे अकबर और बीरबल की कहानी। दोस्तों आपने अभी सुना अकबर और बीरबल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मेरी दुनिया में। तब तक आपकी दोस्त आरजे रंजिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
5: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई है डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
8: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
7: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
8: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
7: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
8: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
7: जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए।

0: रात में 2 बजे से रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: अच्छा, जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
0: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी बताइए।
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
3: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
4: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં। એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
6: કિસાન સાથીઓ, એક વાર પુનઃ બહોત બહોત સ્વાગત હે આપકા કાર્યક્રમ ખેતી બાડી મે। કાર્યક્રમ કી શરૂઆત કરને સે પહેલે આઈએ જાનતે હે झाबुआ के मौसम का हाल। झाबुआ का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 1.8 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 143.2 मिलीमीटर नापी गई है।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: दोस्तों, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली भी गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फसल बीमा योजना किस तरीके से हम करवा सकते हैं और फसल बीमा योजना से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से हम कैसे हम फसल योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: विभास कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर PC सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं सहायक आयुक्त फसल बीमा कृषि मंत्रालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णवीर चौधरी जी हैं अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से, कृष्णवीर जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप किसानों का पक्ष यहां पर रखेंगे और साथ ही हमारे साथ सुधाकर जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी काम करती है, और सुनील जी बताएंगे कि कैसे सरकार इस योजना को किसानों तक पहुंचा रही है, कैसे इसे और व्यवहारिक बनाया जा रहा है, किसान कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमारे साथ विभास जी हैं जो कि बताएंगे कि अगर किसान को किसी तरह की समस्या आती है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके लिए राह और आसान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट पर।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर बताया कि किस तरीके से ये योजना काम कर रही है, समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए ताकि किसानों के लिए और आसानी हो सके, और जो उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगी कि जो फसल बीमा वीक हम मना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, इसका मकसद क्या है?
3: देखिए, ये फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई है और इसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चूंकि इनरोलमेंट शुरू होता है, जनरली जो खरीफ का इनरोलमेंट है वो 1 जुलाई पर व्यवहारिक रूप से पिक पर रहता है या वहां से स्टार्ट हो जाता है, और जब कट ऑफ डेट है वो बहुत सारे राज्यों में 15 जुलाई है और बहुत सारे राज्यों में जो है 31 जुलाई है। तो इसमें ये किया गया था, इसका जो बनाने का स्वरूप था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक जगह जमा करें, सभी को सेंसिटाइज करें और फार्मर्स के इनरोलमेंट के प्रति उनको दायित्व फिक्स करें कि आप जो है इनको समझाएं, और जो भी उनकी जो मशीनरी है उसको पूरी की पूरी एक सप्ताह में हम एक्टिवेट कर दें कि वो फसल बीमा इजी वे में हर एक जगह, हर एक गांव में, हर एक जगह वो पहुंच जाए ताकि किसानों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसका एक और पर्पस है कि चूंकि हम पहले योजना के बारे में बता देना चाहते हैं, तो और जो समय मिलता है किसान भाइयों बहनों को वो उसमें निर्णय ले पाएंगे और उसमें अच्छे से पूरे कागजात वगैरह जमा करके वो बीमा अपनी करा सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं कि पूरी स्टेक होल्डर्स को उसमें एक्टिवेट करना होता है।
1: मैं सुधाकर जी से जानना चाहूंगी, सर ये बताएं कि देखिए अभी हम फसल बीमा वीक मना रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो किसानों के मन में ये होता है कि कुछ नया किया गया होगा, कुछ चीजें बेहतर की गई होंगी, कुछ चीजें उनकी सहूलियत के अनुसार इसमें शामिल की गई होंगी। तो इस बार इस वीक में किसानों को क्या नया

0: बताने वाले हैं, क्या नया उन्हें, क्या कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है?
1: देखिए, जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि ये फसल बीमा सप्ताह हम ये तीसरी बार हम करने जा रहे हैं। पिछला खरीफ हुआ, फिर रबी हुआ, ये फिर से खरीफ आ गया है। तो इसका जैसे कई सारे उन्होंने बताया क्यों मनाया जा रहा है, उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी लोनी फार्मर थे, जो बैंक से लोन लेते थे, उनका अपने आप बीमा हो जाता था। अब जो है उनको बताना जरूरी है कि ये बीमा हम ले क्यों। तो जब तक उनके हम घर पे नहीं जाएंगे, तो हर बार जो है कुछ न कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको चुनते हैं। इस बार भी करीब 75-80 डिस्ट्रिक्ट चुना गया है, और हर उसमें से कुछ कुछ ब्लॉक्स पे जाकर के, गांव के घर तक जाकर के, इतने अधिक मतलब जितने भी हमारे पास साधन है प्रचार प्रसार के, सभी का इस्तेमाल करते हुए और जितने हितधारक हैं, सभी के कान तक एक बार आवाज जरूर पहुंच जाए कि बीमा है क्या और इसको हम कैसे लें और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और मतलब नुकसान होने पर फसल का उनको क्या इससे फायदा होगा, और आगे फसल अपना जो है खेती बाड़ी आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये सबसे प्रमुख बिंदु है जिसपे कि हम फोकस करना जा रहे हैं इस बार।
0: जी बिल्कुल, यानी जो एक किसानों की तरफ से लगातार मांग थी कि कुछ किसान ऐसे थे जिन्हें जिनका ये कहना था कि अगर हमने ऋण नहीं लिया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो उनका क्यों बीमा किया जाए। मतलब अगर ऋण लिया है और तब भी अपने आप ही पहले बीमा हो जाया करता था, और अगर उन्हें नहीं कराना है तो ये उनके पास अब सुविधा है कि वो बैंक में जाकर इसकी जानकारी दे दे कि भले ही मेरा बीमा आप ना करें अगर ऋण लिया है तब भी, लेकिन इसके बारे में आपको सही समय पर सूचना देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं विभास जी से। विभास जी, देखिए, हम जब गांव जाते हैं और किसानों से बात करते हैं, और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा भी मकसद रहता है कि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिकल और व्यावहारिक समस्या किसानों के बीच देखते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उनकी तरफ से शिकायत एक तरह से कह सकते हैं कि रहती है कि हम जाएं कहां, कोई हमें सुनने वाला नहीं। अगर हमें नहीं भी कराना है बीमा, और अगर हो गया है तो उसके बारे में हमें बैंक जाना पड़ता है, कोई सुनता नहीं है, हमें कंपनी की तरफ से, जो बीमा कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें समझा सके, इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है?
2: देखिए, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहलाते हैं, CSCs, सारे किसान भाइयों को पता है। तो हम लोगों का पूरा पर्पज़ ये है कि फसल बीमा की पूरी जानकारी किसानों को दी जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हम लोग कैंप्स लगा सकते हैं, हम लोग ये सब करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं लोकल एरियाज में, उन लोगों को बताया जाता है कि फसल बीमा में क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद पूरा एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है जिसपे किसान अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी जमीन का बीमा करा सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे CSC के थ्रू होती है
0: जी।
2: और उसके अलावा फिर मतलब उनको एक हम रसीद देते हैं जिससे ये उनको प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट करा है
0: जी।
2: उसके बाद का उनका पॉलिसी का या जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका स्टेटस क्या है, वो भी हमारे वेली उनको समझा सकता है। तो इसलिए पूरी क्लेम अगर कभी आता है और अगर उनको इंटीमेट करना होता है तो उसके लिए भी वो हमारे वेली के पास आके अक्सर उनसे हेल्प लेते हैं, और फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि बेसिकली हमारा काम कनेक्शन का है। तो जो भी नियरेस्ट CSC है, और हमारे काफ़ी CSCs हैं सारे, उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक करीब करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स को हम लोग इनरोल कर चुके हैं थ्रू द CSC नेटवर्क। तो
0: ठीक है, कृष्णवीर जी, मैं आपके पास आती हूँ। अब ये बताएं कि देखिए, इस योजना को आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया है, और कहते भी हैं कि किसी योजना की कामयाबी या फिर उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको समझने के लिए 5 साल का वक्त काफी होता है, और कहते भी हैं कि किसी भी स्कीम का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 5 साल आप लेकर चलिए। अब आप कहाँ देखते हैं किसानों को इस योजना को लेकर, उनमें कितना आत्मविश्वास है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
3: देखिए अंजू, जो उद्देश्य था सरकार का इस योजना को बनाने का, वो किसानों को जो नुकसान होता रहा प्राकृतिक आपदाओं से, उससे बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जो पहले योजना थी उसमें जो लोन किसान का था उसमें कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसमें शिकायतें ये रही, कुछ बैंकों ने पैसा काट लिया, जमा नहीं किया पॉलिसी में, बहुत सारी शिकायतें रही। इसी वजह से अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की अपनी मर्जी है कि वो उसमें अपना इंश्योरेंस पॉलिसी में किस तरीके से भागीदार लें। ये सच्चाई है कि अब जब सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य यह है कि किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप आप इसमें आइए और आप फसल बीमा कराइए, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हो सके। ये तो है योजना का उद्देश्य। और योजना का जो लाभ है वो किसानों के लिए है, लेकिन कुछ कमियां, जो सुधार हो रहा है बराबर, अभी भी खामियां हैं। खामियां क्या है कि जब फसल बीमा योजना को लागू करते हैं खरीफ का, तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे रबी का करते हैं, लेकिन जब आपदा से नुकसान होता है देश के किसी भी कोने में, तो ये सच्चाई है कि अब तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी तरफ से जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसलिए लागू करवाया, जिससे सर्वे के लिए ड्रोन जो है सबसे एक सही रास्ता चुना गया है, और उससे नुकसान का जो है एक सर्वे होता है, और उसी तरीके से किसानों का जो है बीमा योजना की धनराशि दी जाती है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि पूरे गांव में जब नुकसान होगा, पहले तो ब्लॉक होता था, अब सरकार ने गांव कर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नुकसान होगा। ये हो सकता है कि एक तरफ से गांव के एक हिस्से में नुकसान हो और दूसरा हिस्सा ठीक रह जाए। तो मेरा सुझाव ये रहा है, और आज फिर मैं कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से फिर मेरा सुझाव है कि हर किसान के हर खेत का सिर्फ रसीद देना भर से जिम्मेदारी हक पूरा नहीं हो जाता, उसको कवर नोट दिया जाए कि ये फसल है, ये इसकी वैल्यू है, और यदि नुकसान होगा तो इतनी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें भी दो चीजें हैं, एक केंद्र सरकार का धनराशि है और दूसरा प्रदेश सरकारों की उसमें धनराशि होती है। कई बार प्रदेश सरकारें समय पर धनराशि अदा नहीं कर पाती तो किसानों को ये फसल बीमा कंपनियां उसको जो लाभ समय पे नहीं दे पाते। कुछ प्रदेशों ने तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की अपने यहाँ, जैसे पंजाब है, तो वहां परेशानियां होती हैं, लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। एक सिर्फ मेरा दो सुझाव है कि जब किसान को आपदा का मुकाबला करने का हालात होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां ब्लॉक लेवल पर होना जरूरी है। अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं है तो जिला लेवल पे परमानेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस कंपनी का जो उस जिले में इंश्योरेंस कर रही है फसलों का, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब ऑनलाइन जो है सब कुछ में काम नहीं चलता, ऑनलाइन किया जा सकता है लेकिन जब लेने का नंबर आता है तो ऑनलाइन में अधूरापन रहता है और किसान उसमें भटकता है। इस कमी में सुधार करना है।
0: जी जी, सुनील जी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो कृष्णवीर जी ने, एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो कवर लेटर होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार है, मकान है, यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस, सब में ये एक आपको बकायदा पॉलिसी मिलती है, उसमें जो जो चीजें कवर हैं, कितना सम इंश्योर्ड है, सब चीजें होती हैं। तो ऐसा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या आगे इस पर कुछ किया जा रहा है?
4: देखिए, जो अभी पूरे चर्चा चल रही थी उसका स्वरूप है कि जो सरकार जो है मुख्यतः तीन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसमें हम लोग बहुत काम करने में सफल हुए। पहला चीज है कि हम फसल कटाई प्रयोग को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में करके हम किसानों को भागीदार बना के हम उनको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, क्लेम दे दें। उसकी दूसरी चीज है कि इनरोलमेंट हम करें कि किसान को इनरोलमेंट में कहीं भटकना ना पड़े, हम उनकी पूरी चीज को है वो द्वार तक पहुंचाएं, और इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, सीएससी, पोस्ट ऑफिस या फिर टेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को हम योजना के बारे में बताएं, उसमें कोई त्रुटि रह गई उनको विश्वास हो और उसमें भागीदार बने। तो ये इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार वगैरह कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये फसल बीमा सप्ताह इस बार लागू चलाई जाएगी। लेकिन मुख्य जो आप कह रहे थे कि हम उनको रिसीट देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ हम लोग आज से 2-2.5 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बैंक में बीमा कराते हैं, बैंक के थ्रू बीमा होता है, उनको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर या अभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे उनको तत्काल तुरंत हाथ में ही उनको पॉलिसी दिया जाता है।
0: अच्छा।
4: उसका पर्पस ये है जो हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं, इसका बहुत वैल्यू है क्योंकि आपके पास एक कागजात है, कागजात में एक सारे चीजें लिखे होती है कि आपका किस फसल का बीमा हुआ, आपने कितना प्रीमियम दिया, सरकार ने उस आपको प्रीमियम सहायता के रूप में आपके लिए कितने बीमा कंपनियों को भुगतान किया, किस खेत में है, किस खेत में किस फसल के लिए बीमा किया गया है, कितनी धनराशि है, बैंक का खाता नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। इसके अलावा फिर हम किसान भाई को और जागरूक करते कि अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई तो इसको तत्काल हम लोग से सुधारवाए, बीमा कंपनियों को संपर्क करें ताकि इसमें सुधार किया जाए, ताकि हम भुगतान जब आपको भुगतान करना हो तो जल्द से जल्द भुगतान करें, किसी तरह की व्यवधान ना पैदा हो। खास करके ऐसा देखा गया है, पीछे हम लोग ने अनुभव किए थे कि अगर बैंक के माध्यम से जब इंश्योरेंस होता था तो किसान भाई को पता भी नहीं होता था कि मैं मेरी किस खेत की किस फसल के लिए बीमा हो गई है। तो ये एक चैलेंज था। जब हम इसमें व्यक्तिगत खेतवार आकलन करने की व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे पेरिल्स हैं जोखिम जिसको खेतवार आकलन किया जाता है, जब बीमा कंपनी राज्य सरकार के जो संयुक्त समिति होती है जब सर्वेक्षण के लिए जाती है तो वहां जिस फसल के लिए बीमा होता किया गया है वो फसल नहीं मिल पाती थी। तो ये सारे चीज जो चुनौतियां जो फील्ड में थी
0: देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि हमारी कौन सी फसल का बीमा हो गया, और वो तो जो उसको जो फसल लेनी वो लेता है, और बाद में पता चलता है कि जो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड फसल है जिसकी अधिसूचना है उसी का ही बीमा मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसी स्थिति ही क्यों आती है?
4: देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार इसमें अधिसूचित करती है फसलों को, इसमें योजना में उनके लिए जो एक क्षतिपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड होता है, ग्रांटेड यील्ड दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल का उपज आंकड़ा की आवश्यकता होता है, प्लस जो अभी हम लोग तत्काल में अगर कोई क्षति होती है, क्षति का जो मापदंड होता है वो भी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। तो राज्य सरकार ये देखती है कि किस फसल में जोखिम है, हमारे पास डेटा उपलब्ध है ताकि हम उसको अधिसूचित कर पाए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि हम लोग ने भी सर्वे किया है, अदर किया है कि जो मुख्य फसल होते हैं वो सारे कवर हैं, कुछ फसलें ऐसे हैं जिनके इल डेटा नहीं उपलब्ध होते हैं उस टाइम, उनको हम लोग राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं, बात करते हैं मौसम आधारित बीमा योजना में, जैसे खास करके आप बागवानी फसलें हैं, खास करके आपके जो सब्जी की फसलें हैं जो आजकल शहर के नजदीक या गांव में भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो वहां भी हम लोग उनके डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है अलग अलग वैरायटी के कारण, अलग अलग टाइम के कारण। तो हम लोग कहते हैं उनको कि मौसम आधारित बीमा योजना है, उसमें आप इसको अधिसूचित करें।
0: जी बिल्कुल।
3: गन्ना भी है, वो भी बाहर है अभी उत्तर प्रदेश, क्या पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, 8 प्रदेश है, लेकिन गन्ना भी अभी योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है।
0: जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और पूरे इस सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, डोर टू डोर पहुंचा जाए, किसानों के घर तक पहुंचा जाए और इसके लाभ के बारे में उन्हें बताया जा सके ताकि वो इससे जुड़े, इसका लाभ ले और जो उनकी आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
5: किसान भाइयों, अभी हमने फसल बीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर लेते हम छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहू बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: एनेक।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए और जानते हैं कुछ और इस फसल बीमा सप्ताह के अंदर क्या जानकारियां हमें मिल सकती है, आइए सुनते हैं।
3: 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा वीक मनाया जा रहा है ताकि आप किसानों को इसके लाभ के बारे में बताया जा सके और आपकी समस्याओं को भी सुना जा सके ताकि उनको सुनकर बीमा को लेकर जो सुझाव हैं बदलाव भी किए जा सके, संशोधन भी किए जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले सर मैंने कहा था कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक पहुंचे हैं हम इन लगभग 5-6 सालों में, पहले क्या आंकड़ा था और अब कहां कितने किसानों को इसमें कवर किया गया है और कितनी नई फसलों को शामिल किया गया है। सुनील जी,
4: देखिए पहले जब हम पुराने योजनाओं में अगर देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग ने देखा कि क्यों कम है, क्या किसान जानते हैं बीमा योजना के बारे में या नहीं जानते हैं, या राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर पाती फसलों को। तो ये सारे चर्चा करके हुआ कि नहीं, इसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हम इनको अच्छे से ढंग से योजना को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें पहले वर्ष में जो थे वो आप अगर संख्या देखेंगे किसानों का तो करीब वो 4 करोड़ एप्लीकेशन आए थे। और खरीफ अगर 16 की बात करें, अगर अभी हम पिछले खरीफ की बात करें तो स्वैच्छिक होने के बावजूद, योजना स्वैच्छिक हुई है, आधार इसमें कंपलसरी किया गया है, लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि इसमें किसी तरह से डी डुप्लीकेशन हम प्रॉपर कर पाए, वो इसकी गलत फायदा लोगों ना उठा पाए। तो ये सारे चीजों को करने के बाद भी अभी हमारे पास खरीफ में केवल 5 करोड़ किसान अभी बीमित हुए हैं। और हम लोग आशा कर रहे हैं ये कोविड काल का पीरियड है जब तक हम लोग के पास बहुत संसाधन कॉन्स्टेंट था, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर एप्लीकेशन को हम बीमित करेंगे इस बार। तो इसी तरह से देखेंगे क्लेम के बारे में अगर हम कहें तो क्लेम का भी अच्छा रहा है। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं 5 साल में आए हैं वहां क्लेम किसानों को मिला है। हाँ, किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि ये बीमा योजना है, बीमा योजना में लाभ उसी जगह मिलता है जहां आपकी फसल नुकसान हुई है।
3: ठीक है,
4: तो जहां जहां नुकसान हुई है वहां वहां फसल का बीमा मिला है। सरकार इसको पूरी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, देखते रहती है और इसके लिए बहुत सुचारू तंत्र भी लगाया गया है कि ताकि आपको किसी तरह की कठिनाइयां ना हो इसमें। अगर खास करके मैं आज बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो है शिकायत किसानों का होता था उसके लिए क्या करना चाहिए, तो किसान के लिए शिकायत पहले सीधे मंत्रालय को आता था, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति और मंत्रालय को। ये सारे चीजों को हम लोग ने बहुत ग्राम स्तर तक ले जा रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कहा गया कि टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी शिकायत को करें और उनको निवारण करें। इसमें भी अब जो है केंद्र सरकार ने ये निश्चित किया है और इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट हो चुका है कि पूरी कॉल सेंटर शिकायत के लिए पूरी स्ट्रेटजी, हर एक स्टेट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव टोटल होंगे ताकि आपको शिकायत पूरे डॉकेट नंबर के साथ हो और हर एक चीज पर केंद्र सरकार उस पर निगरानी रख सके कि आपकी शिकायत कैसे हुआ और कब निपटारा।
3: ठीक है सुधाकर जी, जैसे कि कृष्णवीर जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक समस्या ये भी आती है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि वो हमें बजट के हिसाब से चीजें करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो पूरा मैन पावर होता है वो उसको उसके अनुसार ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे तो किससे बात करेंगे किसान।
5: देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट होता अगर ये शायद 2 साल पहले तक तो ये रेलेवेंट था। आज के समय में आप देखेंगे तो जो भी कंपनी काम कर रही है तो उसका एक प्रतिनिधि जिला स्तर पे भी है और उसका एक एक प्रतिनिधि हर ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पर उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां हमारी कंपनी भी कार्यरत है 37 जिलों में, तो वहां 200 के आसपास हमारे प्रतिनिधि पूरे फील्ड में मौजूद हैं। तो उसमें वो ऐसे जिले भी हैं जहां पर की प्रीमियम जहां जो जिससे कंपनी का आमदनी होता है वहां नहीं के बराबर है, वहां भी जो है हमारे हर ब्लॉक में आपको आप हमारे प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो ये समस्या आती है ज्यादातर उन छोटे राज्यों में जहां पर की प्रीमियम ही बहुत कम है। अगर सारे जगह पे प्रतिनिधि लगा दिया जाए तो जितनी प्रीमियम नहीं आती है उससे अधिक हमारा
3: कॉस्ट
5: बढ़ जाएगा। तो वहां पे एक समस्या है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से उसको ये सुलझाने की कोशिश की जा रही है, शायद उसको भी कुछ जल्दी से
3: उसको लेकर क्या किया जा रहा है सुनील? जैसा कि
4: देखिए इसमें चीजें हैं जैसे अभी बता रहे थे, जिसमें पहले सेगमेंट में ही सुधाकर जी बताया कि कुछ ऐसे जिलों को हम लोग चिन्हित करते हैं जहां पोटेंशियल हो और इंश्योरेंस सभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट इस बार भी चुने हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनके लिए बिजनेस है, सरकार के लिए है कि किसानों को सुविधा है, तो उसके बीच में क्या बैलेंस हो और कैसे करे, तो इनके इंश्योरेंस कंपनी के जो तंत्र हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट करते हैं, प्लस जो है ये फसल बीमा सप्ताह, फसल बीमा पाठशाला, ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं। और जो चीजें वहां अगर पोटेंशियल है और किसानों को नहीं है तो टारगेट भी दिया गया है कि हम आप वहां जाएं और टारगेट करें। तो बिजनेस के साथ साथ जो उनकी सरकार की दायित्व है उसमें पूरी समायोजित करके योजना बनाई जाती है और वहां हम लोग करते हैं, राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग हर एक किसानों को समझाते हैं कि हाँ आपके पास जो है यहाँ क्षति हो सकती है, यहाँ रिस्क है, इस रिस्क में आपको बीमा करानी चाहिए, बाकी स्वैच्छिक है बीमा, किसान चाहते हैं तो बीमा होती है।
5: और इसमें मैं एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे सीएससी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, पहले भी उन्होंने बताया कि ये हर गांव में एक सेंटर तो है ही, कई कई गांव में तो दो दो सेंटर भी है और कोई बहुत अधिक घनत्व वाला है तो हॉस्पिटल उससे भी ज्यादा संख्या मिल जाए। तो वो जो सेंटर्स पे हैं उनको बीमा कंपनी, राज्य सरकार के और स्वयं सीएससी के द्वारा भी जो वहां काम कर रहे हैं, इसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको काफी उनको मैन पावर इन्हांसमेंट होती है, उनकी जो तकनीकी जानकारी बढ़ाई जाती है, समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है, तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए योजना का एक्सटेंडेड आर्म है, वो भी हर तरह से हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए सामने खड़े हैं वो, तो चाहे बीमा का लाभ लेना हो या बीमा कराना हो।
3: अच्छा जी जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी कि आप ये फसल बीमा मित्र कुछ हम सुन रहे हैं, ये क्या है?
5: हाँ, ये एक नई कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लाई है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में कह लीजिए कि एक वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन क्या मतलब, जो भी वॉलंटियर करेंगे तो एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा कि फसल बीमा मित्र के रूप में आप कार्य कीजिए
3: किसानों के बीच में से ही।
0: असली बात यह है कि इसलिए मित्र खड़ा करना पड़ रहा भारत सरकार को कि कंपनियों के और किसान के बीच में जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो मित्र जो है हर गांव में करना जरूरी हो गया, इसीलिए किया जा रहा है, जिससे इसका किसानों को जो समस्याएं हैं वो है समय पर उसको इंश्योरेंस का जो प्राइस प्रीमियम जो देता है उसका नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाए, भरपाई करवाने के लिए ही ये ग्राम लेवल पर भारत सरकार मित्र जो है योजना खड़ा कर रही है।
3: जी मैं आपसे समझना चाहूंगी विभास जी, सीएससी का रोल किस तरह का है और कैसे इसे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को किसानों को समझाएंगे?
6: देखिए जैसे अभी सुधाकर जी ने यूपी की बात करी थी तो मैं यूपी का एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यूपी में हमारे करीब 80,000 केंद्र हैं, एवरेज हो गया करीब करीब 1100-1200 केंद्र हर जिले में
3: जी।
6: तो ये ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने कहा हर गांव में एक केंद्र है ही, हर ग्राम पंचायत में डेफिनेटली एक केंद्र है और वहां पे सारी उन लोगों को जानकारी होती है फसल बीमा के बारे में। तो हमारे किसान भाई वहां जाके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से जाके एनरोलमेंट भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है जिसमें कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं उनसे। तो वो एक सप्लीमेंट्री मैनपावर की तरह से भी यूज होता है, कई लोग करते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो उसके स्टेटस के बारे में, अगर कोई रिफंड या रिजेक्टेड पॉलिसी है उसके स्टेटस के बारे में, ये सारी चीजें हमारे केंद्र से पता की जा सकती है
3: जी। और कृष्णवीर जी, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, किसानों की एक समस्या हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो कोई अगर क्षति होती है या कोई आपदा आती है तो राज्य की तरफ से भी वो आपदा राहत राशि होती है, और वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अगर वो किसान लाभ ले रहा है, अगर उसने बीमा भी करवाया उस फसल का, तो यहाँ पर किसान कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमें पैसा कौन सा मिल रहा है, दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये आप अब जब किसानों से बात करते हैं तो किस तरह की शिकायत रहती है उनकी तरफ से?
0: देखिए, प्रदेश सरकारों का जो आपदा में पूरा प्रबंधन करती है सरकार और जो पैसा किसानों को देती है, वो राशि जो है वो कम होती है, और वो कम राशि इसलिए होती है कि तत्काल किसानों को एक मदद है आर्थिक रूप से, जो तुरंत मदद की आवश्यकता है किसान को, तो प्रदेश सरकारें सिर्फ तुरंत सहायता के लिए मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल बीमा कराया गया है और जिस कंपनी ने किया है, जितना नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए, और वो समय पे भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी तक शिकायत ये थी कि समय पर उसको पैसा जो नुकसान है वो उसको मिल जाए। किसान ये चाहता है कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान है वो हर किसान को समय पर मिल जाए, और जिस दिन कंपनियां देना शुरू करेंगी तो एक किसान जो है 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं बल्कि 13 करोड़ किसान इस योजना को स्वीकार करें।
3: सुनील जी, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे?
4: देखिए, ये चुनौतियां सरकार के पास रही है और अभी बहुत हम लोग सफल हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते कि पूरे हम लोग जितना लक्ष्य रखे हैं उसमें सफल हो पाए हैं, लेकिन पहले इसमें धीरे धीरे कड़ी हम लोग हटा रहे हैं कि क्यों देरी होती थी। पहले चीजें थी कि डेटा जो आता था बहुत देर से आता था, उसको डेटा को कैलकुलेट करने में कि कितना क्षति होगी उसमें दिक्कत होती, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का समावेश किए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको क्षति का आकलन कर पाए। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा आता था बड़ा फिजिकली आता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होता था, उस सारे चीज ठीक हुए। दूसरा मेन चीज था कि पहले हम लोग सीधे बैंक को देते थे और बैंक जो है सीधे जो इंश्योर्ड फार्मर होते थे उनके खाते में ट्रांसफर करते थे, अब हम लोग सीधे इंश्योर्ड फार्मर्स के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां थी उसको हम लोग ने दूर कर दिया है। अब केवल चुनौती केवल इतना ही बच गया है कि कहीं कहीं जो है राज्य सरकार जो है प्रीमियम नहीं दे पाती है समय से, इसके कारण भुगतान डिले होता है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जो अब ऐसे बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो तत्काल 2 महीने का हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2 महीने के अंदर जो मौसम फसल कटाई प्रयोग खत्म होते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान करना होता है, इसके लिए मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, प्लस अगर भुगतान नहीं किए तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और उन पर 12% का ब्याज दर निर्धारित करके हम लोग भुगतान भी करवाते हैं। तो ये सारे चीजें आई है, तो जिसके कारण से जो है सबको दायित्व दिया गया है, दायित्व के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक समय दिया गया है, उस समय में करें, और टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया ताकि ट्रांसपेरेंट वे में मॉनिटरिंग हर एक स्टेक होल्डर हर एक आदमी कर पाए, वो अपने मोबाइल के माध्यम से है। लेकिन अगले सीजन से हम लोग जो है सीधे सीधे भारत सरकार ही पैसा ट्रांसफर करेगी, ऐसी व्यवस्था कर रही है इंश्योरेंस कंपनी हमारे पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। उससे 2-3 फायदे

0: हम लोग चालू करने वाले हैं, तो ताकि अब हम लोग एकदम रूट कॉज में पता कर पाए।
1: किसान साथियों, अभी हमने सुना किस तरीके से पहले जितनी समस्या आती थी हमें हमारे बीमा काम करने में, किस तरह कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं आया, इन सारी समस्याओं को जितना हो सके जो लंबी प्रोसेस थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते और सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
0: कि किसान भाई को सर आता कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ,
2: जी।
0: मेरा जो आकलन हुआ ठीक नहीं हुआ, वहाँ प्रतिनिधि पूरे अगर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में आके और सारे चीज रिकॉर्डेड रहेगा और हम लोग उस चीज को बाद में भी ऑडिट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवांसेज बनेगी तो हम लोग तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं, ये सारे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। योजना का पर्पस ही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में पूरे हम फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लाए कि हम आपको पूर्ण सुरक्षा दे रहे हैं।
3: मैडम एक और मैं इस कड़ी में और एक बात बोलना चाहूंगा कि किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी इस बीमा योजना का लाभ मिले, जैसे समय अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि देर हो रहा है, उससे देर होने का मुख्य कारण एक तो सब्सिडी है, दूसरा है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आता है हमारे पास, तो इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट शुरू किया है। इस बार प्रपोजल है जिसमें कि सारा रिमोट सेंसिंग से लॉस एस्टिमेशन होगा ताकि वो तुरंत डेटा आ जाए और उस तरह से
2: तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिसका जिक्र सुनील जी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि किसानों की तरफ से एक ये भी सवाल रहते हैं या फिर आशंका रहती है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना सही हुआ है, किस आधार पर हुआ है, तो उसे और पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स भी पढ़ रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए, तो उनमें से एक पॉइंट था कि उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा और जो बीमित राशि है जो मूल्य है उसे कम नहीं किया जाएगा। तो ये किस तरह से ये इसका गणित क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है?
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: अंकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है, नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर

0: दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था, लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।
1: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मूल्य की बात कर रहे हैं कि जो उपज है उसकी जो बीमित राशि है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मानक क्या है, क्या है इसके पीछे का पूरा गणित, तो मुझे लगता है सुनील जी आप इसे बेहतर समझा पाएंगे।
2: देखिए इसमें सरकार की हम मंशा रही है कि हम पूरे जितने क्षति हो उसको हम पूर्ण भरपाई करें, समानुपातिक जितनी क्षति हुई उसको करें। अगर 100% लॉस हुआ तो 100% देंगे, 50% लॉस हुआ तो 50% देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो है दो तरह के हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि या तो आप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण मुहैया कराते हैं उसी के आधार पर वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी बहुत साइंटिफिक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि C2 जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है उसके आधार पर हर एक जिले में जो आप वेराइटी लगाते हैं, जो आप इनपुट यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं उसके आधार पर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित होता है। इस और उसी को हम लोग सम इंश्योर्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं। दूसरा एक राज्य सरकार को और दिया गया है कि आप उसको कुछ क्रॉप्स का कि बहुत दिनों से नहीं अपग्रेड हुआ होगा स्केल ऑफ फाइनेंस या उसमें लगता होगा कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक चॉइस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले जो आपका 7 साल का उपज है उसको एवरेज यील्ड लीजिए और आज का जो पिछले साल MSP घोषणा की गई है या इस साल जब आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें MSP की घोषणा हो गई है तो उस MSP से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू बनेगा पर हेक्टेयर वो सम इंश्योर्ड होगा, यील्ड आपको आ गया पर हेक्टेयर और MSP के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सम इंश्योर्ड।
1: ठीक है सुधाकर जी, तो ये सब कैलकुलेशन किस स्तर पर होते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं जो गाइडलाइंस मिली है सरकार की तरफ से उसके आधार पर?
3: नहीं, ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है, जब जैसा आपको पता होगा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कंपनियां सबसे कम प्रीमियम देती हैं उसी को वो डिस्ट्रिक्ट में बीमा करने का अधिकार मिलता है। तो जब टेंडर का डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी समय राज्य सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सम इंश्योर्ड होगा। जैसा भी सुनील जी ने बताया कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, राज्य सरकार के अधीन है कि वो किस तरीके को अपना करके सम इंश्योर्ड तय करती है, तो पहले ही डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये सम इंश्योर्ड इस बार इस क्रॉप में रहेगा। और इंडेमनिटी लेवल दूसरा होता है कि जो क्षतिपूर्ति का स्तर क्या होगा वो भी पहले ही तय हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो 70% हो, 80% हो या 90% हो। जो क्रॉप अधिक रिस्क की है उसको 70% पर राज्य सरकार रखती है और जो हमेशा अच्छा उपज देने वाली है उसको 90% तक रखती है। तो ये सारा राज्य सरकार करती है, बीमा कंपनियों का इसमें रोल नहीं है।
1: जी कृष्णवीर जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो C2 की बात की जा रही है, स्केल ऑफ फाइनेंस की बात की जा रही है, इसे कितना समझते हैं किसान?
4: देखिए जो क्रॉप कटिंग का जो प्रोडक्टिविटी का पिछला 7 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव बराबर आता रहता है और जो पिछला MSP है उससे कैलकुलेट करके जो सरकार योजना बना रही है ये इस पर काम चल रहा है, अभी इस पर काम चल रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि जो जिला स्तर की यील्ड होगी, जो लेवल होगा प्रोडक्टिविटी का, और उसको MSP से कैलकुलेट करके जो टोटल फसल का दाम होगा उससे किसान को जो है कंपनसेट जो है नुकसान होने पर जो है वो दिया जाएगा। ये किसान के हित में जरूरी है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से जो पहले जिला और गांव लेवल पर दिक्कतें थी उसका समाधान करने का प्रयास सरकार ने किया है। खासतौर से जो असेसमेंट का सुधार किया है टेक्नोलॉजी का, वो समय की आवश्यकता थी और उसको सरकार ने लागू किया है। अब सिर्फ स्थिति यहां आके रुकी हुई है कि केंद्र सरकार जिस दिन

0: वे सीधे किसानों को नुकसान का पैसा उनके खाते में देना शुरू करवा देंगे, जैसा कि सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हम किसानों के नुकसान का पैसा केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में दे, ना कि बैंक को बीच में रखे या पोस्ट ऑफिस को रखे या कंपनियों को अभी तक जो रखा गया, क्योंकि उसी से किसान जो है अभी तक जो समस्याएं हैं उसी लेवल पर है। वो समस्या का समाधान जिस दिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंगल क्लिक पर जो है 13 करोड़ किसानों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके सारी योजना है। तो ये भी योजना जिस दिन केंद्र सरकार अपने तरफ से सीधे किसानों खाते में देना शुरू कर देगी उस दिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रदेश सरकारें जो अपना पैसा भागीदारी का है वो समय पर दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये तो
1: जवाबदेही भी यहाँ पर तय हो जाएगी,
0: किसान के हित में किया।
1: जी बिल्कुल विभास जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, जो इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं इसे और सशक्त बनाया जा रहा है?
2: देखिए मैं तो सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ, हमारे यहाँ एनरोलमेंट बढ़े हैं। हर सीजन में लगातार एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आके जुड़ रहे हैं इस स्कीम के साथ थ्रू द सीएससी नेटवर्क। तो हमको तो लग रहा है कि ये स्कीम
1: काफी लोकप्रिय हो रही है।
3: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटाबील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: जानकारियों को बढ़ाते हुए ये सुनते हैं कैसे आसानी से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
5: देखिए मैं किसान भाई बंधु को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक आप खेती करते हैं, खेती में जोखिम बहुत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप एक भविष्य के लिए एक निश्चित आय आप सोचते हैं कि हमको ये आएगी और उसके लिए वर्तमान में आय से आप फ्यूचर की क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। अगर किसी न किसी कारण से वैसा कभी ना हो, हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आपके जो फसल नुकसान हो जाए और जो आप आय के लिए जो आशा किए थे वो आय में बाधा हो, इस चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। आप इसका लाभ लें, बहुत सिंपल है, आपको केवल 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ फसलों के लिए, रबी में 1.5% प्रीमियम है अधिकतम, बाकी बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है जो कम ही है, और वो जो है वो बाकी शेष राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करती है। आप योजना में देखें, अपने योजना के बारे में जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप कृषि विभाग से ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बीमा कंपनी के जितने कार्यालय वहां तक हम लोग लगाए, इसके अलावा होर्डिंग हम लोग वैन वगैरह चलवा रहे हैं कि हर एक गाँव में पहुंचे, आपको जानकारी दे, पंपलेट बांटे ताकि आपके पास रहे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जब आए तो सारे चीजें मिले, ये सारे चीजें हमको जानकारी
1: एक्सटेंशन वर्क जो है वो भी
5: आप जो है बहुत सिंपल है, हर एक जगह इसकी उपलब्धता है, आप बैंक के माध्यम से करा सकते हैं, सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल पर जाके कर सकते हैं, ये कहीं भी डोर स्टेप पर हम लोग कोशिश किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए बहुत सरल तरीका है, केवल आपको 3 कागजात देने हैं, कागजात भी नहीं कहिए, कागजात के रूप में केवल आपको केवल अगर आप भूमि स्वामी हैं तो रसीद देने पड़ेंगे उनके, अगर आप पट्टे पर लिए हैं तो उनके आपके लिए घोषणा देना पड़ेगा, एक राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है, आपको क्रॉप के बारे में स्व घोषणा करना है कि हम ये क्रॉप के लिए बीमा करा रहे हैं। हाँ, ध्यान दें कि जिसका बीमा कराए वही फसल लगाए, अगर फसल बदलते हैं तो आप बीमा कंपनी में जाके बदलवा दें ताकि आपको भविष्य में कठिनाई ना हो। बैंक का हम लोग दस्तावेज लेते हैं, दस्तावेज इसलिए लेते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हमको भुगतान करना होता है बीमा कंपनियों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ताकि हम आपके डिटेल हो पहले से कैप्चर करके रखें और दें। हाँ, ये योजना जो है इसमें हम लोग नई 2 चीज और जोड़े हैं, आधार कंपलसरी है ताकि जो है किसी तरह का योजना का सही लोगों को सही जगह पहुंच पाए, और लैंड रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन किए हैं ताकि जो है जिस लैंड में है उसी लैंड का आपका बीमा हो और पूरा डिटेल हमारे पास हो और किसी तरह का जल्दी से जल्दी
1: किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के
5: ट्रांसपेरेंट वे में करें।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, आपने फसल बीमा योजना से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की, जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी आरजे तनुषा आपके तरानों की हमसफर को, और एसएन रेडियो पर आज हम सुनेंगे एक दिल छू लेने वाला एपिसोड, जिंदगी के रंग पेट्स के संग, हमारा स्पेशल एडिशन। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे रिश्तों से मिलवाती है जो लफ्जों से परे होते हैं, जो सिर्फ साथ नहीं देते बल्कि हमें जीना सिखाते हैं। आज की महफिल थोड़ी खास है, थोड़ी गहरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्यार की जो आज भी यादों में जिंदा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत और उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अनमोल हिस्सा, उनका पेट जुलू, एक ब्लैक कॉकर स्पैनियल, जो सिर्फ एक पेट नहीं, एक दोस्त, एक रक्षक और एक फैमिली मेंबर था। तो चलिए आज यादों के साथ जिंदगी के इस रंग को महसूस करते हैं। तो डॉक्टर हेमंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा फील कर रहे हैं सर आज?
2: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पेट्स के बारे में कोई तो सोचता है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हमें लगा ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और आपको जाना तो मुझे लगा आपसे ज्यादा करेक्ट गेस्ट इस शो के लिए कोई हो नहीं सकता, बिकॉज आपका सिर्फ एक पेट से रुझान नहीं है, अपने पेट से रुझान नहीं है, आप बहुत सारे पेट्स, बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स को सर्विस करते हैं और उनके लिए दिल से महसूस करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम चाहेंगे कि हमारे श्रोतागण इस मैसेज को आउट एंड लाउड समझें कि आप कैसे सेवा भाव से इन जीवों की सहायता कर सकते हैं, इनको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, अपने आप से खुद से बाहर निकलकर किसी और जीव के बारे में सोच सकते हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं जुलू के बारे में पूछना चाहूंगी, आपका पेट कैसा था, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, थोड़ा सा जुलू के बारे में अगर आप बताना चाहें तो हमें।
2: अच्छा, 2012 में हमारे पास आया था, एंड छोटा सा था, बिल्कुल ही नन्ना मुन्ना सा, एंड शुरू में ही जब उसको भौंकना तक नहीं आता था तो हमारे घर के बिल्कुल गेट पे मैं कदम आगे बढ़ा रहा था और वो एकदम से चिल्लाता हुआ आया। उस टाइम उसको भौंकना भी नहीं आता था सही से, इनफैक्ट भौंकता भी नहीं था, तो भी उसने दो गाड़ियों के नीचे से देख लिया कि मेरा पांव एक सांप के ऊपर पड़ने वाला था।
1: Oh my God.
2: तो ये सांप कोबरा सांप था। Oh. और वो एकदम से ऐसा भौंकते चिल्लाता हुआ आया, तो फर्स्ट थॉट तो मेरे दिमाग में यही आया कि इसको हो क्या गया है, यू नो। तो एकदम से आया और कुछ काटने लगा, तो मैं पीछे को हटा देखने के लिए उसकी तरफ, तो देखा मेरे आगे आके वो भौंकने लगा सांप के तरफ। तब मेरे को सांप दिखा और देखा कि कोबरा है,
1: मेरी बात है।
2: तो मैंने इसको उठाया और सांप को स्लोली अपने आप चले गया वो,
1: जी जी।
2: तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट काश पैर पड़ जाता मेरा उस पे, तो हो सकता है वो पलट के काट भी लेता।
1: बिल्कुल,
2: तो बिल्कुल छोटे से पे उसने मेरी जान बचाई है,
1: बताएं।
2: फिर उसके साथ तो जिंदगी बढ़िया कटी
1: जी। उसका नाम आपने कैसे डिसाइड किया और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, अगर आप हमारे श्रोताओं को बताएं जी।
2: अच्छा, ये काले रंग का कॉकर स्पैनियल था
1: जी,
2: एंड काले रंग का था, तो मैं, मेरा बचपन अफ्रीका में कटा है, तो जुलू एक वॉरियर थे, वॉरियर किंग साउथ अफ्रीका में, तो उसी के नाम पे रखा क्योंकि इसके जो ये जो इंसिडेंट हुआ था
1: जी
2: उसके बाद हमने सोचा कि ये वॉरियर ही है
1: करेक्ट करेक्ट, इसकी
2: जो।
1: स्पिरिट ही वॉरियर की है जी।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: तो
2: तो एंड अदरवाइज कैरेक्टर इसका बहुत स्वीट नेचर्ड,
1: जी
2: हर एक के साथ घुल मिल ले, सारे स्ट्रीट डॉग्स इसको पसंद करते थे
1: जी
2: और हम पैदल यानी घूमने निकलते थे तो साथ में 8-9 स्ट्रीट डॉग साथ में लगते थे
1: वाओ
2: इसके चारों तरफ इर्द गिर्द हम
1: वाओ,
2: दोनों के, तो बड़ा अच्छा लगता था।
1: क्या वो
2: हाँ
1: फ्रेंडली
2: जी
1: था, क्या जुलू फ्रेंडली था
2: बहुत फ्रेंडली, हमें
1: जी
2: तो ये लगता था ये चूहा नहीं खरगोश
1: जी ओ
2: है।
1: हाउ अडोरेबल,
2: कुत्ता
1: डॉग
2: नहीं
1: नहीं है
2: खरगोश
1: खरगोश
2: सॉरी।
1: है जी। हाउ अडोरेबल। तो आपने जुलू को जब आपके जीवन में आप लेके आए, तो कोई कॉन्शियस डिसीजन था, कोई चॉइस थी, या आप हमेशा, जैसे आपने बताया आप अफ्रीका में आपका बचपन बीता, तो हमेशा ही आप एनिमल से सराउंडेड रहे, क्या ऐसा रहा हमेशा पेट्स रहे, किस तरह से जुलू आपके जीवन में आया?
2: हाँ जी। तो बचपन में हमारे फादर हमेशा डॉग्स रखते थे एंड वो सारे सॉर्ट ऑफ मिक्स ब्रीड स्ट्रीट डॉग टाइप के थे, तो
1: जी
2: बचपन हमारा डॉग्स के साथ हम खेले कूदे उन्हीं के साथ हैं।
1: जी
2: फिर जब इंडिया आए तो थोड़ा सा घर की वजह से रिस्ट्रिक्शन था पेट्स रखने में, तो जब 2012 में बड़ा मकान हमने अपना लिया तो देन ये हुआ मेरे को कि मेरे भी बच्चों को एक पता होनी चाहिए कि एक पेट घर में होने से के क्या फायदे हैं, एंड फॉर देम टू कि उनको सीखना चाहिए कि जो कंपैशन होता है एनिमल्स के लिए वो आता है।
1: राइट
2: हाँ जी
1: राइट। चलिए इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा पहला गीत। दोस्तों कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनकी यादें कभी साथ नहीं छोड़ती, जैसे कि हम सुन सकते हैं डॉक्टर हेमंत को कि आज भी उनके जहन में जुलू की यादें कितनी फ्रेश हैं और कितने प्यार से वो जुलू के बारे में हमें बता रहे हैं। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे जुलू के बारे में थोड़ा सा और कैसे जुलू के आने से हेमंत सर की लाइफ चेंज हुई, उनके अराउंड सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, उनका जीवन और सुंदर और खुशहाल हुआ। सुनते हैं हमारा पहला गीत, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक डॉक्टर हेमंत।
1: थैंक यू
0: सर। आप अगर हमें बताना चाहें कि जुलू के आपके जीवन में आने से क्या क्या चेंजेस आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ और पेट केयर की सबसे इम्पोर्टेंट नीड क्या होती है, किस तरह से आपने अपने आप को इवॉल्व किया उसके अराउंड, उसको सूट करने के लिए?
1: एक तो पेट के आने से पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है
0: जी।
1: बट अपनी अपनी सोच है। बट ये है कि घर का माहौल अच्छा बनता है, लोग एक और सदस्य आ जाता है, फैमिली मेंबर घर में
0: जी।
1: तो और एक ड्यू टू आर एज हमें लगता है कि हमारा वो बचपना सर जा रहा है, वो वापस हमारे बचपन की याद दिला देता है कि हम भी खेल सकते हैं, कूद सकते हैं उसके साथ
0: जी।
1: और लेकिन पेट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आती हैं साथ में।
0: हाँ जी।
1: तो ये सोच के पेट लाने चाहिए घर में कि एक और मेंबर आ रहा है एंड उनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, तो हमें ये सोच के चलने चाहिए फॉर लाइफ। कुछ लोग शुरू में ले आते हैं फिर सोचते हैं कि नहीं हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो पहले ही माइंड मेकअप करके चलने चाहिए कि अगर आप उसकी लाइफ के लिए लुक आफ्टर कर सकते हैं तभी लाने चाहिए घर में।
0: राइट। लॉन्ग टर्म सोच के लाएं, ऐसे नहीं कि मेरे लिए आज मुझे लग रहा है तो मैं ले आऊं, कल मैं देखता हूं कि मैं नहीं इसको मैनेज कर पा रहा तो मैं उसे छोड़ दूं, तो उनको कितना ट्रॉमा कॉज होता है, प्लस ये कितना गलत है। खैर इन एनी केस, और कोई ऐसा मोमेंट अगर आपको रिकॉल हो रहा हो आज हमसे बात करते समय, जो आपका जुलू के साथ वन ऑफ योर फेवरेट मोमेंट्स था, जिसने आपको बहुत हंसाया भी या शायद टीयर्स ऑफ जॉय दिए, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाकया अगर आप साझा करना चाहें, और जुलू कैसे, मतलब कितने समय आपके साथ रहा और व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ हिम बीइंग विद यू एंड देन हाउ डिड ही पास अवे, लाइक इफ यू कैन शेयर विद अस।
1: हां जी, तो जो वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो हमें बड़ा हंसाता था वो जब भी हमारे ससुर जी घर आते थे हमसे मिलने हैं, तो उसके नखरे यही होते थे कि बस घूमने उन्हीं के साथ जाना है। बस शोर मचाते था कि नहीं बस उन्हीं के साथ जाना है और कोई नहीं। तो बस वो अपने उन्हीं पे भौंकता था कि चलो मेरे को लेके चलो और उनके साथ घूम के आने के बाद उन्हीं पे शोर मचाता था कि मेरे को खाना खिलाओ, तो बेचारे वो अपने हाथ से उसको खाना खिलाते थे।
0: हाउ एडोरेबल।
1: तो ये हमें हमेशा हंसाता था
0: जी,
1: फनी था, कोई पुराना नाता होगा इसके साथ।
0: जी जी जी, आई थिंक यू आर वेलिंग अप थिंकिंग अबाउट हिम, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी जी, आई एम सो सॉरी एंड लाइक इफ आई कैन आस्क यू। जी
1: या ऑफ कोर्स, हाउ ही पास्ड अवे, उसको कैंसर हो गया था, ही हैड रेक्टल कैंसर हुआ था जो इवेंचुअली काफी स्प्रेड हो गया था। दो तीन बार ऑपरेशंस करे हुई हमने, सब कुछ कोशिश कर ली, इवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह डॉग्स के, एंड इवेंचुअली ही हैड टू बी पुट टू स्लीप बिकॉज कंडीशन काफी खराब हो गई थी, बहुत स्प्रेड हो गया था।
0: सो सॉरी सर,
1: ये था। हाँ जी,
0: आई एम सो सॉरी फॉर लॉस। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत दोस्तों। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस यादों में बदल जाता है, और हर याद एक नई मुस्कान देती है और कुछ लम्हे देती है। सुनते हैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक हेमंत सर।
1: थैंक यू
0: सर। अब मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पेट्स ले आते हैं घर में, बट उनके घर में एज ए यूनिट वो डिसाइड नहीं करते, वो सिर्फ अपने विम्स एंड फैंसीज पे ले आते हैं, और फिर घर में बच्चे कंफर्टेबल हैं नहीं हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं नहीं लेते, या कई बार बच्चे बहुत वायलेंट भी बिहेव करते हैं पेट्स के अराउंड। मैंने देखा है उनको शायद राइवलरी हो जाती है, वो समझ नहीं पाते, उनको इनसिक्योरिटी होती है। तो आपके हिसाब से, बिकॉज आप इतने सारे, इनफैक्ट नॉट जस्ट योर ओन पेट, आपने इतने सारे स्ट्रे एनिमल्स को भी आई थिंक शेल्टर किया है, उसके बारे में हम आगे पूछेंगे, तो यू अंडरस्टैंड द होल साइकी एंड द होल सिस्टम हाउ दिस वर्क्स। तो आपके हिसाब से अगर कोई पेट लेके आना चाहे अपने घर में, तो वो किस तरह से अपने बच्चों को रेडी करे, क्या बेनिफिट्स होते हैं पेट घर में होने से बच्चों के लिए, और किस तरह से एक फैमिली प्रिपेयर हो सकती है बिफोर हैविंग अ पेट इन द हाउस, सो दैट वो रिस्पॉन्सिबली उसकी टेक केयर कर सके।
1: हाँ जी, तो इसमें एक चीज तो ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही डिसाइड करने की है कि वी आर प्लानिंग, तो उस हिसाब से उनको ये सोच के चलनी चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट एक दो साल बोर हो गए या डॉग नॉटी निकला, वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो पहले ही सोच लें कि शुरू से अगर लिया है तो आखिर तक रखना है। क्योंकि एक बार एक डॉग घर में आता है तो उसको यही फैमिली मालूम होती है, अगर फिर एडॉप्शन के लिए जाए या अबैंडन हो तो इट्स नेवर द सेम। तो अगर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो ना लें। सेकेंडली, स्पेशली फर्स्ट टाइम ओनर्स का इट वुड बी बेटर कि जो पेट पेरेंट्स ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग पेट पेरेंट्स, उनसे काउंसलिंग ले लें कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चों को क्या क्या समझाना है, कैसे करना है। बच्चे आते हैं पूछ पकड़ के खींच रहे हैं, खाते खाते कुत्ते का वो उसको छेड़ते हैं, तो कुत्ता अपने आप एग्रेसिव बन जाता है। तो ये काउंसलिंग जो है वो बहुत जरूरी है फॉर फर्स्ट टाइम पेट ओनर्स, कि उनको रखना है तो पहले एक बार पता तो कर लें। एंड नॉट ओनली दैन, कि लोग सोच रहे हैं कि हम किसी के पास देखा कि ये वाला ब्रीड वो ब्रीड तो वो अच्छा लगा,
0: बिल्कुल,
1: तो उस पे ना जाएं। हर ब्रीड की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड अ लॉट ऑफ देम आर इनब्रेड,
0: राइट,
1: तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में। और जो बाहर की ब्रीड्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट को सूट नहीं करती हैं। तो सिंपल रूल होता है कि मेरे पास कॉकर स्पैनियल था, उसको समर्स में आफ्टरनून्स एंड नाइट बगैर एसी के मैं रख ही नहीं सकता था।
0: राइट
1: हाँ, तो ये सब सोच के, एंड सबसे अच्छी चीज जो होती है इज टू एडॉप्ट ए स्ट्रीट डॉग। तो उसमें क्या है कि वो यूज टू होते हैं अपने एनवायरमेंट के लिए एंड उनमें बीमारियां कम होती हैं, दे मच बेटर गार्ड डॉग्स।
0: राइट,
1: वो अगर गार्ड डॉग के हिसाब से कोई लेना चाहे तो अपनी इंडियन डॉग्स जो हैं मच बेटर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी सोचना होता है कि इनका एक्सपेंसेस कितने होने, इनको वैक्सीनेशंस भी देने, डॉक्टर विजिट्स होंगी, खाना खिलाना है, किस टाइप का खाना खिलाना है, और तो ये सारे एक्सपेंसेस भी अकाउंट फॉर करने होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: बिफोर कि डिसाइड करें कि हमें एक और घर का सदस्य लाना है।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं तो सदस्य ही बोलूंगा, घर का मेंबर, कि कि उसी हिसाब से ट्रीट करने चाहिए। और बच्चों की और पेरेंट्स की काउंसलिंग, स्पेशली अगर फर्स्ट टाइम पेट सोच रहे हैं लाने की घर में, तो ये बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही एक नुएंस्ड और बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड एक आपने एक ऑब्जर्वेशन हमारे साथ साझा की, कि कई बार हम सिर्फ ब्रीड्स देख के उनको घर ले आना चाहते हैं और अपने घर का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, एक फैशन के लिए, एक फैड के लिए, ये जाने बगैर, ये समझे बगैर कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशो इकोनॉमिकली हम उठा सकते हैं या नहीं, ज्योग्राफिकली वो हमारे लिए कितना फिट बैठता है, एक पूरा इकोसिस्टम है क्या हमारे पास उस पेट को, उस ब्रीड को हैंडल करने के लिए। तो और बहुत सही बात आपने कही कि जो हमारी देसी ब्रीड्स हैं वो बहुत मच मोर रेजिलियंट हैं और रोबस्ट हैं, और उनको पेट करना, उनको रेस करना, उनको रखना मच मोर कन्वीनियंट है फॉर अ मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड विजवी कोई एक यू नो लग्जरी डॉग जिसको इतनी रिक्वायरमेंट्स है जो आप पूरी नहीं कर पाएंगे एक पॉइंट के बाद। तो उन सब फैक्टर्स को फैक्टर इन करें बिफोर यू डिसाइड ऑन द ब्रीड, ऑन द डॉग, ऑन द पेट जो आप चाहते हैं अपने जीवन में लाना। इसी से सर मैं आपके जो आपकी पर्सनल जो आपकी लाइफ की जर्नी है आफ्टर जुलू आल्सो, क्या जुलू की पासिंग अवे ने ये ट्रिगर किया या बिकॉज आप हमेशा एनिमल लवर थे, यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय एनिमल्स लाइक आई सेड, तो ये आपके अंदर एक ऑलवेज दिस वाज अ क्वालिटी, हाउ डिज दिस डेवलप जो स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करते हैं, कितने स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करते हैं अगर आप बताएं हम सभी को?
1: ऑन एन एवरेज हमारा एक एनजीओ भी है जिसमें करीब 200 स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं, बट घर के इर्द गिर्द हमारे करीब 12-13 कुत्ते हैं, उनको तो मैं पर्सनली खुद फीड करता हूँ। एंड ये जो है जो जर्नी है एनिमल्स की, ये बचपन से ही थी बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने, फादर ने रखे थे डॉग्स, तो शुरू से बचपन से ही जानवरों से प्यार था। तो फिर सिर्फ जानवर ही नहीं, सिर्फ डॉग्स ही नहीं, हम कहते हैं कि अपनी छत पे पानी रख दें, जब रोटी बची है, चावल बचे हैं, छत पे रख दें, कुत्तों को खिला दें, चिड़ियों को मिल जाएगा, गिलहरियों को मिलता है, कुत्तों को मिलता है, गाय गुजरी उसको पानी मिल जाएगा खाने को। तो हर जीव के लिए ये है, और इसमें कुछ नहीं जाता है, पुरानी बासी रोटी लोग डस्टबिन में डालते हैं, मिक्स वेस्ट डालते हैं, हम लोगों को बताते हैं सेग्रीगेट करो, उसके बाद इंस्टेड जो खाना बचता है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू ईट, अगर वो नहीं खाएंगे तो कम से कम किसी जीव को ही खिला दें।
0: बिल्कुल,
1: ये बहुत जरूरी है, एटलीस्ट किसी को खाना भी मिल जाएगा और वेस्टेज नहीं होगी खाने की भी। तो ये है, तो स्ट्रीट डॉग्स इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि वो उनका और कोई है भी नहीं। एंड करीब 14 साल पहले हमने स्टार्ट किया था क्लीन अप ड्राइव्स भी। तो पहले लोग कूड़ा डालते थे, हर गली के नुक्कड़ पे कूड़ा पड़ा है, कुत्तों को वो ही खाना मिल जाता था, वहीं ब्रीडिंग कर रहे थे। तो तब हमने चालू किया था एबीसी का, एनिमल बर्थ कंट्रोल का, तो गवर्नमेंट के साथ ही, नगर पालिका के साथ ही, और काफी हमने अपने फंड से करा तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। एंड सेकेंड, हम क्लीन अप ड्राइव्स कर रहे थे तो हमने सारे ब्लैक स्पॉट्स हटा दिए, लोगों को भी समझाया कैसे कूड़ा ना डालें, कैसे सेग्रीगेट करें, तो कुत्तों को भी कम मिलने लगा खाना। तो अब उनको तो जितने हैं उनको तो खाना चाहिए ही, तो इट्स ये हुआ कि इनको भी रेगुलर फीडिंग करवाएं, इनके सबके ऑपरेशन करवा दें कि अगला जनरेशन ना हो।
0: Right.
1: तो एनिमल बर्थ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है।
0: Right.
1: और वैक्सीनेशन, रेगुलर वैक्सीनेशन करवाने, जो नगर पालिका हमारे काफी साथ दे रही है, और प्लस फीडिंग करते हैं
0: जी।
1: तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोग एंड डॉग्स क्यों अग्रेसिव होते हैं, आधे लोग तो जो चलते फिरते दूर से ही पहले पत्थर उठा लेते हैं, डंडी उठा लेते हैं मारने के लिए, और आवाजें निकालते हैं अजीब अजीब, तो वो अपने आप को कुत्ता अग्रेसिव हो जाएगा।
0: राइट,
1: तो ये हमारे आई थिंक एजुकेशनल सिस्टम में भी होने चाहिए, एक तो सिविक सेंस बहुत जरूरी है, आई थिंक नर्सरी से ही चालू कर देने चाहिए यूनिवर्सिटी तक, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक आई थिंक बार बार ना बोलो एक चीज वो लोग सुनते ही
0: नहीं है।
1: तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, सिविक सेंस, एंड ऑफकोर्स हाउ टू बिहेव टूवर्ड्स एनिमल्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये है।
0: राइट
1: हाँ जी
0: तो आपके एक्सपीरियंस से आपके ये जो सब इनिशिएटिव्स हैं जो आप कर रहे हैं जिनको आपने जिनके आप हिस्सा हैं उनके एक्सपीरियंसेस से कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंस्टेंस या कोई वाक्या आपके जहन में अगर आ रहा है जो बहुत शॉकिंग था या बहुत रिवीलिंग था या बहुत ही सेंसिटिव था जिस विच कुड ब्रिंग अ लार्जर चेंज जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया अगर वो आप साझा करना चाहें भले एक छोटा सा ही स्टेप था बट उसका जो रिपल इफेक्ट था जो उसका मेजर जो आउटपुट था वो बहुत चेंजिंग था लाइफ चेंजिंग था ऐसा कोई इंस्टेंस अगर आप साझा करना चाहें.
1: नहीं, बेसिकली क्या होता है कि एक इंस्टेंस नहीं है, ये हमारी पूरी जर्नी रही है पिछले 14 साल तो स्पेशली ज्यादा है कि हम लोग जनरल पब्लिक को ही एजुकेट कर रहे हैं कि ऑन एवरी एस्पेक्ट हर बार कोई आता है कोई कुछ करता है या कूड़ा डालता है या यूरिनेट करता है हर एक. आई मीन इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी जहां पब्लिक एजुकेशन हम सॉर्ट ऑफ इंस्टिल कर रहे थे लोगों में. तो लाइक आई सेड कि जब 14 साल पहले वी मेड अ न्यू प्लेस घर के सामने कूड़ा करता आई मीन लाखों में चूहे कुत्ते बिल्ली बिल्ली तो दो चार ही थी गायें आती थी एंड ऑल. जैसे जैसे हम कूड़ा लोगों को समझाना कि कूड़ा नहीं डालते हैं कैसे सेग्रीगेट करना है फिर कुत्तों को मारते थे उनको समझाना कि ऐसे मत करो ये अग्रेसिव हो जाते हैं धीरे धीरे. आई मीन हमने देखा है कि बहुत फर्क आया है अपने लेआउट में जहां हम रहते हैं
0: जी.
1: तो बहुत फर्क पड़ गया है बट इट्स ये है कि समझाना पड़ता है लोगों को.
0: बिल्कुल
1: वो जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे उनको अब समझाना कि ये नया तरीका है कि कूड़ा ना डालें कुत्तों को ना मारें वो ना करें तो बट इवेंचुअली गेन्स पता लगते हैं
0: बिल्कुल
1: ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
0: बिल्कुल
1: हाँ जी.
0: तो दोस्तों कुछ सफर छोटे होते हैं कुछ कदम छोटे होते हैं लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है. इसी बात से सुनते हैं हमारा अगला गीत ए जिंदगी गले लगा ले.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। हेमंत सर, आप बिकॉज इतने जुडिशियसली, इतने रिस्पॉन्सिबली इन्वॉल्व हैं पूरी सोसाइटी के साथ, इस काम के साथ, पेट्स और स्ट्री डॉग्स, स्ट्री एनिमल्स के बेनिफिट्स और उनके डेवलपमेंट और उनके राइट्स के लिए लड़े हैं और उनके लिए खड़े हुए हैं और इतने सारे चेंजेस और इनिशिएटिव्स लाए हैं, तो आई एम श्योर आप बहुत पर्सनली फील करते हैं इस कॉज के लिए। तो एज अ पेट ओनर, पेट पेरेंट, अगर नए पेट पेरेंट्स जो आजकल नए लोग, बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पेट्स रख रहे हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहें फ्रॉम योर प्रैक्टिकल यू नो एक्सपीरियंस? भले खैर आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी हैं, बट एक कोई और इम्पोर्टेंट बात जो आपके जहन में आ रही है कि ये जानना, ये की है, ये पिविट है, इसके बिना आप पेट पेरेंट ना बने तो अच्छा है, वो क्या होगी?
1: एक तो ये है कि पेट पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर आपको, जैसे मेरे को और हमें कुत्ते पसंद हैं, हर आदमी को कुत्ता पसंद नहीं है। एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, हम घुमाने लेके जाते हैं, एक पूप स्कूप हाथ में रख लें कि कहीं आप डॉग ने पूपिंग करा है या कुछ, तो उसको उठा लें, वापस डिस्पोज करना है, प्रॉपरली करें। ये नहीं है कि किसी के घर के सामने जाके करवा के और चलते बने, तो ये लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। एंड सेकंड, मैंने बहुत देखा है कि लोग ना बड़े ओवर फ्रेंडली टाइप होते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा कुत्ता नहीं काटेगा, ये वो एकदम से आ जाते हैं। हर आदमी को पसंद नहीं है ये, तो ये हमें, वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड दैट्स व्हाट वी कॉल की रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग,
0: राइट?
1: तो ये बहुत जरूरी है कि हम औरों का भी ख्याल रखें, जिन पे नहीं है उनका भी ख्याल रखें। तो ये एक मैसेज बहुत जरूरी है पेट पेरेंट्स के लिए है कि जिन पे नहीं है उनका भी थोड़ा ख्याल रखें।
0: बिल्कुल जरूरी नहीं
1: बाकी
0: है,
1: बाकी उनको भी हम एजुकेट कर रहे हैं, बट हाँ जी
0: जी, जरूरी नहीं है कि जिस अफेक्शन से और जिस पैशन से और जिस प्यार से आप अपने पेट को यू नो के लिए फील करते हैं, वो सभी लोग करें। कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग

0: डॉग्स को एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो या तो आपके पास फार्म हो या कुछ हो, तभी एडॉप्ट करें ऐसे ब्रीड्स जो इंडियन ब्रीड्स भी हैं, नहीं तो स्मॉल ब्रीड्स ही सही रहती हैं। अपने नॉर्मल जो स्ट्रीट डॉग वाली ब्रीड है, जो इंडीज जिसे बोलते हैं, तो ये पर्टिकुलर ब्रीड्स जो है मुधोल टाइप की और राज्यपाली, इनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो ओनली फार्म्स एंड ऑल उन्हीं पे ही रह सकते हैं और रखना चाहिए हमें भी उसी हिसाब से। हाँ जी,
1: तो सर, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर आपके जीवन में पेट्स नहीं होते, ये स्ट्रे एनिमल्स नहीं होते, आपका जीवन इस तरह से शेप नहीं हुआ होता जिस तरह से हुआ, तो कैसा होता? क्या चेंजेस होते आपके जीवन में, और आपने इनसे क्या लेसन्स लाइफ के लर्न किए हैं?
0: अगर कुछ सीखा है हमने कि तो एटलीस्ट मैंने, कि हर जानवर के भी इमोशंस होते हैं, उनके दे उनको खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, दुख भी होता है, भूख भी लगती है, तो सारे इमोशन जो हम में है वो उनमें भी है। तो ये लोग ना सोचें कि इनमें क्या इमोशंस होते होंगे, इनमें सारे इमोशंस होते हैं। तो अगर ये ना होते तो शायद हम भी फीके होते। हाँ
1: बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल, हमारे जीवन के रंगों में रंग भरते हैं, ये
0: हाँ
1: बहुत
0: जी,
1: खूबसूरत रंग भरते हैं। तो बहुत सारी अच्छी, प्यारी और बहुत दिल से जुड़ी हुई बातें आपने आज हमारे साथ साझा की, और जिस जेन्युइनिटी से आपने हमारे साथ सब कुछ शेयर किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर हेमंत, अपनी
0: थैंक यू
1: कहानी
0: सो
1: साझा
0: मच,
1: करने के लिए। जी
0: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
1: जी कोई पार्टिंग थॉट्स अगर आपके हैं तो।
0: जस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट, बस यही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको लात ना मारें, डंडा ना मारें, पत्थर ना मारें, कुछ कर सकें तो थोड़े से बिस्किट ही खिला दें, अगर कुछ ना सही उनका खाना ना खिला पाए तो किसी का पेट भर जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। 5 रुपए के वो पैकेट आता है वो ही खिला दें, बस इतना सा है, छोटी सी चीज है। और कुत्ता खुश, हम खुश,
1: बिल्कुल
0: और कर्म अपने अच्छे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हाँ जी,
1: तो दोस्तों, जरूर, जैसे पेट्स हमें प्यार नहीं करते सिर्फ, वो हमें जीने का एक नजरिया, एक मकसद दे जाते हैं। कभी एक छोटी सी जान आपकी पूरी दुनिया बन जाती है, और फिर एक दिन वो यादों में बस जाती है। लेकिन सच ये है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, और बस उसका रूप बदल जाता है। डॉक्टर हेमंत और जुलू की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हर पल को जी लेना चाहिए, क्योंकि यादें वही रंग में घुलती हैं और जिंदगी को और खूबसूरत बनाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों को प्यार कीजिए और जिंदगी के रंगों को थोड़ा और महसूस कीजिए। साइनिंग ऑफ, बाउ बाउ।
2: तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायणी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिम

भूस्खलन होते हैं, हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में यह 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लेना, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों, ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और, किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है, कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत हजारों रुपए जानकर तो वो हैरान ही रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी
ये किसी रामबाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह है वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है, कोई 3 साल का, 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी ये है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं

आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों, आज की गायिका है अलका याग्निक। जी हाँ, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभा याग्निक था। अलका ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से की। घर में संगीत का माहौल था तो बस अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो चली। चलिए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

अलका ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक भजन गाया। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे आईं। बॉम्बे में निर्माता निर्देशक राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। तो हो जाए उनकी आवाज का ये प्यारा सा गीत।

1980 में अलका ने अपना पहला गाना गाया, पायल की झनकार। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थीं। लेकिन अलका ने भी इन सब के बीच अपने आप को प्रसिद्ध करने की ठान ली। तो हो जाए इनकी आवाज का एक और नगमा।

अलका ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म लावारिस में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाया, जो बहुत जबरदस्त हिट हुआ। लगभग 8 साल तक मुंबई में संघर्ष करने के बाद 1988 में फिल्म तेजाब में अपने गीत 1, 2, 3 की सफलता के बाद वो पार्श्व गायिका के रूप में सफल हो गई। तो आइए दोस्तों, हो जाए यही गीत।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

सन 1989 में अलका ने फिल्म कयामत से कयामत तक में उदित नारायण के साथ ऐ मेरे हमसफर, अकेले हैं तो क्या गम है, गजब का है ये दिन, सोचो जरा जैसे सुपर हीट युगल गाने गाए। इन फिल्मों की सफलता के बाद तो अलका को कई अच्छी फिल्मों के ऑफर्स मिले। सन 1994 में फिल्म हमारा ही प्यार के सॉन्ग्स के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो पेशे खिदमत है दोस्तों उन्हीं की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा गीत।

1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई भाषाओं की 700 से ज्यादा फिल्मों में करीब 20,000 गाने गाए। तो लीजिए उन्हीं की आवाज का ये गाना।

2012 में हिंदी सिनेमा के 100 सालों के दौरान फिल्म ताल के गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर 104 के द्वारा किए गए एक पोल में उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो ये लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी आवाज में एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में जिस गायक के बारे में हम बात करेंगे वो यूं तो साउथ इंडियन हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए भी भरपूर गाने गाए। वो हैं एसपी बालासुब्रमण्यम। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों उनके इस गीत से।

एसपी बालासुब्रमण्यम एक भारतीय प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, डबिंग आर्टिस्ट, फिल्म निर्माता और अभिनेता भी थे। इन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम भारत के दिग्गज गायकों में से एक है। इनको प्यार से एसपी बालू बुलाया जाता था। एसपी बालू को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। तो पेशे खिदमत है उनका गाया हुआ ये गीत।

एसपी बालासुब्रमण्यम और आरडी बर्मन साहब बहुत नजदीकी दोस्त थे। मैं आपको एक फिल्म का गाना सुनाना चाहूंगा।

जिसमें आरडी बर्मन साहब ने म्यूजिक दिया और बाला सुब्रमण्यम ने इस गाने को गाया। इस गाने को सुन के ही लगता है कि बाला सुब्रमण्यम और आरडी बर्मन साहब ने ये गाना खुद अपने लिए बनाया है। दोनों अपने अपने फन के उस्ताद थे और उन्होंने इस गाने को भरपूर इंजॉय किया है। तो सुनिए इस गाने को और महसूस करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आरडी बर्मन और बाला ने इस गाने को इंजॉय किया।

एसपी बाला सुब्रमण्यम का जन्म 4 जून 1946 को चित्तूर जिले आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम एसपी साममूर्ति था, जो हरी कथा में एक आर्टिस्ट के रूप में अभिनय किया करते थे। लीजिए इनका गाया हुआ एक गाना सुनते हैं।

एसपी बालासुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्मों में ज्यादातर सलमान खान के लिए गाने गाए। तो लीजिए एक गीत उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया और एसपी बालूजी का गाया हुआ ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।

5 अगस्त 2020 को एसपी बाला सुब्रमण्यम देश भर में फैली महामारी कोविड-19 से पीड़ित हो गए थे और 24 सितंबर 2020 को अचानक ही एसपी बालू का निधन हो गया। कहना ना होगा, एक बहुत बेहतरीन गायक संगीत की दुनिया से चला गया। लीजिए दोस्तों, उन्हीं की याद में ये एक प्यारा सा गीत।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब और एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम आपके नाम। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियो और रेडियो डांटिया भील पर मैं हूं आपकी दोस्त, शायद आपकी थोड़ी सी खास दोस्त आरती रॉय, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, बड़ी आम सी बात है कि जब जिंदगी की हर रोज की भाग दौड़ से हम थक जाते हैं तो संगीत और शायरी ही वो मरहम बनते हैं जो हमें सुकून अता करते हैं। सुरों के इस आंगन में जब लफ्जों को जज्बात का साथ मिलता है तो समाज ऐसे पूरी तरह बदल जाता है। हवाओं में एक अजब सी मिठास घुल जाती है, दिमाग की तनी नसें सहज हो उठती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और दिल पुरसुकून होकर तरानों की जुम्बिश में खो जाता है। आज की ये शाम भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि आज हमारे इस सफर में तरानों का कारवां कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा जहां हर धुन आपके दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ती चली जाएगी। शायरी के हसीन रंग जज्बातों की नाजुक कशिश और कुछ बासलाहियत और ज़हीन फनकारों की आवाज़ें आज की महफिल का मिजाज वाकई लाजवाब होने वाला है। तो सोच क्या रहे हैं, ज़रा आहिस्ता से दिलों के दरवाजे खोलते जाइए और अपनी रूह को इन सुरीले एहसासों में बस भीग जाने दीजिए। दोस्तों, गुजरी हुई बातें, पुरानी यादें और वो बीते हुए लम्हे इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने दिल से कभी जुदा नहीं कर पाता। हालांकि मेरी इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंसान हर वक्त अपने माजी को याद करके रोता बिसुरता रहे, लेकिन सब यादें बोझिल नहीं होती और मैं भी हसीन और जिंदगी से लबरेज लम्हों को याद करने की कायल हूँ। मतलब तो अपनी रूह को सुकून पहुंचाने से है ना। तो संगीत, शायरी और गजल इसी सुकून का एक हिस्सा है। कितनी अजीब बात है ना, जब हम गजल सुनते हैं तो माजी का एक एक पल हमारे सामने किसी आईने की तरह साफ होता जाता है। बशर नवाज साहब ने यादों के इसी सिलसिले को इस नज्म में बेहद नज़ाकत के साथ समेटा है और जब इस तहरीर को खयाम साहब की बेमिसाल मौसिकी और भूपेंद्र सिंह साहब की उस गहरी और पुरअसर आवाज़ का साथ मिला तो ये कलाम हर उदास दिल की धड़कन बन गया। भूपेंद्र साहब की गायकी की ये खासियत रही है कि वो हर लफ्ज़ को सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि उसके दर्द को अपनी आवाज़ में खोल देते थे। ज़रा इस गज़ल का ये बेहद हसीन लेकिन संजीदा मिसरा मुलाहिज़ा फरमाएं, जहाँ गुज़रे ज़माने की दास्तां बयां होती है। बशर साहब कहते हैं, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। भटकते अब्र मीन्स बादलों में चेहरा कोई बना होगा। शायर कहते हैं, ये आसमान पर चमकता हुआ चांद सिर्फ सितारा नहीं है, बल्कि हमारे गुजरे हुए कल की गवाही है। और बादलों के इन टुकड़ों में आज भी किसी का अक्स नजर आता है, और जब मोहब्बत का इंतजार अपनी आखिरी हदों को छूता है तो बशर साहब लिखते हैं, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंख में रास्ता किसी का देखेगा। यादों की इसी महक में जहन, यादों की इसी महक को जहन में समेटे हुए आइए रुख करते हैं आज की हमारी पहली और लाजवाब पेशकश, भूपेंद्र सिंह जी की आवाज में। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी।

दोस्तों आगे सुनाई जाने वाली गजल में मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इंसान की शनाख्त, उसकी खुददारी और वजूद की बेबसी को जिस बेबाकी से पेश किया है वो रूह को झकझोर देता है। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, यानी वो कीमती शय या पूंजी जो बाजार के चौराहों पर बिकने के लिए रख दी गई हो, जिसे देखने वाली हर आंख सिर्फ एक खरीदार की हसरत लिए उठती है। ये मिसरा समाज की उस कड़वी हकीकत की तर्जुमानी करता है जहां इंसानी जज्बातों की कीमत लगाई जाती है। और जब मजरू साहब के इन बेबाक और संजीदा अल्फाज को मदन मोहन साहब की रूहानी धुनों का साथ मिला और इसे सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली आवाज से नवाजा, तो ये गजल जमाने के जुल्म के खिलाफ एक खामोश चीख बन गई। लता जी ने जिस सोज और दर्द के साथ इसे गाया है वो सीधे सुनने वालों के दिलों के पार हो जाता है। इस गजल का एक और बेहद पुरअसर और मार्फती मिसरा मुलाजा फरमाएं, जहां अपनों की बेरुखी का शिकवा है। शायर फरमाता है, मजहूल इस कदर थे कि पहचानता ना था। देखा है सपने हमको गुनहगार की तरह। शायर की जुबानी कि जब हम गुमनाम थे, मजहूल इस कदर थे, जब गुमनाम थे तब किसी ने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, मगर जब जमाने की नजरों में आए तो सबने हमें सिर्फ गुनहगार के तौर पर ही देखा। और जब तन्हाई अपनी आखिरी हदों को छूती है तो मजरू साहब का ये मिसरा सीधे दिलों को छू जाता है। फरमाते हैं, अब सो चुके हैं राह के पत्थर भी, ऐ मजरू, अब सो चुके हैं राह के पत्थर भी, ऐ मजरू, हम जागते हैं रात के बेदार की तरह। जरा इस मंजर के अकेलेपन को महसूस कीजिए। शायर कहता है कि रात के इस गहरे सन्नाटे में जब रास्ते के बेजान पत्थर भी थक कर सो गए हैं, तब हम अपनी तन्हाई में किसी पहरेदार की तरह अकेले जाग रहे हैं और गुजरे लम्हों को पहरा दे रहे हैं। तो आइए लता जी की अमर आवाज में सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी और मदन मोहन जी का ये अजीम शाहकार। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। आपकी नजर

दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब इंसान किसी नई तकलीफ में नहीं होता, बल्कि उसका पुराना अतीत ही एक तयशुदा ढर्रे की तरह लौट कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस कलाम में उसी सिलसिले को पकड़ा है, जहाँ हर ढलती हुई शाम बिना किसी नए सबब के पुरानी यादों का एक बहुत शांत सा साया लेकर चली आती है। ये कोई चीखता दर्द नहीं, बल्कि एक बेहद खामोश और गहरा सन्नाटा है। और जब इस कैफियत को आवाज देने की बात आई, तो बूझिए माइक पर कौन आया? किंग ऑफ सिल्कन वॉइस, यानी हमारे तलत महमूद साहब। उनकी गायकी का वो निराला अंदाज जिसमें एक खास किस्म की धीमी थरथराहट थी, वो इस कलाम के साफ अल्फाज के साथ इस कदर घुल गया कि सुनने वाले का जहन एक मखमली आगोश में सिमट जाता है। जरा इस गजल का ये बेहद नाजुक और नायाब मिसरा मुलाहिजा फरमाएं, जहां दिल अपनी ही धड़कनों से परेशान है। बकौल शायर, आस का टूट जाना कोई नई बात नहीं, आज फिर टूटी है तो क्यों आंख भर आई है। शायर अपने ही दिल से एक सवाल पूछ रहे हैं कि उम्मीदों का बिखर जाना तो इस दुनिया का पुराना दस्तूर है। आज अगर कोई पुरानी हसरत फिर से टूट गई है, तो इस कदर हैरान होने या आंखें नम करने की क्या जरूरत है। और इसी कश्मकश का अगला सिरा जरा इस मिसरे में देखिए। दिल की धड़कन से जरा पूछो, दिल की धड़कन से जरा पूछो ऐ सहने वाले, गम की जंजीर बड़ी मुश्किल से सरकाई है। यानी जिन कड़वी यादों को दिल से बड़ी मुश्किल से दूर किया था, वो शाम ढलते ही फिर से दरवाजों पर आकर खड़ी हो गई है। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद नफीस और मखमली पड़ाव का लुत्फ उठाते हुए समायत फरमाइए मदन मोहन साहब की धुन में पिरोई राजेंद्र कृष्ण साहब जी की लिखी तलत महमूद साहब की ये बेहद मारूफ पेशकश।

दोस्तों, अगली गज़ल महज एक गज़ल नहीं है, मोहब्बत में मिली उस मुकम्मल बेबसी की दास्तां है, जहां शिकवा भी है, दीवानगी भी है और एक अजीब सा तंज भी है। मशहूर शायर SH बिहारी साहब की कलम से निकले ये अल्फाज उस तकलीफ को बयां करते हैं, जहां सामने वाला ना तो पूरी तरह अपना बनाता है और ना ही दूर जाने की इजाजत देता है। यानी वो कश्मकश जिसमें इंसान ना तो जी पाता है और ना ही सुकून से मर पाता है। और जब इस कलाम को OP नैयर साहब की दिलकश धुन मिली, तो आप जानते हैं इसको गाया किसने? सुरों की जादूगरनी हमारी और आपकी चहेती आशा ताई ने। आशा ताई की आवाज की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वो हर जज्बात के रंग को बड़ी आसानी से बदल देती थी। इस गजल में उन्होंने जिस ठहराव, दर्द और नजाकत के साथ अपने सुरों को पिरोया है, वो सीधे सुनने वालों के दिल के आर पार हो जाता है। उनकी गायकी का यही वो अंदाज है जिनके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। जरा इस गजल का पुरस्कार मिसरा मुलाजा फरमाएं, जहां जमाने के सामने मुस्कुराने की मजबूरी बयां की गई है। शायर कहता है, आप ही ने तो मेरे दिल को धड़कना सिखलाया, आप ही ने तो मेरे दिल को धड़कना सिखलाया, आप ही ने तो मेरी आंखों को रोना सिखलाया। फिर शायर कहता है, जिस इंसान ने हमें जीना सिखाया, मोहब्बत की राह दिखाई, अफसोस कि आज उसी के दिए जख्मों को छुपाकर हमें महफिल में मुस्कुराना पड़ रहा है। और जब ये दीवानगी अपनी आखिरी हदों को छूती है, तो आशा ताई की आवाज में ये मिसरा और भी गहरा हो जाता है। काश न होती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती, कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती, एक पल हंसना कभी दिल की लगी ने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। गजल सुनिए आशा ताई की आवाज में।

दोस्तों, जब कोई बहुत अजीज इंसान हमारे जिंदगी के दायरे से दूर चला जाता है तो सिर्फ वो एक शख्स दूर नहीं होता, बल्कि उसके साथ हमारे आसपास की पूरी दुनिया का रंग रूप ही बदल जाता है। राजा मेहदी अली खान साहब ने इस कलाम में दिल की उस वीरानियत को लिखा है जहाँ इंसान को भरी दुनिया में भी हर चीज़ अधूरी, हर कोना खाली और हर मंजर सूना नजर आने लगता है। और जब इस अधूरेपन को सुरों का लिबास पहनाने की बात आई तो सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब ने माइक संभाला। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादुई कशिश थी कि वो बिना किसी बनावट के सिर्फ अपने लहजे के धीमेपन से दिल में एक अजीब सी टीस पैदा कर देते थे। मदन मोहन साहब की इस नाजुक धुन पर जब रफ़ी साहब तेरे बगैर का आलाप लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई तन्हा दिल खामोशी से सुबक रहा है। जरा इस नज्म का बेहद हैरान कर देने वाला मिसरा सुनिए जहां शायर की नजर में कुदरत के मायने ही बदल गए हैं। फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चिराग हैं। गौर फरमाइए दोस्तों, जो फूल और तारे किसी को मुस्कुराना सिखाते हैं, महबूब की जुदाई में वो फूल भी दिल के जख्म जैसे लगते हैं और आसमां के टिमटिमाते तारे बुझे दियों की तरह बेजान नजर आते हैं। और जब इस उदासी के बीच हल्की सी किरण जगती है तो रफ़ी साहब की आवाज़ में ये मिसरा सीधे रूह में उतर जाता है।

कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। रफ़ी साहब की आवाज़ में आपकी नज़र।

दोस्तों, जिंदगी के इस लंबे सफर में कभी कभी कोई दूसरा इंसान गलत नहीं होता और ना ही हालात इतने बुरे होते हैं। बस ये वक्त का पहिया कुछ इस तरह से घूमता है कि दो बेहद नजदीकी लोग भी चुपचाप एक दूसरे से अजनबी से हो जाते हैं। मशहूर शायर कैफी आजमी साहब ने इस शाहकार में वक्त की इसी बेरहमी को बेरहमी के हसीन सितम को कहा है। एक ऐसा जुल्म जो खामोशी से होता है, जहां ना कोई शिकवा होता है ना कोई चीखो पुकार, बस इंसान का पूरा वजूद ही अंदर तक हिल जाता है। और जब इस खामोश तबाही को सुरों का लिबास पहनाने की बात आई तो सामने आई हमारी गीता दत्त साहिबा। गीता जी की आवाज में वो एक अजब सा सोज और धीमापन है जो सुनने वालों के जहन में छा जाता है। एसटी बर्मन साहब की इस जादुई और तारीखी मौसिकी में जब गीता जी की आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे तन्हाई खुद अपना अफसाना सुना रही हो। जरा इस नज्म का ये मिसरा मुलाहिज़ा फरमाएं, जहां दूरियों के बीच की कश्मकश बयां हुई है।

बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। दोस्तों, जरा गौर फरमाइए, दो दिल जब एक अरसे के बाद दोबारा मिलते भी हैं तो उनके बीच वक्त की ऐसी धुंध आ जाती है कि वो उनके बीच चाह कर भी पुराने रास्ते वो नहीं ढूंढ पाते। इसी कश्मकश का अगला सिरा इस मिसरे में महसूस कीजिए। जाएं तो जाएं कहाँ, राहें हैं बंद सब। जाएं तो जाएं कहाँ, राहें हैं बंद सब। ढूंढेगी अब किसे महफिले वफा, ढूंढेगी अब किसे महफिले वफा। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, वफा की उस महफिल में ना वो पुराना महबूब बचा और ना ही पुराना आशिक। वक्त ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी और तारीखी पड़ाव का लुत्फ उठाते हैं और शौक फरमाइए कैफी आजमी साहब की ये सदाबहार नज्म गीता दत्त जी की पुरसोज आवाज में। वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।

0: वक्त ने किया।
1: बुझ गए दिए तो क्या, बुझ गए दिए तो क्या, एक रोशनी तो रह गई। महफिलें रुखसत हुई पर दिल में कशिश तो रह गई। इसी दिलकश कशिश को अपने सीने में महसूस किए हुए अब वक्त हो चला है इस महफिल को समेटने का और आपसे विदा लेने का। मुझे यानी आपकी आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय को अब इस मोड़ पर इजाज़त दीजिए। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा स्टेशन 90.8 FM पर SN रेडियो और रेडियो तांत्या भील को। अपनी सेहत का, अपने अपने अपनों का और अपने जज्बातों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी चाहने वालों को प्यार भरी शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आप लो रेडियो आपड़ी बातें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर झाबुआ के मौसम के ऊपर। झाबुआ का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 18.4 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 141.4 मिलीमीटर नापी गई है।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आप लो रेडियो आपड़ी बातें। किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों, रेडियो टांटिया फील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आपके साथ साझा करते आया है।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से बिल्ली गीत को। आज की हम चर्चा में आज हम बात करेंगे मक्का की और सोयाबीन की खेती के ऊपर, और साथ ही किस तरीके से इस साल का किस तरीके से मक्का और खेती का क्या भाव होने वाला है। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
1: मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, निर्यात में हुआ खासा इजाफा। आइए बात मक्का के बाजार से ही। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान कुल मक्का की उपज 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 15,00,000 टन अधिक है। फिलहाल बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है वो सामान्य सी ही बनी हुई है। हाल फिलहाल में मक्का के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1,870 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का की एमएसपी में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 3,70,000 टन मक्का का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाजार में भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा दूसरे अन्य देशों में भी करता है। मक्का मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 15% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। फिलहाल मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 18 जून को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव हो गया 1,750 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 2,295 रुपए, जो कि 18 जून को 5 रुपए बढ़कर 2,300 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 17 जून को मक्का की कारोबार 2,150 रुपए पर हुआ। 18 जून को यहां इसका भाव 150 रुपए टूटकर 2,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 18 जून को मक्का का भाव 10 रुपए बढ़कर 1,930 रुपए से 1,940 रुपए हो गया।
1: तो जाना आपने मक्का के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, आगे क्या माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। मक्का के बाजार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही है आपको?
0: तो किसान साथियों, अभी आपने देखा किस तरीके से मक्के का उछाल मंडियों में किस तरीके से देखा जा सकता है। जानकारियों को हम जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से बिल्ली गीत को।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, आइए मिलवाते हैं आपसे कृषि एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके कैसे हमें मक्का की खेती में किस क्या क्या फायदे मुनाफे हो सकते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मक्के के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है
2: जी।
1: फिलहाल अभी काफी हद तक स्टॉक की डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बन सकता है और दाम 5 से 8% तक तेजी के रुझान में आ सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में 5 से लगभग 8% तक की यहाँ पर बढ़ोतरी हम अनुमान लगा सकते हैं इसका। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
1: जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उनको यहाँ पर अभी रुकना चाहिए और आने वाले 2 से 3 महीने में स्टॉक को निकालना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पर बेहतर मुनाफा मिल सके।
3: बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर ले हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है मक्का का, आगे आने वाले 2 से 3 महीने के दौरान अगर बिकवाली करते हैं तो अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। और इसी के साथ रवि जी, आपसे हम गुजारिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
0: किसान साथियों, जैसा कि हमने अभी चर्चा में सुना किस तरीके से एक आशा की किरण हम देख सकते हैं, किस तरीके से मंडियों में इसका मक्का का भाव बढ़ा जा सकता है, आइए डालते हैं एक नज़र सोयाबीन के भाव पे और सोयाबीन की खेती में इस समय कौन सा मुनाफा हो सकता है। उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से भिली गीत को। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना एक प्यारे से भीले गीत को। आइए डालते हैं एक नजर सोयाबीन की, सोयाबीन के भाव और सोयाबीन की खेती के ऊपर। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
1: उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के कारोबार में हाल, खातेगांव मंडी में 6,300 रुपए रहा बाजार भाव। मामूली बदलाव के साथ हुआ मसूर का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। तो आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ दर्ज किए गए। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 12,18,000 टन अधिक है। हाल फिलहाल में सोयाबीन के बाजार में किस तरह का बना हुआ है हाल, आइए जानें।
2: पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन के MSP में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव था 6,055 रुपए। 18 जून को इसके सौदों में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,830 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहां 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,525 रुपए, 18 जून को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,425 रुपए पर आ पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को इसका भाव रहा 5,215 रुपए, जो कि 18 जून को 1,085 रुपए की भारी बढ़त के बाद 6,300 रुपए हो गया। यहीं की खुजनेर मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,550 रुपए, जो कि 18 जून को 100 रुपए बढ़कर 6,650 रुपए पर पहुंच गया। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन की बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपनी बातें।
0: किसान साथियों, अभी हमने जाना अलग अलग जगहों की मंडी का भाव, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
4: सोयाबीन के दामों में धीरे धीरे करके एक तेजी का ट्रेंड बनता जा रहा है
5: जी।
4: इस साल पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ में डिमांड भी यहाँ पर काफी अच्छी रही है
5: जी।
4: मंडियों में सोयाबीन के दामों में थोड़ा बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लेवल की बात करें तो लगभग 5-8% तक की तेजी बन सकती है।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे तेजी का माहौल ही है जो बना रह सकता है, यही अनुमान जताया जा रहा है। तेजी का फायदा उठाएं कैसे हमारे किसान?
4: जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर सोयाबीन है, उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अभी जुलाई अगस्त तक अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकालना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो धीरे धीरे यहाँ पर आगे आने वाले समय में बिकवाली करेंगे तो अच्छी आमदनी हम कहें, अच्छे दाम हम कहें, अर्जित कर सकते हैं हमारे सोयाबीन के किसान।
0: किसान साथियों, अभी आपने सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को जाना और ये भी जाना कि किस समय हमें सोयाबीन को किस समय किस वक्त कौन से वक्त पे ऐसे निकालना चाहिए और अनेकों जानकारियों को आपने सुना। जानकारी को जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, अभी तक हमने सुना मक्का और सोयाबीन की खेती करके हम किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मूंग की खेती के ऊपर।
1: रविवार को अधिकांश मंडियों में मसूर के सौदे मामूली उठा पटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई फेरबदल दर्ज नहीं किया गया। वहीं बात मसूर की पैदावार की करें तो बता दें कि इस साल मसूर की उपज में कुछ कमी जरूर आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है मसूर का बाजार, आइए जानें।
2: घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 18 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को मसूर का भाव रहा 7,040 रुपए, जो कि 18 जून को 10 रुपए बढ़कर 7,050 रुपए हो गया। वहीं राज्य की गुंडा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 जून को मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे मामूली नरमी के साथ हुए। यहां 18 जून को मसूर का भाव 10 रुपए गिरकर 6,610 रुपए से 6,600 रुपए हो गया।
1: तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार के बारे में, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, मसूर के भाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे इसमें हम किसी तरह का बदलाव देखेंगे या फिर अभी जो हाल बना हुआ है यही बरकरार रहेगा?
3: मसूर की डिमांड यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। हाल फिलहाल में देखें तो इस साल लगभग 8-10% की तेजी ऑलरेडी मसूर में देखने को मिल चुकी है
1: जी।
3: मंडियों में स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन अभी दामों में थोड़ा और तेजी का रुझान बन सकता है।
1: बिल्कुल, तो अच्छे स्तर पर है इसके दाम, आपका कहना है आगे इसमें और भी बेहतरी हो सकती है, तो ऐसे में किसान क्या करें, हमारे क्या सलाह रहेगी आपकी?
3: जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छे दाम बने हुए हैं, हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं बिकवाली करके, और थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आगे भी अनुमानित है, तो आप आगे भी बिकवाली करके चल सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित यहाँ पर की जा सकती है।
0: किसान भाइयों, अभी आपने मसूर की खेती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना और आगे भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं एक प्यारे से भीली गीत को।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आप लगातार हम जान विभिन्न भिन्न फसलों की जानकारी हम ले रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर बाजरे की खेती के ऊपर।
1: आगे बात करते हैं बुलेटिन में बाजरे की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन की रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य ही बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके साथ ही अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं, इस पर नजर डालते हैं, तो बता दें एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,940 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें, यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,922 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,010 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही बहजोई मंडी की, तो यहां पर बाजरे का भाव रहा 2,010 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने बाजरे के बाजार के बारे में, प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, बाजरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बाजरे की डिमांड इस बार काफी अच्छी देखने को मिल रही है
1: जी,
2: और खास तौर से बात करें तो स्टॉक में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है
1: जी,
2: और इसी वजह से दामों में बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं?
2: बाजरे का स्टॉक जिन किसान भाई बहनों के पास है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में अपना स्टॉक निकालकर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना बाजरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो

0: రేడియో స్టేషన్, రేడియో స్టేషన్ 90.8 FM. किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं झाबुआ के मौसम का हाल। झाबुआ का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 1.8 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 143.2 मिलीमीटर नापी गई है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली भी गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फसल बीमा योजना किस तरीके से हम करवा सकते हैं और फसल बीमा योजना से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से हम कैसे हम फसल योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: विभास कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर PC सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं सहायक आयुक्त फसल बीमा कृषि मंत्रालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णवीर चौधरी जी हैं अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से, कृष्णवीर जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप किसानों का पक्ष यहां पर रखेंगे और साथ ही हमारे साथ सुधाकर जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी काम करती है, और सुनील जी बताएंगे कि कैसे सरकार इस योजना को किसानों तक पहुंचा रही है, कैसे इसे और व्यवहारिक बनाया जा रहा है, किसान कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमारे साथ विभास जी हैं जो कि बताएंगे कि अगर किसान को किसी तरह की समस्या आती है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके लिए राह और आसान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट पर।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर बताया कि किस तरीके से ये योजना काम कर रही है, समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए ताकि किसानों के लिए और आसानी हो सके, और जो उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगी कि जो फसल बीमा वीक हम मना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, इसका मकसद क्या है?
3: देखिए, ये फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई है और इसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चूंकि इनरोलमेंट शुरू होता है, जनरली जो खरीफ का इनरोलमेंट है वो 1 जुलाई पर व्यवहारिक रूप से पिक पर रहता है या वहां से स्टार्ट हो जाता है, और जब कट ऑफ डेट है वो बहुत सारे राज्यों में 15 जुलाई है और बहुत सारे राज्यों में जो है 31 जुलाई है। तो इसमें ये किया गया था, इसका जो बनाने का स्वरूप था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक जगह जमा करें, सभी को सेंसिटाइज करें और फार्मर्स के इनरोलमेंट के प्रति उनको दायित्व फिक्स करें कि आप जो है इनको समझाएं, और जो भी उनकी जो मशीनरी है उसको पूरी की पूरी एक सप्ताह में हम एक्टिवेट कर दें कि वो फसल बीमा इजी वे में हर एक जगह, हर एक गांव में, हर एक जगह वो पहुंच जाए ताकि किसानों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसका एक और पर्पस है कि चूंकि हम पहले योजना के बारे में बता देना चाहते हैं, तो और जो समय मिलता है किसान भाइयों बहनों को वो उसमें निर्णय ले पाएंगे और उसमें अच्छे से पूरे कागजात वगैरह जमा करके वो बीमा अपनी करा सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं कि पूरी स्टेक होल्डर्स को उसमें एक्टिवेट करना होता है।
1: अब मैं सुधाकर जी से जानना चाहूंगी, सर ये बताएं कि देखिए अभी हम फसल बीमा वीक मना रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो किसानों के मन में ये होता है कि कुछ नया किया गया होगा, कुछ चीजें बेहतर की गई होंगी, कुछ चीजें उनकी सहूलियत के अनुसार इसमें शामिल की गई होंगी। तो इस बार इस वीक में किसानों को क्या नया बताने वाले हैं, क्या नया उन्हें, क्या कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है?
4: जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि ये फसल बीमा सप्ताह हम ये तीसरी बार हम करने जा रहे हैं, पिछला खरीफ हुआ, फिर रबी हुआ, ये फिर से खरीफ आ गया है। तो इसका जैसे कई सारे उन्होंने बताया क्यों ये मनाया जा रहा है, उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी लोनी फार्मर थे, जो बैंक से लोन लेते थे, उनका अपने आप बीमा हो जाता था, अब जो है उनको बताना जरूरी है कि ये बीमा हम ले क्यों। तो जब तक उनके हम घर पे नहीं जाएंगे तो हर बार जो है कुछ ना कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको चुनते हैं, जिस बार भी करीब 75-80 डिस्ट्रिक्ट चुना गया है, और वो हर उसमें से कुछ कुछ ब्लॉक्स पे जाकर के गांव के घर तक जाकर के इतने अधिक, मतलब जितने भी हमारे पास साधन है प्रचार प्रसार के, सभी का इस्तेमाल करते हुए और जितने हितधारक हैं सभी के कान तक एक बार आवाज जरूर पहुंच जाए कि बीमा है क्या और इसको हम कैसे लें और उसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और मतलब नुकसान होने पर फसल का उनको क्या इससे फायदा होगा और आगे फसल अपना जो है खेती बाड़ी आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये सबसे प्रमुख बिंदु है जिसपे की हम फोकस करना जा रहे हैं इस बार।
1: जी बिल्कुल, यानी जो एक किसानों की तरफ से लगातार मांग थी कि कुछ किसान ऐसे थे जिनका ये कहना था कि अगर हमने ऋण नहीं लिया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो उनका क्यों बीमा किया जाए। मतलब अगर ऋण लिया है और तब भी अपने आप ही पहले बीमा हो जाया करता था, और अगर उन्हें नहीं कराना है तो ये उनके पास अब सुविधा है कि वो बैंक में जाकर इसकी जानकारी दे दे कि भले ही मेरा बीमा आप ना करें अगर ऋण लिया है तब भी, लेकिन इसके बारे में आपको सही समय पर सूचना देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं विभास जी से। विभास जी देखिए, हम जब गांव जाते हैं और किसानों से बात करते हैं और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा भी मकसद रहता है कि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक समस्या किसानों के बीच देखते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उनकी तरफ से शिकायत एक तरह से कह सकते हैं कि रहती है कि हम जाएं कहां, कोई हमें सुनने वाला नहीं। अगर हमें नहीं भी कराना है बीमा और अगर हो गया है तो उसके बारे में हमें बैंक जाना पड़ता है, कोई सुनता नहीं है, हमें कंपनी की तरफ से, जो बीमा कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें समझा सके, इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है।
5: देखिए, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहलाते हैं CSCs, सारे किसान भाइयों को पता है। तो हम लोगों का पूरा पर्पज़ ये है कि फसल बीमा की पूरी जानकारी किसानों को दी जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हम लोग कैंप्स लगा सकते हैं, हम लोग ये सब करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं लोकल एरियाज में, उन लोगों को बताया जाता है कि फसल बीमा में क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद पूरा एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है जिसपे किसान अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी जमीन का बीमा करा सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे CSC के थ्रू होती है। और उसके अलावा फिर मतलब उनको एक हम रसीद देते हैं जिससे ये उनको प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट करा है। उसके बाद का उनका पॉलिसी का या जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका स्टेटस क्या है, वो भी हमारे वेली उनको समझा सकता है। तो इसलिए पूरी क्लेम अगर कभी आता है और अगर उनको इंटीमेट करना होता है तो उसके लिए भी वो हमारे वेली के पास आके अक्सर उनसे हेल्प लेते हैं, और फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि बेसिकली हमारा काम कनेक्शन का है। तो जो भी नियरेस्ट CSC है, और हमारे काफ़ी CSCs हैं सारे, उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक करीब करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स को हम लोग एनरोल कर चुके हैं थ्रू द CSC नेटवर्क। तो
1: ठीक है, कृष्णवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। अब ये बताएं कि देखिए, इस योजना को आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया है, और कहते भी हैं कि किसी योजना की कामयाबी या फिर उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको समझने के लिए 5 साल का वक्त काफी होता है, और कहते भी हैं कि किसी भी स्कीम का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 5 साल आप लेकर चलिए। अब आप कहाँ देखते हैं किसानों को इस योजना को लेकर, उनमें कितना आत्मविश्वास है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
6: देखिए अंजू, जो उद्देश्य था सरकार का इस योजना को बनाने का, वो किसानों को जो नुकसान होता रहा प्राकृतिक आपदाओं से, उससे बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जो पहले योजना थी उसमें जो लोन किसान का था उसमें कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसमें शिकायतें ये रही, कुछ बैंकों ने पैसा काट लिया, जमा नहीं किया पॉलिसी में, बहुत सारी शिकायतें रही। इसी वजह से अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की अपनी मर्जी है कि वो उसमें अपना इंश्योरेंस पॉलिसी में किस तरीके से भागीदार लो। ये सच्चाई है कि अब जब सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य ये है कि किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप इसमें आइए और आप फसल बीमा कराइए, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हो सके। ये तो है योजना का उद्देश्य, और योजना का जो लाभ है वो किसानों के लिए है, लेकिन कुछ कमियां, जो सुधार हो रहा है बराबर, अभी भी खामियां हैं। खामियां क्या है कि जब फसल बीमा योजना को लागू करते हैं खरीफ का तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे रबी का करते हैं, लेकिन जब आपदा से नुकसान होता है देश के किसी भी कोने में, तो ये सच्चाई है कि अब तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी तरफ से जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसलिए लागू करवाया जिससे सर्वे के लिए ड्रोन जो है सबसे एक सही रास्ता चुना गया है और उससे नुकसान का जो है एक सर्वे होता है और उसी तरीके से किसानों का जो है बीमा योजना की धनराशि दी जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि पूरे गांव में जब नुकसान होगा, पहले तो ब्लॉक होता था, अब सरकार ने गांव कर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नुकसान होगा। ये हो सकता है कि एक तरफ से गांव के एक हिस्से में नुकसान हो और दूसरा हिस्सा ठीक रह जाए। तो मेरा सुझाव ये रहा है और आज फिर मैं कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से फिर मेरा सुझाव है कि हर किसान के हर खेत का सिर्फ रसीद देना भर से जिम्मेदारी हक पूरा नहीं हो जाता, उसको कवर नोट दिया जाए कि ये फसल है, ये इसकी वैल्यू है और यदि नुकसान होगा तो इतनी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें भी दो चीजें हैं, एक केंद्र सरकार का धनराशि है और दूसरा प्रदेश सरकारों की उसमें धनराशि होती है। कई बार प्रदेश सरकारें समय पर धनराशि अदा नहीं कर पाती तो किसानों को ये फसल बीमा कंपनियां उसको जो लाभ समय पे नहीं दे पाते। कुछ प्रदेशों ने तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की अपने यहाँ, जैसे पंजाब है तो वहां परेशानियां होती हैं, लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। एक सिर्फ मेरा दो सुझाव है कि जब किसान को आपदा का मुकाबला करने का हालात होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां ब्लॉक लेवल पर होना जरूरी है। अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं है तो जिला लेवल पे परमानेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस कंपनी का जो उस जिले में इंश्योरेंस कर रही है फसलों का, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब ऑनलाइन जो है सब कुछ में काम नहीं चलता, ऑनलाइन किया जा सकता है लेकिन जब लेने का नंबर आता है तो ऑनलाइन में अधूरापन रहता है और किसान उसमें भटकता है। इस कमी में सुधार करना है।
7: जी जी सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो कृष्णवीर जी ने एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो कवर लेटर होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार है, मकान है, यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस, सब में ये एक आपको बकायदा पॉलिसी मिलती है, उसमें जो जो चीजें कवर हैं, कितना सम इंश्योर्ड है, सब चीजें होती हैं। तो ऐसा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या आगे इस पर कुछ किया जा रहा है?
3: देखिए, जो अभी पूरे चर्चा चल रही थी उसका स्वरूप है कि जो सरकार जो है मुख्यतः तीन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसमें हम लोग बहुत काम करने में सफल हुए। पहला चीज है कि हम फसल कटाई प्रयोग को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में करके हम किसानों को भागीदार बना के हम उनको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, क्लेम दे दें। उसकी दूसरी चीज है कि इनरोलमेंट हम करें कि किसान को इनरोलमेंट में कहीं भटकना ना पड़े, हम उनकी पूरी चीज को है वो द्वार तक पहुंचाएं और इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, सीएससी, पोस्ट ऑफिस या फिर टेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसानों को हम योजना के बारे में बताएं, उसमें कोई त्रुटि रह गई उनको विश्वास हो और उसमें भागीदार बने। तो ये इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार वगैरह कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये फसल बीमा सप्ताह इस बार लागू चलाई जाएगी। लेकिन मुख्य जो आप कह रहे थे कि हम उनको रिसीट देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ हम लोग आज से 2-2.5 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बैंक में बीमा कराते हैं, बैंक के थ्रू बीमा होता है, उनको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर या अभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे उनको तत्काल तुरंत हाथ में ही उनको पॉलिसी दिया जाता है। अच्छा। उसका पर्पस ये है जो हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं, इसका बहुत वैल्यू है क्योंकि आपके पास एक कागजात है, कागजात में एक सारे चीजें लिखे होती है कि आपका किस फसल का बीमा हुआ, आपने कितना प्रीमियम दिया, सरकार ने उस आपको प्रीमियम सहायता के रूप में आपके लिए कितने बीमा कंपनियों को भुगतान किया, किस खेत में है, किस खेत में किस फसल के लिए बीमा किया गया है, कितनी धनराशि है, बैंक का नंबर, खाता नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इसके अलावा फिर हम किसान भाई को और जागरूक करते कि अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई तो इसको तत्काल हम लोग से सुधार पाए, बीमा कंपनियों को संपर्क करे ताकि इसमें सुधार किया जाए, ताकि हम भुगतान जब आपको भुगतान करना हो तो जल्द से जल्द भुगतान करे, किसी तरह की व्यवधान ना पैदा हो। खास करके ऐसा देखा गया है, पीछे हम लोग ने अनुभव किए थे कि अगर बैंक के माध्यम से जब इंश्योरेंस होता था तो किसान भाई को पता भी नहीं होता था कि मैं मेरी किस खेत की किस फसल के लिए बीमा हो गई है। तो ये एक चैलेंज था। जब हम इसमें व्यक्तिगत खेतवार आकलन करने की व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे पेरिल्स हैं जोखिम जिसको खेतवार आकलन किया जाता है, जब बीमा कंपनी राज्य सरकार के जो संयुक्त समिति होती है जब सर्वेक्षण के लिए जाती है तो वहां जिस फसल के लिए बीमा होता किया गया है वो फसल नहीं मिल पाती थी। तो ये सारे चीज जो चुनौतियां जो फील्ड में थी उसको सुधार कर दिया।
7: देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि हमारी कौन सी फसल का बीमा हो गया, और वो तो जो उसको जो फसल लेनी वो लेता है, और बाद में पता चलता है कि जो कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड फसल है जिसकी अधिसूचना है उसी का ही बीमा मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसी स्थिति ही क्यों आती है?
3: देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार इसमें अधिसूचित करती है फसलों को, इसमें योजना में उनके लिए जो एक क्षतिपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड होता है, ग्रांटेड यील्ड दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल का उपज आंकड़ा की आवश्यकता होता है, प्लस जो अभी हम लोग तत्काल में अगर कोई क्षति होती है, क्षति का जो मापदंड होता है वो भी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। तो राज्य सरकार ये देखती है कि किस फसल में जोखिम है, हमारे पास डेटा उपलब्ध है ताकि हम उसको अधिसूचित कर पाए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि हम लोग ने भी सर्वे किया है, अदर किया है, कि जो मुख्य फसल होते हैं वो सारे कवर हैं, कुछ फसलें ऐसे हैं जिनके इल डेटा नहीं उपलब्ध होते हैं उस टाइम, उनको हम लोग राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं, बात करते हैं मौसम आधारित बीमा योजना में, जैसे खास करके आप बागवानी फसलें हैं, खास करके आपके जो सब्जी की फसलें हैं जो आजकल शहर के नजदीक या गांव में भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो वहां भी हम लोग उनके डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है अलग अलग वैरायटी के कारण, अलग अलग टाइम के कारण, तो हम लोग कहते हैं उनको कि मौसम आधारित बीमा योजना है उसमें आप इसको अधिसूचित करें।
7: जी बिल्कुल।
6: गन्ना भी है, वो भी बाहर है, अभी उत्तर प्रदेश क्या पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, 8 प्रदेश है, लेकिन गन्ना भी अभी योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है।
7: जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और पूरे इस सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, डोर टू डोर पहुंचा जाए, किसानों के घर तक पहुंचा जाए और इसके लाभ के बारे में उन्हें बताया जा सके, ताकि वो इससे जुड़े, इसका लाभ ले और जो उनकी आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
0: किसान भाइयों, अभी हमने फसल बीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, चर्चा को आगे जारी रखेंगे, उससे पहले यहाँ पर लेते हम छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहू बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: एनिक।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए और जानते हैं कुछ और इस फसल बीमा सप्ताह के अंदर क्या जानकारियां हमें मिल सकती है, आइए सुनते हैं।
3: 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा वीक मनाया जा रहा है ताकि आप किसानों को इसके लाभ के बारे में बताया जा सके और आपकी समस्याओं को भी सुना जा सके ताकि उनको सुनकर बीमा को लेकर जो सुझाव हैं बदलाव भी किए जा सके, संशोधन भी किए जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले सर मैंने कहा था कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक पहुंचे हैं हम इन लगभग 5-6 सालों में, पहले क्या आंकड़ा था और अब कहां कितने किसानों को इसमें कवर किया गया है और कितनी नई फसलों को शामिल किया गया है। सुनील जी,
4: देखिए पहले जब हम पुराने योजनाओं में अगर देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग ने देखा कि क्यों कम है, क्या किसान जानते हैं बीमा योजना के बारे

0: में या नहीं जानते हैं या राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर पाती फसलों को, तो ये सारे चर्चा करके हुआ कि नहीं इसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हम इनको अच्छे से ढंग से योजना को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें पहले वर्ष में जो थे वो आप अगर संख्या देखेंगे किसानों का तो करीब वो 4 करोड़ एप्लीकेशन आए थे, और खरीफ अगर 16 की बात करें, अगर अभी हम पिछले खरीफ की बात करें तो स्वैच्छिक होने के बावजूद, योजना स्वैच्छिक हुई है, आधार इसमें कंपलसरी किया गया है, लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि इसमें किसी तरह से डी डुप्लीकेशन हम प्रॉपर कर पाए, वो इसकी गलत फायदा लोगों ना उठा पाए, तो ये सारे चीजों को करने के बाद भी अभी हमारे पास खरीफ में केवल 5 करोड़ किसान अभी बीमित हुए हैं, और हम लोग आशा कर रहे हैं ये कोविड काल का पीरियड है जब तक हम लोग के पास बहुत संसाधन कॉन्स्टेंट था, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर एप्लीकेशन को हम बीमित करेंगे इस बार, तो इसी तरह से देखेंगे। क्लेम के बारे में अगर हम कहें तो क्लेम का भी अच्छा रहा है, जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं 5 साल में आए हैं वहां क्लेम किसानों को मिला है। हाँ, किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि ये बीमा योजना है, बीमा योजना में लाभ उसी जगह मिलता है जहां आपकी फसल नुकसान हुई है, तो जहां जहां नुकसान हुई है वहां वहां फसल का बीमा मिला है। सरकार इसको पूरी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, देखते रहती है, और इसके लिए बहुत सुचारू तंत्र भी लगाया गया है कि ताकि आपको किसी तरह की कठिनाइयां ना हो इसमें। अगर खास करके मैं आज बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो है शिकायत किसानों का होता था उसके लिए क्या करना चाहिए, तो किसान के लिए शिकायत पहले सीधे मंत्रालय को आता था, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति और मंत्रालय को, ये सारे चीजों को हम लोग ने बहुत ग्राम स्तर तक ले जा रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कहा गया कि टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी शिकायत को करें और उनको निवारण करें। इसमें भी अब जो है केंद्र सरकार ने ये निश्चित किया है और इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट हो चुका है कि पूरी कॉल सेंटर शिकायत के लिए पूरी स्ट्रेटजी, हर एक स्टेट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव टोटल होंगे ताकि आपको शिकायत पूरे डॉकेट नंबर के साथ हो और हर एक चीज पर केंद्र सरकार उस पर निगरानी रख सके कि आपकी शिकायत कैसे हुआ और कब निपटारा।
1: ठीक है सुधाकर जी, जैसे कि कृष्णवीर जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक समस्या ये भी आती है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि वो हमें बजट के हिसाब से चीजें करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो पूरा मैन पावर होता है वो उसको उसके अनुसार ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो ये समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे, तो किससे बात करेंगे किसान।
2: देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट होता अगर ये शायद 2 साल पहले तक तो ये रेलेवेंट था। आज के समय में आप देखेंगे तो जो भी कंपनी काम कर रही है तो उसका एक प्रतिनिधि जिला स्तर पे भी है और उसका एक एक प्रतिनिधि हर ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पे उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां हमारी कंपनी भी कार्यरत है 37 जिलों में, तो वहां 200 के आसपास हमारे प्रतिनिधि पूरे फील्ड में मौजूद हैं। तो उसमें वैसे जिले भी हैं जहां पर की प्रीमियम जहां जो जिससे कंपनी का आमदनी होता है वहां नहीं के बराबर है, वहां भी जो है हमारे हर ब्लॉक में आपको आप हमारे प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो ये समस्या आती है ज्यादातर उन छोटे राज्यों में जहां पर की प्रीमियम ही बहुत कम है। अगर सारे जगह पे प्रतिनिधि लगा दिया जाए तो जितनी प्रीमियम नहीं आती है उससे अधिक हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वहां पे एक समस्या है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से उसको भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है, शायद उसमें भी कुछ जल्दी से
1: उसको लेकर क्या किया जा रहा है सुनील। जैसा कि
0: देखिए इसमें चीजें हैं जैसे अभी बता रहे थे, जिसमें पहले सेगमेंट में ही सुधाकर जी बताया कि कुछ ऐसे जिलों को हम लोग चिन्हित करते हैं जहां पोटेंशियल हो और इंश्योरेंस सभी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट इस बार भी चुने हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनके लिए बिजनेस है, सरकार के लिए है कि किसानों को सुविधा है, तो उसके बीच में क्या बैलेंस हो और कैसे करे, तो इनके इंश्योरेंस कंपनी के जो तंत्र हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट करते हैं, प्लस जो है ये फसल बीमा सप्ताह, फसल बीमा पाठशाला, ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं। और जो चीजें वहां अगर पोटेंशियल है और किसानों को नहीं है तो टारगेट भी दिया गया है कि हम आप वहां जाएं और टारगेट करें। तो बिजनेस के साथ साथ जो उनकी सरकार की दायित्व है उसमें पूरी समायोजित करके योजना बनाई जाती है और वहां हम लोग करते हैं, राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग हर एक किसानों को समझाते हैं कि हाँ आपके पास जो है यहाँ क्षति हो सकती है, यहाँ रिस्क है, इस रिस्क में आपको बीमा करानी चाहिए। बाकी स्वैच्छिक है बीमा, किसान चाहते हैं तो बीमा होती है।
2: और इसमें मैं एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे सीएससी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, पहले भी उन्होंने बताया कि ये हर गांव में एक सेंटर तो है ही, कई कई गांव में तो दो दो सेंटर भी है, और कोई बहुत अधिक घनत्व वाला है तो हाँ उससे भी ज्यादा संख्या मिल जाए, तो वो जो सेंटर्स पे हैं उनको बीमा कंपनी, राज्य सरकार के और स्वयं सीएससी के द्वारा भी जो वहां काम कर रहे हैं, इसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको काफी उनको मैन पावर इन्हांसमेंट होती है, उनकी जो तकनीकी जानकारी बढ़ाई जाती है, समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है, तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए योजना का एक्सटेंडेड आर्म है, वो भी हर तरह से हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए सामने खड़े हैं, वो चाहे बीमा का लाभ लेना हो या बीमा कराना हो।
1: अच्छा जी जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी, कि आप ये फसल बीमा मित्र कुछ हम सुन रहे हैं, ये क्या है?
2: हाँ, ये एक नई कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लाई है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में कह लीजिए कि एक वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन क्या मतलब, जो भी वॉलंटियर करेंगे तो एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा कि फसल बीमा मित्र के रूप में आप कार्य कीजिए,
1: किसानों के बीच में
2: से ही।
3: असली बात यह है कि इसलिए मित्र खड़ा करना पड़ रहा भारत सरकार को कि कंपनियों के और किसान के बीच में जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो मित्र जो है हर गांव में करना जरूरी हो गया, इसीलिए किया जा रहा है, जिससे इसका किसानों को जो समस्याएं हैं वो है समय पर उसको इंश्योरेंस का जो प्राइस प्रीमियम जो देता है उसका नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाए, भरपाई करवाने के लिए ही ये ग्राम लेवल पर भारत सरकार मित्र जो है योजना खड़ा कर रही है।
1: जी मैं आपसे समझना चाहूंगी विभास जी, सीएससी का रोल किस तरह का है और कैसे इसे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को, किसानों को समझाएंगे?
4: देखिए, जैसे अभी सुधाकर जी ने यूपी की बात करी थी तो मैं यूपी का एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यूपी में हमारे करीब 80,000 केंद्र हैं, एवरेज हो गया करीब करीब 1100-1200 केंद्र हर जिले में
1: जी।
4: तो ये ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने कहा हर गांव में एक केंद्र है ही, हर ग्राम पंचायत में डेफिनेटली एक केंद्र है, और वहाँ पे सारी उन लोगों को जानकारी होती है फसल बीमा के बारे में, तो हमारे किसान भाई वहां जाके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से जाके एनरोलमेंट भी कर सकते हैं,
1: दोनों चीजें
4: हो सकती है, जिसमें कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं उनसे, तो वो एक सप्लीमेंट्री मैनपावर की तरह से भी यूज होता है, कई लोग करते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो उसके स्टेटस के बारे में, अगर कोई रिफंड या रिजेक्टेड पॉलिसी है उसके स्टेटस के बारे में, ये सारी चीजें हमारे केंद्र से पता की जा सकती है
1: जी। और कृष्णवीर जी, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, किसानों की एक समस्या हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो कोई अगर क्षति होती है या कोई आपदा आती है तो राज्य की तरफ से भी वो आपदा राहत राशि होती है, और वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अगर वो किसान लाभ ले रहा है, अगर उसने बीमा भी करवाया उस फसल का, तो यहां पर किसान कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमें पैसा कौन सा मिल रहा है, दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, तो ये आप अब जब किसानों से बात करते हैं तो किस तरह की शिकायत रहती है उनकी तरफ से?
3: देखिए, प्रदेश सरकारों का जो आपदा में पूरा प्रबंधन करती है सरकार और जो पैसा किसानों को देती है वो राशि जो है वो कम होती है, और वो कम राशि इसलिए होती है क्योंकि तत्काल किसानों को एक मदद है आर्थिक रूप से, जो तुरंत मदद की आवश्यकता है किसान को, तो प्रदेश सरकारें सिर्फ तुरंत सहायता के लिए मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल बीमा कराया गया है और जिस कंपनी ने किया है, जितना नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए, और वो समय पे भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी तक शिकायत ये थी कि समय पर उसको पैसा जो नुकसान है वो उसको मिल जाए, किसान ये चाहता है कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान है वो हर किसान को समय पर मिल जाए, और जिस दिन कंपनियां देना शुरू करेंगी तो एक किसान जो है 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं बल्कि 13 करोड़ किसान इस योजना को स्वीकार करे।
1: सुनील जी, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे?
0: देखिए, ये चुनौतियां सरकार के पास रही है और अभी बहुत हम लोग सफल हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते कि पूरे हम लोग जितना लक्ष्य रखे हैं उसमें सफल हो पाए हैं, लेकिन पहले इसमें धीरे धीरे कड़ी हम लोग हटा रहे हैं कि क्यों देरी होती थी। पहले चीजें थी कि डेटा जो आता था बहुत देर से आता था, उसको डेटा को कैलकुलेट करने में कि कितना क्षति होगी उसमें दिक्कत होती, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का समावेश किए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको क्षति का आकलन कर पाए। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा आता था बड़ा फिजिकली आता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होता था, उस सारे चीज ठीक हुए। दूसरा मेन चीज था कि पहले हम लोग सीधे बैंक को देते थे और बैंक जो है सीधे जो इंश्योर्ड फार्मर होते थे उनके खाते में ट्रांसफर करते थे। अब हम लोग सीधे इंश्योर्ड फार्मर्स के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां थी उसको हम लोग ने दूर कर दिया है। अब केवल चुनौती केवल इतना ही बच गया है कि कहीं कहीं जो है राज्य सरकार जो है प्रीमियम नहीं दे पाती है समय से, इसके कारण भुगतान डिले होता है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जो अब ऐसे बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो तत्काल 2 महीने का हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2 महीने के अंदर जो मौसम फसल कटाई प्रयोग खत्म होते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान करना होता है, इसके लिए मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, प्लस अगर भुगतान नहीं किए तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और उन पर 12% का ब्याज दर निर्धारित करके हम लोग भुगतान भी करवाते हैं। तो ये सारे चीजें आई है, तो जिसके कारण से जो है सबको दायित्व दिया गया है, दायित्व के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक समय दिया गया है, उस समय में करें और टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया ताकि ट्रांसपेरेंट वे में मॉनिटरिंग हर एक स्टेक होल्डर हर एक आदमी कर पाए, वो अपने मोबाइल के माध्यम से है। लेकिन अगले सीजन से हम लोग जो है सीधे भारत सरकार ही पैसा ट्रांसफर करेगी, ऐसी व्यवस्था कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। जिससे 2-3 फायदे हैं कि हम लोग को पूरे राज्य सरकार और पूरे उनके प्रतिनिधि साहब को पता होगा कि कब पैसा ट्रांसफर हुआ और किसान को ट्रैक कर पाएंगे पूरे एक्टिविटीज को। तो ये अगले सीजन से हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग चालू करने वाले हैं, तो ताकि अब हम लोग एकदम रूट कॉज में पता कर पाए।
5: किसान साथियों, अभी हमने सुना किस तरीके से पहले जितनी समस्या आती थी हमें हमारे बीमा काम करने में, किस तरह कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं आया, इन सारी समस्याओं को जितना हो सके जो लंबी प्रोसेस थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते और सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
0: कि किसान भाई को सराहता कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ,
1: जी।
0: मेरा जो आकलन हुआ ठीक नहीं हुआ, वहाँ प्रतिनिधि पूरे अगर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में आके और सारे चीज रिकॉर्डेड रहेगा और हम लोग उस चीज को बाद में भी ऑडिट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवांसेस बनेगी तो हम लोग तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं, ये सारे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। योजना का पर्पस ही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में पूरे हम फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लाएं कि हम आपको पूरी सुरक्षा दे रहे हैं।
2: मैडम, एक और मैं इस कड़ी में और एक बात बोलना चाहूंगा कि किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी इस बीमा योजना का लाभ मिले, जिससे समय सब लोग बात कर रहे हैं कि देर हो रहा है। उससे देर होने का मुख्य कारण एक तो सब्सिडी है, दूसरा है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आता है हमारे पास, तो इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट शुरू किया है। इस बार प्रपोजल है जिसमें कि सारा रिमोट सेंसिंग से लॉस एस्टिमेशन होगा ताकि वो तुरंत डेटा आ जाए और उस तरह से
1: तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिसका जिक्र सुनील जी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि किसानों की तरफ से एक ये भी सवाल रहते हैं या फिर आशंका रहती है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना सही हुआ है, किस आधार पर हुआ है, तो उसे और पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स भी पढ़ रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए, तो उनमें से एक पॉइंट था कि उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा और जो बीमित राशि है जो मूल्य है उसे कम नहीं किया जाएगा। तो ये किस तरह से ये इसका गणित क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है?
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: अंकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है, नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? पीएमएफबीवाई योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था, लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।
1: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मूल्य की बात कर रहे हैं कि जो उपज है उसकी जो बीमित राशि है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मानक क्या है, क्या है इसके पीछे का पूरा गणित, तो मुझे लगता है सुनील जी आप इसे बेहतर समझा पाएंगे।
0: देखिए इसमें सरकार की हम मंशा रही है कि हम पूरे जितने क्षति हो उसको हम पूर्ण भरपाई करें, समानुपातिक जितनी क्षति हुई उसको करें। अगर 100% लॉस हुआ तो 100% देंगे, 50% लॉस हुआ तो 50% देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो है दो तरह के हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि या तो आप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण मुहैया कराते हैं उसी के आधार पर वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी बहुत साइंटिफिक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि C2 जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है उसके आधार पर हर एक जिले में जो आप वैरायटी लगाते हैं, जो आप इनपुट यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं उसके आधार पर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित होता है इस, और उसी को हम लोग सम इंश्योर्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं। दूसरा एक राज्य सरकार को और दिया गया है कि आप उसको कुछ क्रॉप्स का कि बहुत दिनों से नहीं अपग्रेड हुआ होगा स्केल ऑफ फाइनेंस या उसमें लगता होगा कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक च्वाइस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले जो आपका 7 साल का उपज है उसको एवरेज यील्ड लीजिए और आज का जो पिछले साल MSP घोषणा की गई है या इस साल जब आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें MSP की घोषणा हो गई है तो उस MSP से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू बनेगा पर हेक्टेयर वो सम इंश्योर्ड होगा, यील्ड आपको आ गया पर हेक्टेयर और MSP के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सम इंश्योर्ड।
1: ठीक है सुधाकर जी, तो ये सब कैलकुलेशन किस स्तर पर होते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं जो गाइडलाइंस मिली है सरकार की तरफ से उसके आधार पर?
2: नहीं, ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है, जब जैसा आपको पता होगा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कंपनियां सबसे कम प्रीमियम रेट देती हैं उसी को वो डिस्ट्रिक्ट में बीमा करने का अधिकार मिलता है। तो जब टेंडर का डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी समय राज्य सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सम इंश्योर्ड होगा। जैसा भी सुनील जी ने बताया कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, राज्य सरकार के अधीन है कि वो किस तरीके को अपना करके सम इंश्योर्ड तय करती है, तो पहले ही डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये सम इंश्योर्ड इस बार इस क्रॉप में रहेगा। और इंडेमनिटी लेवल दूसरा होता है कि जो क्षतिपूर्ति का स्तर क्या होगा वो भी पहले ही तय हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो 70% हो

0: पिछला एमएसपी है उससे कैलकुलेट करके जो सरकार योजना बना रही है, ये इस पर काम चल रहा है अभी, इस पर काम चल रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि जो जिला स्तर की यील्ड होगी, जो लेवल होगा प्रोडक्टिविटी का, और उसको एमएसपी से कैलकुलेट करके जो टोटल फसल का दाम होगा उससे किसान को जो है कंपनसेट जो है नुकसान होने पर जो है वो दिया जाएगा। ये किसान के हित में जरूरी है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है, और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से जो पहले जिला और गांव लेवल पर दिक्कतें थी उसका समाधान करने का प्रयास सरकार ने किया है। खास तौर से जो एसेसमेंट का सुधार किया है टेक्नोलॉजी का, वो समय की आवश्यकता थी और उसको सरकार ने लागू किया है। अब सिर्फ स्थिति यहां आके रुकी हुई है कि केंद्र सरकार जिस दिन जो है सीधे किसानों को नुकसान का पैसा उनके खाते में देना शुरू करवा देंगे, जैसा कि सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हम किसानों के नुकसान का पैसा केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में दे, ना कि बैंक को बीच में रखे या पोस्ट ऑफिस को रखे या कंपनियों को अभी तक जो रखा गया, क्योंकि उसी से किसान जो है अभी तक जो समस्याएं हैं उसी लेवल पर है। वो समस्या का समाधान जिस दिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से, जो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंगल क्लिक पर जो है 13 करोड़ किसानों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके सारी योजना है। तो ये भी योजना जिस दिन केंद्र सरकार अपने तरफ से सीधे किसानों खाते में देना शुरू कर देगी तो उस दिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रदेश सरकारें जो अपना पैसा भागीदारी का है वो समय पर दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये तो
1: जवाबदेही भी यहाँ पर तय हो जाएगी, इसे
0: किसान के हित में किया।
1: जी बिल्कुल विभास जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, जो इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं इसे और सशक्त बनाया जा रहा है?
2: देखिए मैं तो सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ, हमारे यहाँ एनरोलमेंट बढ़े हैं। हर सीजन में लगातार एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं और ज्यादा ज्यादा लोग आके जुड़ रहे हैं इस स्कीम के साथ थ्रू द सीएससी नेटवर्क। तो हमको तो लग रहा है कि ये स्कीम
1: काफी लोकप्रिय हो रही है।
3: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटाबील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
3: जानकारियों को बढ़ाते हुए ये सुनते हैं कैसे आसानी से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
5: देखिए मैं किसान भाई बंधु को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक आप खेती करते हैं, खेती में जोखिम बहुत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप एक भविष्य के लिए एक निश्चित आय आप सोचते हैं कि हमको ये आएगी और उसके लिए वर्तमान में आय से आप फ्यूचर की क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। अगर किसी न किसी कारण से वैसा कभी ना हो, हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आपके जो फसल नुकसान हो जाए और जो आप आय के लिए जो आशा किए थे वो आय में बाधा हो, इस चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। आप इसका लाभ लें, बहुत सिंपल है, आपको केवल 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ फसलों के लिए, रबी में 1.5% प्रीमियम है अधिकतम, बाकी बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है, जो कम ही है, और वो जो है वो बाकी शेष राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करती है। आप योजना में देखें, अपने योजना के बारे में जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप कृषि विभाग से ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, आला प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बीमा कंपनी के जितने कार्यालय वहां तक हम लोग लगाए। इसके अलावा होर्डिंग हम लोग वैन वगैरह चलवा रहे हैं कि हर एक गाँव में पहुंचे, आपको जानकारी दे, पंपलेट बांटे ताकि आपके पास रहे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जब आए तो सारी चीजें मिले। ये सारे चीजें हमको जानकारी
1: एक्सटेंशन वर्क जो है वो भी
5: आप जो है बहुत सिंपल है, हर एक जगह इसकी उपलब्धता है, आप बैंक के माध्यम से करा सकते हैं, सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल पर जाके कर सकते हैं, ये कहीं भी डोर स्टेप पर हम लोग कोशिश किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए बहुत सरल तरीका है, केवल आपको 3 कागजात देने हैं, कागजात भी नहीं कहिए, कागजात के रूप में केवल आपको केवल अगर आप भूमि स्वामी हैं तो रसीद देने पड़ेंगे, उनके, अगर आप पट्टे पर लिए हैं तो

0: उनके आपके लिए घोषणा देना पड़ेगा, एक राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है, आपको क्रॉप के बारे में स्व घोषणा करना है कि हम ये क्रॉप के लिए बीमा करा रहे हैं। हाँ, ध्यान दें कि जिसका बीमा कराएं वही फसल लगाएं, अगर फसल बदलते हैं तो आप बीमा कंपनी में जाके बदलवा दें ताकि आपको भविष्य में कठिनाई ना हो। बैंक का हम लोग दस्तावेज लेते हैं, दस्तावेज इसलिए लेते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हमको भुगतान करना होता है बीमा कंपनियों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ताकि हम आपके डिटेल हो पहले कैप्चर करके रखें और दे। हाँ, ये योजना जो है इसमें हम लोग नए दो चीज और जोड़े हैं, आधार, आधार कंपलसरी है ताकि जो है किसी तरह का योजना का सही लोगों को सही जगह पहुंच पाए, और लैंड रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन किए हैं ताकि जो है जिस लैंड में है उसी लैंड का आपका बीमा हो और पूरा डिटेल हमारे पास हो और किसी तरह का जल्दी से जल्दी
1: किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के
0: ट्रांसपेरेंट वे करें।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: किसान साथियों, आपने फसल बीमा योजना से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ हैं वो दरअसल एक कलाकार भी हैं। वो कविताएं लिखते हैं और खास करके बच्चों की कविताएं लिखते हैं जो कि बहुत प्यारी प्यारी होती हैं। इनका नाम है दुष्यंत कुमार सोनी साहब। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपसे बातें करेंगे, आपके बताए हुए गीत सुनेंगे और आपकी कविताएं भी सुनेंगे। तो दुष्यंत जी, बस मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी पहली कविता जो बच्चों के लिए आपने लिखी है वो सुनाएं।
1: जी सर, थैंक यू सर। मैं सुना रहा हूं आपको बच्चों के लिए कविता। कविता का शीर्षक है सर, बंदर।
0: जी।
1: बंदर आया, बंदर आया, देखो घर के अंदर आया, खोज रहा था चना चबैना, पर पहले वह केला खाया। पापा के कमरे में जाकर बैठ गया टेबल के ऊपर, लगा मोबाइल कान में अपने, हुप हुप कर मुंडी हिलाया, बंदर आया, बंदर आया, देखो घर के अंदर आया।
0: बहुत बढ़िया।
1: पास वही दादा का कमरा, दादी काट रही थी अमरा, छीन के चाकू चढ़ा पलंग पर, पूंछ उठाकर दांत दिखाया, बंदर आया, बंदर आया, देखो घर के अंदर आया। बाथरूम वह घुसा बाद में, फिसल गया साबुन के झाग में, देख आईना लगा मटकने, तेल गिराया मंजन खाया, बंदर आया, बंदर आया, देखो घर के अंदर आया।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी कविता बंदर के ऊपर, जो कि सचमुच अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। कहावत भी है ना कि बंदर को हल्दी की गांठ मिल जाए तो वो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। बहुत खूबसूरत दुष्यंत भाई, बहुत खूबसूरत। तो कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे हमारे दोस्तों को?
1: तो सर, मैं पहले तो सबसे पहले बच्चों पे ही एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, जिसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने गाया है
0: जी,
1: उसका बोल है, बच्चे मन के सच्चे।
0: बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा गीत। आइए दोस्तों, दुष्यंत जी की फरमाइश पर ये गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ।

0: बहुत ही प्यारा गीत। दुष्यंत भाई, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है और अभी आप कहाँ रहते हैं और उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी दीजिए।
1: जी अवश्य, सभी श्रोतागणों से मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से आदिवासी बाहुल्य जिला जिसे उमरिया कहते हैं, वहां पे मैं निवास करता हूं। और उमरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा इसका नाम है, एक नदी पहाड़ से निकलती है जिसका नाम है उमरार। उमरार नदी के नाम पर ही इस शहर का नाम उमरिया पड़ा। और हमारे उमरिया जिले में बांधवगढ़, जो कि पूरे विश्व में विख्यात नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व एरिया है, तो वहां पे सिचुएटेड है, उमरिया में ही है ये। और उमरिया के पास ही एक बहुत बड़ा ताप विद्युत गृह है जहां पर एक जोहिला नामक नदी जो अमरकंटक से निकलती है उसे बांधकर बनाया गया है, उसका नाम संजय गांधी ताप विद्युत गृह है। और यहाँ पर एक शक्तिपीठ माता शक्ति की स्वरूपा माँ बिराशनी का एक बहुत अच्छा मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन के लिए उनके जाते हैं और मनोकामना उनकी पूरी होती है। उमरिया एक छोटा सा जिला है जहाँ पर हम सभी लोग पूरी आत्मीयता से निवास करते हैं और मध्य प्रदेश के बिल्कुल हृदय स्थल पर होने के कारण इसकी अपनी कई खूबियां हैं। बताना चाहूंगा कि उमरिया में एक छोटा सा गांव है जिसे करकेली बोलते हैं। करकेली गांव ऐसा गांव है कि जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरने के कारण ही उस गांव का नाम करकेली पड़ा हुआ है। तो यही है अपना उमरिया, जो सांस्कृतिक विरासतों से भरा है, लबरेज है।
0: बहुत खूब दुष्यंत भाई। दुष्यंत भाई, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अगली कविता हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
1: जी सर, तो मैं अगली कविता में आपको एक सुना रहा हूं जो है एक नाई की दुकान। तो नाई की दुकान उसका शीर्षक है, मैं बोलते जा रहा हूं। कैंची, कंघी और उस्तरा जैसे कई सामान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान। देखो ये है बड़ा आईना, सीधा सरल विशाल, होते मुंडन ही दिखलाए चिकना साफ कपाल। आगे पीछे दाएं बाएं दिखती इसकी शान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान। छोटी कैंची की रहती है अच्छी खासी पूंछ, आए दिन यह बड़े बड़ों की काटे लंबी मूंछ। कच कच कच कच करती चलती जैसे चले जुबान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान। लंबा सीधा रखा उस तरह तेज बड़ी है धार, हुई चूक तो करता सीधे यह गर्दन पर वार। करे हजामत रखे सलामत सबकी यह मुस्कान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान। आखिरी बंद है इसका, राजा मंत्री चोर सिपाही सबका आना जाना, बाल कटाने जिसको पहले आकर शीश झुकाना, मुंडी जिसने तनिक हिलाई तो कट जाए कान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान, नाई की दुकान।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही प्यारी कविता, बहुत सुंदर दुष्यंत भाई। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का कोई गीत बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: सर मेरा एक गाने का बोल है जिसे अरिजीत सिंह साहब ने गाया है, तेरा फितूर।
0: तेरा फितूर अरिजीत सिंह जी ने गाया है। आइए दोस्तों सुनवाते हैं दुष्यंत जी की फरमाइश पर यही प्यारा सा गीत।

0: दुष्यंत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे सी कविता के लिए जो बच्चों के लिए आपने लिखी है। दुष्यंत भाई, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? जब आप बच्चे थे तो क्या बनना चाहते थे आप?
1: मैं शुरू से मेरी सर इच्छा ये थी
0: जी
1: कि मैं सेवा में जाऊं और वहां पर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए देश की सेवा, समाज हित और बच्चों के लिए काम करूं।
0: जी
1: ये शुरू से मेरी इच्छा रही है सर।
0: वाह, क्या बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो बचपन में सोचा वही आप कर रहे हैं, तो एक अपने आप में सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि होती है, और फिर हम अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम भी देते हैं। बहुत सुंदर। तो दुष्यंत भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली कविता हमें सुनाएं।
1: जी सर, तो अगली कविता का शीर्षक है सर, फूल और तितली। सुबह सुबह एक छोटी तितली आई फूल के पास, हाथ पकड़कर उससे बोली, क्यों हो आज उदास? शांत फूल यह सुनकर बोला, प्यारी तितली रानी, फोन नहीं करती हो अब तुम, बोलो क्या परेशानी? कई दिनों से देखा मैंने, ना कोई मैसेज आया, फ्रेंड लिस्ट में सब है बाकी, तुमने मुझे हटाया। तितली बोली, ठंड बहुत है, दादी सोती साथ, घंटी बजते ही जग जाती, लिए मोबाइल हाथ। डोंट वरी, स्माइल कर दो, गर्मी आने वाली है, खत भेजा है दादाजी ने, दादी जाने वाली है, दादी जाने वाली।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही प्यारी कविता, शानदार दुष्यंत भाई। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को एक प्यारा सा गीत भी सुनवाइए।
1: सर अभी एक फिल्म है सर, केसरी।
0: जी,
1: फिल्म केसरी एक देश प्रेम पर आधारित है और मनोज मुंतशिर साहब और दीपराग साहब ने शायद उसे आवाज दी है। गाने के बोल है, तेरी मिट्टी में मिल जाओ।
0: जी जी जी, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सेंसेशनल गीत है। आइए दोस्तों, सुनवाते हैं इसी गीत को दुष्यंत भाई की फरमाइश पर।

0: किशन भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
1: सर मैं आपको बताऊं कि मुझे टीचिंग का, एंकरिंग का बहुत ही शौक है। साथ में मैं संगीत की विधा से भी जुड़ा हुआ हूं और तबले पर मैंने विशारद का कोर्स भी किया हुआ है। और मुझे योग करना बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधों की हरियाली मुझे बहुत पसंद है और लोगों को भी मैं इन सब से जोड़कर रखना चाहता हूं और प्रेरित भी करता हूं कि आप भी नियमित रूप से योग करें, संगीत से जुड़े, प्रकृति से जुड़े और बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। क्योंकि बच्चों के साथ जब हम समय बिताते हैं तो हम अपनी थकान, अपनी चिंताएं और अपनी परेशानियों को भूलकर बच्चे ही बन जाते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी हॉबीज हैं, मैं जरूर कहूंगा। तो दुष्यंत भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, एक और कविता सुनाइए।
1: जी सर, मैं अभी आपको कविता सुनाने जा रहा हूं। मैं बता रहा था कि गर्मी के मौसम में अभी हम लोगों ने बहुत परेशानियां फेस की हैं और जीव जंतुओं ने भी फेस की हैं। तो मैंने एक दृश्य देखा था कि एक बंदर था जो बहुत प्यासा था, उसी पर मैंने चार लाइनें लिखी हैं, तो आपके समक्ष रख रहा हूं कि पेंट पर बैठा था बंदर, प्यासा झाक रहा था अंदर, मुरझाया था उसका चेहरा, पानी पर ढक्कन का पहरा, गला सूख कर चिपट गया था, टंकी से वह लिपट गया था, करता भी भूखा बेचारा, पका हुआ गर्मी का मारा, बहुत देर से हलाकान था, दिखता ना कुछ समाधान था, कभी अचानक बादल आए, जी भर कर पानी बरसाए, बंदर अपनी प्यास बुझाया, टंकी को ठेंगा दिखलाया, टंकी को ठेंगा दिखलाया।
0: वाह क्या बात है, टंकी को ठेंगा दिखलाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दुष्यंत भाई, हमारे सुनने वालों को कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
1: हाँ सर, मैं एक गीत सुनवाना चाहूंगा उन्हें कि एक फिल्म है जब वी मेट।
0: जी
1: जी, उसको उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया है, आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे,
0: आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। लीजिए दोस्तों, दुष्यंत जी की फरमाइश पर यह गीत पेश खिदमत है।

0: मिशन भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत गिफ्ट, तोहफा, चाहे वो छोटा सा हो, कौन सा मिला और वो किसने दिया आपको?
1: सर, मुझे सबसे पहले तो सर मेरी जो जब बिटिया हुई थी तो मुझे वो दुनिया का सबसे अच्छा उपहार लगा था
0: जी,
1: और तब मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ था, बहुत खुश हुआ था और उसको मैं बहुत मानता हूँ। मेरी बिटिया का नाम दूरवा है
0: जी,
1: जो मेरे ही ढंग से रहना सीख रही है। उसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ। वो अभी कक्षा 7 पर में पढ़ती है
0: जी,
1: और बहुत ही अच्छी बेटी है मुझे, जो ऊपर वाले ने और मेरी श्रीमती श्रीमती वर्षा जी ने मुझे गिफ्ट किया।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दोस्तों आपने सुना, सबसे अच्छी सबसे प्यारी गिफ्ट दुष्यंत जी को उनकी बेटी के रूप में मिली है, बहुत सुंदर। तो दुष्यंत जी एक और कविता सुनाइए हमें अपने बच्चों के लिए।
1: तो सर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बेटी के ऊपर मेरा ज्यादा झुकाव है,

0: जी तो जी
1: उसी की कुछ लाइनों को बता रहा हूँ सर कविता के रूप में।
0: जी
1: मेरी बिटिया कहती है सर कि आप एक पापा दुकान खोल लो।
0: अच्छा ओके।
1: वो कहती है कि आप सर्विस मत करो
0: जी,
1: एक छोटी सी दुकान खोलो, किराना खोलो जहां मुझे टॉफी बिस्किट आदि सब मिल जाए। तो उसी की खाओ पे सर मैंने लिखा था जो आपको बता रहा हूं।
0: जी
1: तो मांगू ना मैं माल खजाना, नहीं चाहिए चंदा मामा। मांगू ना मैं माल खजाना, नहीं चाहिए चंदा मामा। रख के टॉफी बिस्किट खोलो, पापा तुम एक पॉप किराना। रोज रोज की पूछा पाती, क्या पसंद है ना पसंद है। थक जाती हूँ रोज बताके, अब मुझको है नहीं बताना। रख के टॉफी बिस्किट खोलो, पापा तुम एक कॉप किराना। बिन पैसे की गोल मिठाई, जब जी चाहे नान खटाई। बैग में रख के चिप्स के पैकेट, आए मेरी फ्रेंड कराना। रख के टॉफी बिस्किट खोलो, पापा तुम एक कॉप किराना। चाहे महंगी या फिर सस्ती, फ्रूटी पीकर करूंगी मस्ती। किट्टू के मैं लेकर चकरी, उसे खिलाऊं साबूदाना। रख के टॉफी बिस्किट खोलो, पापा तुम्हें कॉप किराना। मांगू ना मैं माल खजाना, नहीं चाहिए चंदा मामा। रख के टॉफी बिस्किट खोलो, पापा तुम्हें कॉप किराना।
0: मैं बहुत बहुत आभार आपको इतनी प्यारी प्यारी कविताओं के लिए। तो अगला कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप हमारे मित्रों को?
1: जी सर, मुझे एक बहुत ही फेमस गीत है, फिल्म है नदिया के पार
0: जी,
1: और उसका एक गीत है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सौम्य। आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत को सुनते हैं।

0: विशन भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: हालांकि सर आपने बहुत कठिन प्रश्न मुझसे कर लिया है
0: जी।
1: सर मैं अपना परिचय तो यही कहूंगा कि सर एक समाज के लिए, बच्चों के लिए समर्पित सादगी पूर्ण एक व्यक्ति हूं सर, और मुझे हंसना हंसाना मस्करी करना बहुत अच्छा लगता है। हर उम्र के दोस्त मेरे पास उपलब्ध है सर। मैंने जो रिटायर हो चुकी पर्सनालिटीज हैं उनसे भी मेरी अच्छी दोस्ती है और बातें होती रहती हैं, हंसी मजाक भी होता रहता है। बच्चों से भी मेरा बहुत लगाव है, परिवार को मैं बहुत समय देने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे सरकारी दायित्व होते हैं या रोजी रोटी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां हमें उन्हें ज्यादा समय देना होता है, तो कई बार परिजनों की झुंझलाहट भी मुझे कहनी पड़ती है। और इन सब के बावजूद मैं अपना परिचय ये कहूंगा कि हमेशा खुश रहते हुए सबको जितना हो समय देना चाहिए और उस समय को एंजॉय करना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अगला कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप हमारे दोस्तों को?
1: सर मैं एक देशभक्ति गीत से सर है, रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।
0: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। महेंद्र कपूर साहब की आवाज में मनोज कुमार के ऊपर फिल्माया गया ये गीत जो रोंगटे खड़े कर देता है। आइए दुष्यंत जी की फरमाइश पर दोस्तों इसी गीत को सुनते हैं।

0: दुष्यंत जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपनी कविताएं हमें सुनाई, हमें आह्लादित किया, हमारे दोस्तों को अपनी कविताओं से प्रसन्न किया, बच्चों को खुश किया, अपनी फरमाइशें बताई प्यारी प्यारी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आप हमारे सुनने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जी सर, मैं कहूंगा कि सर, हम सबको पहले स्वयं को निखारना है, अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना है, और फिर परिवार को संभालते हुए देश और समाज की बात करनी है।
0: जी, बहुत सुंदर। दुष्यंत भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस रेडियो चैनल को, और बारंबार मैं आप सभी को नमन करता हूँ।
2: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल।
0: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आज के कलाकार के एक और बहुत ही प्यारे से, समझिए दोस्तों, कुछ अनप्लग्ड एक प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं मैं। आज जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो सिंगर हमारे साथ हैं, वो हैं सुनील रविंद्रन जी। अब मैं हमेशा यही चाहता हूं कि जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपने बारे में खुद बताएं, तो जाहिर सी बात है उन्हें अपने आप को एक बार फिर शीशे में देखने का मौका सा मिल जाता है, अपने आप को समझने का मौका मिल जाता है। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्पीक टू योर ऑडियंस, अवर फैमिली मेंबर्स ऑफ आज के कलाकार, और उनको अपने बारे में बताइए ना, कहां पर हैं आप, क्या करते हैं।
1: श्योर श्योर, थैंक यू सो मच जी फॉर गिविंग मी दिस ऑपर्चुनिटी।

0: बहुत खूब। तो सुनील जी, चलिए मुझे ये भी बता दीजिए साथ साथ कि आपने सिंगिंग कब से शुरू करी, कौन सी उम्र से शुरू करी थी, किसने आपको मोटिवेट किया, किसने आपको इशारा किया, कहा सुनील दैट यू कुड बी अ गुड सिंगर, यू आर अ गुड सिंगर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, कब हुआ ये?
1: बहुत मजेदार कहानी है ये। आई एक्चुअली स्टार्टेड एज अ बाथरूम सिंगर लाइक हाउ अ लॉट ऑफ पीपल डू। मेरा कॉन्फिडेंस जीरो था स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में भी हमारे स्कूल में सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता था, बट मुझे बहुत ये स्टेज फियर था, लाइक आई वाज स्केयर्ड टू कम ऑन अ स्टेज, सो आई वुड नेवर गिव माय नेम। बट जब भी लोग गाते थे एंड कुछ लोग अच्छे नहीं गाते थे, तो वो गाना सुन के मुझे लगता था कि आई कुड डू बेटर, आई कुड डू मच बेटर, एंड मैं वो गाना बाथरूम में जाके प्रैक्टिस करता था कि इफ आई हैड सॉन्ग हाउ वुड आई सिंग। आई स्टिल रिमेम्बर दैट वन सॉन्ग, ये तमिल में एक चिक बुक रैले करके एक सॉन्ग था, which one guy in the school did not sing well, okay, and I was thinking that I can sing well, and ye chalta raha ki mujhe confidence aaya hi nahi, aur nobody knew that I could sing even in my house, and then ye aisa hua jab not even in my college days, when I started my office mein pehli baar aisa hua ki mere dost logon ne prank kiya mujhe. They just called me on the stage and they asked me to sing. They just told everybody Sunil is a good singer and he sings well karke mujhe. They didn't know that I can sing or, you know, I can, I'm that's my passion.
0: Oh.
1: Aur mujhe wo gana bhi yaad hai, Dilbar Mere Kab Tak Mujhe.
0: Aha.
1: So wo gana gaya tha main pehli baar in front of an audience. Wo ek program chal raha tha. Matlab it is a small office, around 25 to 30 people as audience. That was my first song and that gave me so much confidence because sab logon ne aake bola mujhe ki acha gaya, and then that kind of took my stage fear out as well. So tab se main ga raha hu, I can tell you the year also, it was
0: 2007.
1: That's correct.
0: Oh wow. So ye hota hai dosto, kai baar hum logon ko push kar diya jata hai, kai baar hum accidentally kisi ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम एक्सप्लोर कर पाते हैं कि कुछ था हमारे अंदर जो आज तक छुपा हुआ था। सिमिलरली सुनील जी को भी उनका टैलेंट मिल गया, क्या बात है। तो सुनील जी, अब अगला कौन सा सॉन्ग आप हमारे दोस्तों के लिए सुनवाना चाहेंगे, बताइए।
1: अगला एक मोहम्मद रफी का गाना है जो मुझे बहुत बहुत बहुत पसंद है, वो सुहानी रात ढल चुकी।
0: ओके, okay, that's nice, that's so beautiful, and साथ में एक

0: एक और सॉन्ग बताइए जो हम उसके बाद प्ले कर देंगे।
1: उसके बाद एक ये एक अकेला इस शहर में, वो भी भूपिंदर सिंह जी का गाना है।
0: ओके,
1: बहुत पसंद है मुझे वो।
0: बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, इन दोनों प्यारे प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब। तो सुनील भाई, जैसे मैंने अपने डिस्कशन में शुरुआत में सोचा था कि आपसे पूछूंगा, हम लोग जितने भी प्रोग्राम बना रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन पर आज के कलाकार में, उसमें बैंगलोर सबसे आगे है पूरे इंडिया में। सो मैं और नितिन इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे, और मैं चाहता था कि हमारे ग्रुप वाले लोगों के साथ भी डिस्कस करें कि ऐसा क्या हो रहा है बैंगलोर में कि इतने सिंगर्स वहां से आ रहे हैं। तो आपका क्या, आपको क्या लगता है कि why बैंगलोर इज यू नो प्रोड्यूसिंग सो मेनी फैंटास्टिक सिंगर्स, व्हाट इज हैपनिंग देयर?
1: तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंगलोर इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ओके, यू हैव पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हियर, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया कमिंग हियर। एंड अभी आजकल जो हो रहा है वो देर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पैशनेट सिंगर्स, ओके, नॉट नेसेसरली प्रोफेशनल सिंगर्स, बट देर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पैशनेट सिंगर्स वेयर दे कैन कम ऑन अ स्टेज। अब मेरे केस में भी ले लीजिए आप, मैं how I used to you know do my passion is I bought some speakers, mic sets, sab laake main ghar mein gaata tha. Okay, for maybe 3-4 years back I used to sing at home, and then mere dost log kuch 3-4 log mil gaye jo they have the same kind of passion that I have, and we used to do some small stage shows in apartments and all that. But abhi bahut sare karaoke groups aa gaye hain jahan pe hum log jaake apna we can fulfill our passion. So that's why I think a lot of people are coming out of their shell.
0: Okay.
1: And singing.
0: All right. Miss, I had been trying to understand the psychology which is going behind all the singers accumulating in Bangalore, because yun dekha jaye to Sunil bhai, after all पुणे भी तो है, पुणे पहले बहुत आगे था, फिर बैंगलोर टुक ओवर। हाँ, उसी तरीके से मुंबई भी होगा, दिल्ली भी होगा, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे, कोलकाता हो, बंगाल में तो मतलब सिंगर्स ही सिंगर्स हैं। सो अभी मुझे, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ टेरिटरी कि बैंगलोर में ऐसा क्या हो रहा है जो कोलकाता में नहीं हो रहा। सो ऑफकोर्स आप लोग शायद, जो मुझे सुनने में आ रहा है आपकी आवाज में, कि आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आपस में, एक दूसरे से कनेक्शन बहुत ज्यादा है आप लोगों का, उसकी वजह से सब लोग साथ आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मुझे, आप लोग सुन रहे हैं सवाल को, अगर आपको लगता है कि कोई और रीजन हो सकता है दैट बैंगलोर इज यू नो परफॉर्मिंग अमेजिंगली ब्यूटिफुल, तो प्लीज लेट अस नो। We are just trying to understand, you know, it's a human, psychology experiments which goes on. Anyways, अब सुनील भाई हमें बताइए कौन सा गीत हम सुनवाए हमारे दोस्तों को।
1: ओके, अब किशोर कुमार जी का एक गाना है, आज चल के तुझे, वो सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके, और दूसरा?
1: दूसरा अगेन किशोर कुमार जी का, मंजिलें अपनी जगह है।
0: ओके, तो मंजिलें अपनी जगह तो है अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्म आया गया, और
1: शराबी
0: का, और आचल के तुझे ये तो किशोर कुमार जी के ऊपर ही फिल्म आया गया,
1: उनका ही है।
0: ब्यूटीफुल, मेरे को ऐसा किसी ने बोला था कि आचल के तुझे मैं लेके चलो, उसमें जो बच्चा है वो भी शायद किशोर कुमार का बेटा ही था, अमित
1: कुमार।
0: या आई केम टू नो अबाउट दैट, हाउ ब्यूटीफुल। चलिए दोस्तों, इन दोनों प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं, पहले सुनील जी की आवाज में और फिर हम आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत बहुत खूब सुनील भाई, थोड़ा सा आपको और बेहतर समझने के लिए, ठीक है, आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, यू नो वैसे तो मुझे लगता है बेंगलोर में 90% लोग आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर, बट वहां हार्डवेयर में कोई नहीं है, सब सॉफ्टवेयर में ही है
1: सॉफ्टवेयर में ही
0: है और हार्डवेयर हम लोग
1: बहुत सारे लोग तो वर्क फ्रॉम होम भी है.
0: ओह दैट्स नाइस. लेकिन फिर भी अब यार कितने जमाने से, जब मैं छोटा था और हम लोग बैंगलोर वगैरह गए तो उसको सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था, पेड़ ही पेड़ थे, बड़ा खूबसूरत, ठंडा ठंडा. अभी जो रोड्स इश्यूज और इतना भीड़ और ट्रैफिक, वन वे क्या हो गया है यार सुनील भाई, आप तो बैंगलोर में 20 सालों से हैं, वहीं पर बड़े हुए हैं, वहीं पर पढ़ाई लिखाई शायद आपकी वहीं हुई है, ये क्या हो गया यार, और कैन यू पॉसिबली सजेस्ट एनी सोल्यूशन?
1: अभी ग्रोथ हो रहा है, लाइक आई सेड कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज. तो आई थिंक इट्स अ साइकिल, ठीक है. तो मतलब पहले तो अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, अब लोग आ रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो डेफिनेटली ट्रीज विल बी कट, अपार्टमेंट्स विल बी बिल्ट, लेक्स विल बी टेकन ओवर, ये सब इट्स एक साइकिल है. ओके, आई डोंट नो इफ देयर इज अ डायरेक्ट सॉल्यूशन, बट लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स हैपनिंग हियर वेयर plants are being planted, the lakes are being rebuilt, so there are a lot of people who have this awareness and they are trying to do that because they are going against the climate, against the nature, right? So it's matlab thoda chicken and egg story hai wo ki development chahiye but we need to maintain the climate, we need to make sure nature is also taken care of.
0: All right. And what about traffic, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है?
1: ट्रैफिक का आई थिंक, सी आई टेल यू वन थिंग हियर, पहले मोस्ट ऑफ योर ट्रैफिक वाज ऑन रोड, ओके, फिर मेट्रो आया तो बहुत लोगों ने सोचा कि मेट्रो आने से रोड का ट्रैफिक कम होगा. अभी मेट्रो में भी ट्रैफिक है, रोड में भी ट्रैफिक है. वो वाला सीन है.
0: ओ गॉड. ओके, बट देयर हैज टू बी, भाई आफ्टर ऑल या तो पब्लिक को अवेयर हो के या फिर गवर्नमेंट का तो खैर कुछ भरोसा नहीं कर सकते, बट फिर भी बैंगलोर इज सच अ यू नो रिच सिटी और बाहर से लोग आ रहे हैं, तो टाउन प्लानिंग वाले जो लोग हैं उनके अंदर कुछ तो छोटी मोटी सीरियसनेस होगी यार, कोई तो होगा जो सीरियसली सोच रहा होगा कि इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालें, जैसे पीछे दिल्ली में हुआ था कि इवन ऑड नंबर की गाड़ियां सड़क पे आएंगी नहीं आएंगी. I mean, something has to be done about it. Otherwise, बहुत जल्दी फिर बैंगलोर would be खत्म. उसके बाद कोई आएगा ही नहीं वहाँ.
1: See, it has to be both mutual. मतलब government को भी कुछ steps लेना चाहिए, public को भी अपना awareness. Like for example, मैं क्या करता हूँ weekends में, unless it is really necessary, I don't take my car out.
0: Okay.
1: मतलब family के साथ कहीं जाना है ऐसा कुछ है तो ही मैं car लेता हूँ, नहीं तो I use public transport, either cab or something like that. At least उतना मतलब फ्रॉम अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन रिड्यूस दैट मेनी कार्स गोइंग आउटसाइड, राइट? सो दैट इज समथिंग लाइक अ म्यूचुअल थिंग दैट इवन द पब्लिक हैज टू डू समथिंग एंड आल्सो द गवर्नमेंट हैज अ मोर मोस्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑन दिस मैटर, बट पब्लिक आल्सो कैन डू गिव देयर बिट इन दिस.
0: राइट. तो दोस्तों चलिए, लोग अवेयर हो रहे हैं और हम अपने, क्योंकि हम, मैं कह ही रहा हूं कि बैंगलोर से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सेव योर सिटी, यूज लेस कार, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड बेहतर है ना पैदल चलिए, साइकिल्स ले लीजिए. मुझे तो ऐसा लगता है
1: हेल्थ भी ठीक हो जाएगा,
0: हेल्थ भी ठीक होगा. एंड मुझे तो ऐसा लगता है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट यू नो इलेक्ट्रिक साइकिल्स, नॉट स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स, कि कम से कम वो ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा पैडल मारेंगे तो आप किधर का किधर पहुंच सकते हैं, एंड देन यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी एज वेल एज लॉट ऑफ यू नो भीड़ भाड़ भी से भी बच जाएंगे ना. जस्ट थिंक, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ. ओके, सो चलिए नेक्स्ट पेयर ऑफ सॉन्ग्स मुझे बताइए बॉस, जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं.
1: मेरा मेरा कोशिश या ये था आज के इवेंट में कि आई वांटेड टू गिव अ फ्लेवर ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉन्ग्स. फॉर एग्जांपल आई हैड सम सैड सॉन्ग्स व्हिच इज माय फेवरेट
0: ओके
1: बाय द वे बिकॉज सैड सॉन्ग्स में जो इमोशंस आप दे सकते हैं वो बहुत मुश्किल है अदर इमोशंस दिखाने के लिए. तो आई हैड सम सैड सॉन्ग्स, आई हैड सम हैप्पी सॉन्ग्स, आई हैव टू नॉटी सॉन्ग्स.
0: नाइस, वाओ.
1: एक तो मेरे सामने वाली खिड़की में अगेन किशोर कुमार, एंड नखरे वाली अगेन किशोर कुमार.
0: तो अभी हम लोग एक तो मेरे सामने वाली खिड़की सुना रहे हैं, है ना?
1: या, करेक्ट.
0: और दूसरा आपने कौन सा बताया?
1: नखरे वाली.
0: नखरे वाली, ऐसे ना?
1: एग्जैक्टली, एग्जैक्टली.
0: चलिए ना, आप गुनगुनाइए, मैं भी साथ में गुनगुनाता हूं.
1: ऑलराइट. नखरे वाली.
0: हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. वन टू
1: नखरे.
0: How cute, how cute. आप शुरू करिए, आप शुरू करिए.
1: One, two, three, start.

0: है ती भोली भाली
1: भाली
0: इट्स फन सुनील भाई, इट्स फन, आई रियली लाइक इट,
1: इट्स फन।
0: ओके चलिए आइए दोस्तों, तो इन प्यारे से गीतों को पहले सुनते हैं, देन आई विल कम बैक टू सुनील जी। वाओ, थैंक यू।

0: बहुत खूब। चलिए सुनील भाई, थोड़ा सा अब अपने, आपने अपने सिटी के बारे में बताया, थोड़ा सा अब अपने बारे में और बताइए। सिंगिंग के अलावा, सिंगिंग आप वैसे तो आपने बोल ही दिया था, शुरू में ही बोल दिया कि अगर आप सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो आप गाना गा रहे हैं। बट कभी तो ऐसा मौका मिलता होगा ना यार, जब आप गाना भी नहीं गा रहे होगे तो कोई और पैशन परस्यू कर रहे होगे। व्हाट नेक्स्ट डू यू लाइक? लाइक मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द ऑप्शंस, प्रोबेबली इट विल हेल्प। वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स, मे बी गार्डनिंग, मे बी वीडियो प्ले, वीडियो गेम प्लेइंग बिकॉज आप सॉफ्टवेयर वाले बंदे हो, मे बी सम आउटडोर स्पोर्ट्स, मे बी कैरम, चेस। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्या करते हो आप?
1: तो मेरा क्रिकेट का बहुत शौक था,
0: okay.
1: मतलब खेलने का शौक था। आई वॉज अ लेग स्पिनर इन माई ऑफिस, लाइक हमारे ऑफिस के कॉर्पोरेट गेम्स थे पहले, तो आई यूज टू बी अ लेग स्पिनर। अभी आई एम इन द रिटायर्ड मोड फ्रॉम क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, बट आई वॉच क्रिकेट। आई कैन वॉच इवन अ केन्या वर्सेस जिम्बाब्वे टेस्ट मैच।
0: Wow.
1: Okay. So for me, it's not who's playing whom. It's cricket. It's ball versus bat.
0: Oh.
1: So I IPL to matlab har roz main dekhta hu, every ball. I don't miss a ball. Matlab kaam rehta hai mera, 1:30 to 10:30 is my shift.
0: Okay.
1: But I keep the mobile on, streaming on rehta hai, side mein rehta hai. So I keep watching cricket while working as well. So cricket is my passion as well. So if it's not singing, next is cricket.
0: Beautiful, amazing. तो मैंने बहुत सारे क्रिकेटर से बात करी। सुनील जी बुरा मत मानिएगा, प्लीज डोंट माइंड। मेरे को दरअसल क्रिकेट से मैं उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, आई डोंट यू नो फील नहीं हो पाता मुझे। बट एन नंबर ऑफ टाइम्स लोग बोलते हैं, मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई क्रिकेट, व्हाई डू यू लाइक क्रिकेट, तो 90% टाइम लोग कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, आ गई बात समझ में। लेकिन जैसे ही इंडिया जीतता है, सॉरी पाकिस्तान जीत जाता है, इंडिया हार जाता है, तो वो बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। और मतलब, और इंडिया जीत जाता है तो मतलब मिठाई विठाई बांटने लग जाते हैं। तो यार ये स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ रही? अभी अभी आपने कहा कि अगर आप जिम्बाब्वे वर्सेस कौन सा देख रहे हैं, कीनिया, तो तभी भी यू नो यू आर इंटरेस्टेड इन अ मैच बिटवीन बैट एंड बॉल, तो वो तो मेरे को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट समझ में आता है। That's very nice. All right. Correct. So I must congratulate you on that you are still a true sportsman, aur sportsman spirit ke sath hi aap kisi game ko dekhte hain. Bahut khoob. Chaliye. Ab mujhe geet bataiye, kaun se hum apne doston ko sunwayenge?
1: Ha, ek slow song hai, which is Mohammed Rafi ka Pukarta Chala Hoon Main.
0: Okay.
1: Aur uske sath ek fast gana bhi chahiye mujhe.
0: बार बार देखो, हजार बार देखो,
1: बार बार देखो,
0: गाइए गाइए गाइए,
1: बार बार देखो, हजार बार देखो,
0: देखने की चीज है हमारा दिल रुबा,
1: हमारा दिल रुबा
0: जाने हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए दोस्तों, ये प्यारे से दो गीत आज हम पेश करते हैं जो सुनील जी ने हमारे लिए रिकॉर्ड किए हैं। अमेजिंगली ब्यूटीफुल।

0: बहुत बहुत खूब सुनील भाई। बस चलते चलते आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और, कुछ भी जो आपके मन में हो, आप हमारे दोस्तों से, हमारे ऑडियंस, आपके फैंस जो आज हो गए हैं और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो बैंगलोर में ही हैं, आई एम 100% श्योर। अब तो बैंगलोर में सड़क पर चलते हुए हमारे आज के कलाकार ही टकराते रहेंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। और कोई ना कोई पूछ, कोई ना कोई आपको सड़क के किनारे से देखे, अरे सुनील भाई, अरे कल ही तो देखा था आपका प्रोग्राम, सुना था, अरे मजा आ गया यार, गाओ गाओ गाओ, मेरे लिए भी एक गाओ। इट इज गोइंग टू हैपन इन बैंगलोर, इट सीम्स। तो
1: वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
0: आपके दिल में कोई बात हो जो सब लोगों से आप कहना चाहते हो तो कह दीजिए।
1: मुझे बस ये कहना है सबसे कि अगर आपके अंदर कोई पैशन हो, मेनली सिंगिंग हो, और आप डरते हो गाने से, डरो मत, बिकॉज हम डरते क्यों है ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, बट एंड ऑफ डे इट इज मेकिंग योरसेल्फ हैप्पी। ओके, सो मेरी तरफ से मैं सबको क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर है वो कीड़ा, गाने का कीड़ा, उसको निकालो, गाओ, बिंदास गाओ।
0: वाओ वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। एक और बात है सुनील भाई, चलते चलते मैं सारे लोगों के सामने कन्फेस करना चाहता हूँ, आप हो तो मलयाली लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है, एकदम नीट एंड क्लीन।
1: ये बहुत सुना है मैंने,
0: really?
1: मलयाली हो और हिंदी कैसे बात कर रहे
0: हैं, एकदम मस्त, एकदम झकास, एकदम कोलोक्वियल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, हंसते खेलते, एकदम चटकारे लेते हुए, कीड़ा ये वो शब्द इस्तेमाल करते हुए, इट्स अ ब्यूटीफुल, बहुत खूब। चलो दोस्तों, तो फिर अब कौन सा हम गीत आपका सुनील जी सुनवा दें?
1: ये आखिरी गाना है।